0: रीमी लाली जी, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
0: प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: सभी को नमस्कार आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से आस्था आपको नमस्कार
1: नमस्कार शुक्रवार जिस 10 जुलाई की तारीख है प्रथम समाचारों में स्वागत है आप सभी का मॉरिशस में पर्यटकों की संख्या में इस वर्ष अब तक हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है हालांकि जून महीने में आगमन में गिरावट देखने को मिली जनवरी से जून 2026 के दौरान मॉरिशस में 6,78,471 पर्यटक मॉरिशस आए ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.5% की बढ़ोतरी है मॉरिशस में अर्थव्यवस्था में वृद्धि का सिलसिला जारी लेकिन इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ गई है स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 30 जून को जारी ताज़ा आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की पहली तिमाही में देश में आर्थिक वृद्धि दर 2% रही पिछले वर्ष की समान अवधि में ये 3.4% रही कुछ सेक्टरों में अब भी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है जबकि निर्माण और कपड़ा उद्योग जैसे सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई है महंगाई का असर मॉरिशस में लोगों की जेब पर अब भी बना हुआ है जून महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 7 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 111.9 से बढ़कर 112.2 अंक पहुंच गया यानी इसमें 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई है राष्ट्रसभा की बैठक आज दोपहर 3 बजे से शुरू होगी फिर से इस दौरान डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहसें जारी रखी जाएंगी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार

लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के लगभग 90 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जबकि ईरान का कहना है कि पिछले दो दिनों में 16 लोगों की मौत हो गई है। और अब चले जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर जारी रहेगा। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान देश के पूर्व और ऊंचाइयों पर रह रहकर बरसात होगी और बादल भी घिरे रहेंगे। अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। रात को देश भर में मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहिली इलाकों पर 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर 50 ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:44 पर।

मोहतरम सामईन, अभी आपने कलाम पाक की तिलावत समात फरमाई। इसमें शक नहीं कि मुहर्रम उल हराम हमारे प्यारे आका सरकार मदीना राहत कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की बेमिसाल कुर्बानियों का महीना है। अहले बैत ने सच्चाई, इंसाफ और हक को बातिल की लड़ाई का सबसे अजीम नमूना पेश किया, जिसे हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में जज्ब करना चाहिए। मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि अहले बैत वो चरागे राह हैं जिनके नक्शे कदम पर चलकर हमें तौबा, इस्तकामत, इबादत और इत्तफाक व इत्तेहाद को जिंदा रखना है। यहाँ तक कि अहले बैत ने दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नज़र

मोहतरम सामईन, अहले बैत वो अजीम हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने हर तरह से पाक फरमाया। ये वो मुकद्दस घराना है जहां ईमान, सब्र, जुहूद व तकवा, वफा और इल्म की रोशनी हर गोशे से झलकती है। ये वो लोग हैं जिनके कदमों में हिदायत की राहें रोशन होती हैं, जिनकी ज़िंदगियों में रज़ा इलाही, मुहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम की खिदमत एक साथ नज़र आती हैं।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज का मुसलमान अगर अहले बैत की सीरत से सबक हासिल करे तो उम्मत के ज़ख्म भर सकते हैं, दिलों की दूरियां ख़त्म हो सकती हैं और हम वही इत्तेहाद, उख़वत, मुहब्बत और कुर्बानी का दौर दोबारा देख सकते हैं जिसकी बुनियाद सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। हमें मुहब्बत अहले बैत को ना सिर्फ एक नारा बल्कि एक सोच, एक अमल और एक तर्ज ज़िंदगी बनाना होगा। ये मुहब्बत हमें झुकना सिखाती है मगर सिर्फ अल्लाह के सामने। ये मुहब्बत हमें जीना सिखाती है सिर्फ दीन के लिए।

सामईन जी वकार, सबाल खैर प्रोग्राम में निसार अख्तर एक बार फिर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन हस्तियों की बज़म है जिनकी मोहब्बत ईमान का तकाजा है, यानी अहले बैत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में अहले बैत को जो मकाम व मर्तबा अता फरमाया वो उम्मत के लिए मशगले राह है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने पीछे दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। इससे मालूम होता है कि अहले बैत को समझना, उनसे मुहब्बत करना और उनकी सीरत को अपनाना दीन और दुनिया की असल बुनियाद है।

सामईन कराम, अहले बैत की जिंदगी किसी खास दौर या सानहे की कहानी नहीं, बल्कि सदियों तक फैलने वाला एक रोशन पैगाम है। उनकी सीरत तैयबा हमें बताती है, ईमान सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि सब्र इस्तकामत की अमली तस्वीर है। अहले बैत ने दुनियावी आराम, जाओ जलाल और ज़ाहिरी इज्जत के बजाय रज़ाए इलाही को तरवीज दी। वो भूखे रहे मगर यतीमों को खिलाया, वो जुल्म सहते रहे मगर झूठे सौदे न किए, वो तन्हा रहे मगर हक के परचम को बुलंदो बाला किया।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज के इस पुरफतन दौर में जहां दिलों में नफ़रतें बढ़ चुकी हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में अहले बैत की मोहब्बत हमें जोड़ने वाली कुव्वत बन सकती है। हमें अहले बैत की सीरत को ना सिर्फ याद रखना चाहिए बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। जब तक हम अहले बैत के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, तब तक हम ना तो हक को पहचान सकते हैं, ना ही दीन और दुनिया की असल रूह को समझ सकते हैं।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, उर्दू महफिल सबा अल खैर अब अख्तिताम पज़ीर होती है। आपकी तवज्जो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें अहले बैत का ज़िक्र खैर करने का शर्फ हासिल हुआ, जो हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। हमें उनसे बेपना बेलौस मोहब्बत करनी चाहिए। बस शर्त यह है कि हम मोहब्बत अहले बैत के दावेदार ना बने, बल्कि इत्तबाही अहले बैत के मुसाफिर बन जाएं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगर अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा तो अगले जुम्मे को निसार अख्तर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

श्रोता मित्रों, खोटा पासवर्ड थी तो नानकड़ो मोबाइल पण नथी खुलतो, तो पछी खोटा कर्मो थी मोक्षना दरवाजा कई रीते खुले? माटे हमेशा जीवन में सारा कर्मो करो, बीजाना माटे सारी बातों विचारो, अने आजना आपणा कार्यक्रम में चालो एन्जॉय करिए काजल महेरियाना स्वरमां मुकायेलू आपणा प्रोग्रामनुं।

शक्ति। श्रोताओं प्रणाम, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। कहा जाता है जो मनुष्य परमात्मा पर अपनी आस्था और भक्ति रखता है उसका मन सरल ही होता है। आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गणेश वंदना के साथ।

उनके मन में और उनके विचार में वृद्धि अवश्य आई होगी। आइए प्रेम से बोलिए जय माता दी।

भक्ति। श्रोताओं, इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को प्रणाम। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।

0: 1.5% अधिक है। उधर स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की पहली तिमाही में मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि दर 2% रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले कम है। वहीं जून महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि एक वर्ष के आधार पर महंगाई की रफ्तार धीमी हुई है। राज्यसभा की बैठक आज दोपहर 3 बजे फिर से शुरू होगी। इस दौरान डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहसें जारी रखी जाएंगी। 2018 के फोंजीसाक दोहरे हत्याकांड में कानूनी प्रक्रिया जारी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ये तय करेगा कि डीपीपी को उमेश कुमार बाबूलाल के बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने का अधिकार है या नहीं। मॉरिशस पुलिस फोर्स के पूर्व डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मोदी मुटू गासन का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे सैमोते में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार जारी। अमेरिका ने ईरान के लगभग 90 सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया, जबकि ईरान के अनुसार पिछले 2 दिनों में 14 लोगों की मौत हुई। और अंत में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 देशों में पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। पाइनवुड गार्डन वुटन में 64 साल के 64 years old के श्री मोदी मुटू गासन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें दासन के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज 3:15 बजे उन्हीं के मकान वुटन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोते मोगोश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:15 PM। कौन लीला शमेंग्रोनियमे 82 साल की 82 years old की बीबी सारा यासिम पैदाइश नाम डुलो इंतकाल कर गई हैं। लोग उन्हें सारा के नाम से अधिक जानते थे। उनका जनाजा आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे फिरोज यासिम के मकान शमेंग्रोनिये से निकाल कर दफनाने के लिए कौशौल्यूट शमेंग्रोनिये का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे at 2:30 PM. Avenue de Dieu, l'Espérance Pitomé, 72 साल की 72 years old की शांति देवी शंभू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम बद्री, लोग उन्हें बसंती के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 9:30 बजे उनके बेटे रामचंद शंभू के मकान Avenue de Dieu, l'Espérance Piton से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की ही शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM. कालीमाई पालमा काटोबोन में 65 साल के 65 years old के जसोनाथ बोयरो की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी रविवार 12 जुलाई को दिन के 1 बजे उन्हीं के मकान काटोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 3 माइल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे 12 जुलाई एट 1 PM. वाल्टो मोताइलोंग में 62 साल के 62 years old के सत्यानंद एटवारा की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें अजीत के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 9:30 बजे उनकी पत्नी बबीता एटवारा के मकान मोताइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों तेरूज की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM. मोसेलमा माउंट पोम्पलेमुसेज में 80 साल के 80 years old के प्रेमानंदा मंगापति की मृत्यु हो गई है। प्रेमानंदा मंगापति की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें नंदा के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी रविवार को 12 जुलाई को सुबह के 9 बजे उन्हीं के मकान पोम्पलेमुसेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे 12 जुलाई एट 9 AM. मोसेलमा एमडीए सेकोस्टांस सैंपियमी 74 साल की 74 years old की द्रौपदी तिलो की मृत्यु हो गई है। द्रौपदी तिलो की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम बंधु, लोग उन्हें उमा के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी आज शाम के 4 बजे उन्हीं के मकान सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: News News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: You're listening RM Free Radio.
1: मौसम तो दीवाना है लेकिन यहाँ पर हम दीवाने भी आ गए हैं सात दिन के लिए रेडियो मनोरंजन RM Free पर सुहाना सफर विदिता के साथ

0: Oriel Free Radio. Radio.
1: सुहाना सफर। अजी सफर को सुहाना बनाने के लिए आ गए हैं लेकर आपके लिए प्रोग्राम सुहाना सफर। 12:13 हुए हैं, आज है शुक्रवार 10 जुलाई। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे प्रोग्राम में। चलिए यहाँ पर खूबसूरत गीतों का सफर जारी रखते हैं। थोड़ी देर में हम होने वाले हैं टिकटॉक पे लाइव, तो हमारे साथ जरूर दीजिएगा, हमें वहाँ पे ज्वाइन जरूर कीजिएगा।

0: तुमने मुझे देखा और यहाँ पर जमीन भी रख गई, आसमान झुक गया, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम बस प्यार से आपके कहेंगे कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टिकटॉक अभी लाइव है।
1: सुहाना सफर।
0: चलिए जी, सुहाना सफर हमारा शुरू हो गया है और यहाँ पर मैसेजेस की बारिश होने लगी है। हमारे कितने सारे दोस्त हैं जो हमारे टिकटॉक पे हमारे साथ जुड़े रहते हैं और अभी समय हो गया है उनको हेलो बोलने का। सबसे पहले हम हेलो कहना चाहेंगे मिस्टर नूरुद्दीन बुराई को जो फ्रांस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, कैसे हो जी? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कर्सी, हाय, कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत सर्दी है। कहते हैं कि अभी हम काम पर हैं एंड आई एम हैविंग मसाला चाय। एंजॉय योर मसाला चाय एंड हाय ट्रैवल, कैसे हो? हाय, हेलो अब्दुल रिशाद एंड कविता अन्नू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, माधुरी जो एक दो तीन करते हुए आ गई। और हाँ भाई, हमारी खांसी तो हमसे इतना प्यार करते हैं कि ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। वो क्या कहते हैं, डर मूवी में वो था ना शाहरुख खान जो छोड़ता नहीं था जूही चावला को, ये खांसी भी कुछ ऐसा ही है, छोड़ता ही नहीं है, जहाँ जाओ पीछे पीछे आता है। चलो, साथ देते रहना आप लोग। और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं सलीमा, कैसे हैं जी? सलाम आपको। दीप्ति, आपका भी स्वागत करते हैं। वी हैव जय, हेलो जय, कैसे हो? चले भाई, जय जय आपकी, हमारी भी और सबकी। और इसी के साथ जो नेक्स्ट हमारा गाना होने वाला है वो लेकर आए हैं आपके लिए। कहते हैं सांसों से नहीं, कदमों से नहीं दुनिया बनती है, मोहब्बत से। तो इसी मोहब्बत के साथ आपका वेलकम करती हूँ मैं प्रोग्राम में। सविता जी आपका भी और कल्याणी हरी आपका भी।

0: भाई इतनी बारी मोहब्बत कह दिया आप तो ये पूरा हमारा भर गया है मोहब्बत से।
1: सुहाना सफर।
0: चलिए जी नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करना चाहेंगे हमारे तमाम दोस्तों के लिए साथ दे रहे हमारे। तो सबसे पहले तो मैं आयशा को बुलाना चाहूंगी। अभी कहती हैं कि हम लोग सीसाइड पे हैं, स्कूल की हमारी आउटिंग चल रही है और मैं आपको सीसाइड पे सुन रही हूँ। सो आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव।

0: थैंक यू और आप सभी बच्चों के लिए भी जो साथ दे रहे हैं. एंड यहाँ पर गाना होगा किरण आपके लिए, आपके हबी ऋषि, आपकी बेटी हैं रिया, आपके बेटे हैं कृषि, महावीर और रसियान फैमिली के लिए. और साथ ही साथ यहाँ पर इंदिरा जी शाम के लिए गाना मांग रही हैं. रजनी महावीर हमारे साथ हैं. सुनीता कहती हैं कि नेक्स्ट गाना जो होगा ओके, अगला गाना विश्वानी सराम के लिए जो लामों छे से हमें सुन रही हैं. थैंक यू सो मच. और वहीं पे नैना, सरिता, अरुणा, विद्या, लीलू, विमी, डेविड, सुनीता, रॉबिनहुड पांडे और साथ में यहाँ पर जितने भी लोग हमारे जुड़े हुए हैं हमारे प्रोग्राम के साथ, थैंक यू. एक्वायर से श्वेता, सीता, देवांश, दादी के लिए गाना होगा और धर्मेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और गीता फ्रॉम फिजी आइलैंड्स, आपका स्वागत करती हूँ मैं. फिजी आइलैंड से जितने भी हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं आप सबका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें आप अपनी पसंद का कोई ना कोई गाना ज़रूर ढूंढ लेंगे और ये जो गाना है सीधे आपके दिल में उतरेगा और ये आपको सीधे मॉरिशस पहुँचा देगा.
1: RM3 Radio.

चलिए जी इसी प्यारे से गाने के साथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर केशव भी हमारे साथ है आपके लिए गाना थोड़ी देर में हम जरूर डेडिकेट करेंगे। विमला देवी हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर गाना होगा दिया के नाम, कहते हैं कि ओके दिया आपको शायद लग रहा होगा ये वो गाने हैं, ये वो गोल्डन एरा है जहाँ पर ये गाने मेरे ख्याल से सबके लिए यादगार, जितने भी लोग इस समय टिकटॉक पे हमारे साथ हैं उन सब के लिए यादगार बना ये सफ़र। एंड चलो अगर आपको नींद आ रही है इस समय तो आप शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, आप आराम

करो. और एजे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू ललिता एंड हाय वल, थैंक यू सो मच. चलिए इसी के साथ नेक्स्ट जो गाना होगा डेडिकेट करते हैं आपके नाम, और ये गाना होगा माया रामदोस जी के लिए एंड करिश्मा हमारे साथ है. वैसे कभी कभी कुछ गीतों को समझने के लिए उनकी गहराई तक पहुंचना ज़रूरी होता है, फीलिंग्स को पकड़ना ज़रूरी होता है, तभी जाकर पुराने गीतों से प्यार होता है. और जब प्यार बढ़ जाता है तो लोग हमारे साथ हमारे सुहाना सफ़र प्रोग्राम के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि जैसे फिर कभी अलग हो ही नहीं पाते.

0: RM3 Radio. Radio.
1: चलिए जी, अगला गाना जो होगा आपके लिए लेकर आए हैं हम बड़े प्यार से, और ये जो गाना है डेडिकेट करते हैं हम अपने उन तमाम दोस्तों के लिए जो समय ड्राइव कर रहे हैं, एक्चुअली ड्राइव करते करते हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। ललिता विकास बातू एजे लवना कहते हैं उनकी मौसी छाया का बर्थडे है, तो उनकी मम्मी आशा की तरफ से उनकी मौसी छाया को बहुत सारा प्यार, हैप्पी बर्थडे। हमारे साथ हैं नन, आंती शशिचन और

साथ में नीली माँ कहती हैं चाची सुनीता का बर्थडे है 58 years old टुडे, उनके लिए भी गाना कल है। चलो अंजी अमुगम वनकम एंड थैंक यू सो मच, जो लोग बीमार हैं गेट वेल सून। और किश्तो फैमिली के लिए गाना रहेगा, और सुनीता तो बिल्कुल नहीं आएगी आज, लेकिन हाँ सुनीता जो पालमा रहती है उनके लिए गाना जरूर डेडिकेट करेंगे। ठीक है, चलिए इन्जॉय करते रहिए प्यार से हमारा प्रोग्राम सुहाना सफ़र।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चलिए तो यहाँ पर एक नया सफर शुरू हो चुका है सुहाना सफर का। हम साथ रहेंगे 2 बजे तक। इस समय 12:40 हुए हैं और अजय शवि को हम वेलकम कहेंगे, मनोज, अंदिनी, सुविता, कौतिक, इन सबका स्वागत करते हैं। नीस तोशिता का आज बर्थडे है तो उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से और बहुत सारा प्यार भी है उनके लिए। नेक्स्ट गाना जाएगा अरुणा की तरफ से उनके बेटे कविश के लिए, विशिंग हम अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। रेखा जी नमस्ते, स्वागत है। सुबह आपका भी हम स्वागत करते हैं और

यही गाना जो होगा डेडिकेट करेंगे उनके लिए जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. तो बहुत प्यार के साथ नेक्स्ट गाना आप सभी को हम डेडिकेट करेंगे. उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस गाने को ज़रूर पसंद करेंगे, इसे एंजॉय करेंगे. एंड गाने की बात चली है तो एक बहुत ही प्यारा सा गाना हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारे प्रोग्राम में, सुनते हैं. और चलिए इसी के साथ हमारा जो गाना होगा इसमें हम नाम ऐड करना चाहेंगे उन तमाम दोस्तों के लिए जो कि साथ दे रहे हैं हमारे. तो ऐसा करते हैं यहाँ पर अगला गाना आपके लिए एंड सभी दोस्तों के लिए साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. गाना हम विकास बिगू के नाम, जो फौजी साक रहते हैं उनके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे. शारदा लखनौत आपके लिए भी. और साथ में ये गाना हम डेडिकेट करते हैं विशिंग ब्रदर अविनाश महादेव अ वेरी हैप्पी बर्थडे, वाइफ काजल गानवी और कुशन की तरफ से.

0: भाई दुआ तो हमारी भी है और साथ में बहुत सारा प्यार भी।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: जी हाँ, लगता है कि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, टिकटॉक पे काफ़ी ब्लॉक हो रहा है। कोई बात नहीं जी, सब ठीक हो जाएगा। अभी के लिए नेक्स्ट गाना जो होगा रोशन मोहन के नाम डेडिकेट करते हैं नेश के लिए, अनोखी। हाँ कैसे हो दीप्ति गुदावरी जी, बहुत सारा प्यार आपके लिए। रीना नमस्कार, स्वागत है। नेक्स्ट गाना जाएगा वीना आयशा और विकास के नाम, और वहीं पे गाना जाएगा आपके लिए श्यामा महराली। थैंक यू शवी, हम चाय ज़रूर ले लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट गाना रोशनी देवीना और चिरंजीत के नाम, ये है नीला की तरफ से।
1: You're listening to RM3 Radio, मनोरंजन।

ख्वाबों का सिलसिला जारी रहेगा आपके लिए और ये है सुहाना सफ़र, साथ दे रहे हैं आप लोग हमारा, थैंक यू सो मच। चलिए जी, नेक्स्ट गाना होगा उमेश अमिताभ और बरखा के नाम, यही गाना डेडिकेट करते हैं हम विकास के लिए जो अभी तक नाराज हैं। एंड वी हैव नेक्स्ट गाना डेडिकेट करते हैं हम राज सहाय के नाम। ये गाना हम शेख शाइमा योलो और आईना रतदाम गीता कजी की तरफ से उनके हस्बैंड रॉकी जिमी दीदी पूजा और मामा राजवनी के नाम डेडिकेट करते हैं। नंदिनी कैसी हो, और ये गाना तनवीर खालिद और सविता रुकैया के नाम, थैंक यू साथ देने के लिए नेश। एंड यही गाना डेडिकेट करते हैं हम सोनाली कवीश मोतिया, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी आपको।

चलिए इसी के साथ अगला गाना पूजा के लिए और साथ में ये गाना जो है डेडिकेट करते हैं प्रभा सहाय के नाम जो लंदन से मैं सुन रही हैं। साइदा हमारे साथ हैं, कविराज मोहन, ललिता, साकुन उनके पति के लिए, गेट वेल सून, रोशनी उत्तम साथ दे रहे हो, थैंक यू। अगले गाने के साथ बढ़ते हैं 1 बजे के समाचारों की ओर, फिर उसके बाद खूबसूरत पुराने गीतों का सफ़र, सुहाना सफ़र जारी है। चलिए चलते चलते ये गाना विशाल के नाम डेडिकेट करते हैं और वेना हमारे साथ हैं, साथ में यहाँ पर वाकवा से ललिता बाबूलाल साथ दे रही हैं, थैंक यू सो मच।

0: संक्षिप्त समाचार आपसे याचना नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। राष्ट्रसभा के कार्य आज दोपहर 3 बजे से जारी रखे जाएंगे। आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन एक बार फिर पेंशन सुधार पर आधारित होगा। इस दस्तावेज के परीक्षण के लिए जिम्मेदार पेशेवरों के आयोग पर विपक्ष नेता जुलेजोंगा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से सवाल पूछेंगे। वे जानना चाहते हैं कि इस आयोग के गठन के लिए सदस्यों के चयन को लेकर कौन सी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। पूर्व डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मादे मुतुरा सेन का निधन 64 साल की उम्र में हो गया है। अपने लंबे करियर की शुरुआत उन्होंने SMF के साथ की।

जिसके बाद वे रेजिमेंटल सर्जेंट मेजर बने। उन्होंने कई राष्ट्रीय आयोजनों की सुरक्षा का संचालन किया। उन्होंने डिविजनल कमांडर और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में भी काम किया। एमबीसी शोक में डूबे परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है। फुटबॉल की दुनिया में आज रात 11 बजे स्पेन खेलेगा बेल्जियम के खिलाफ। एमबीसी 11 पर इसका

में चीन के दक्षिण पूर्व शहर जिनयांग में जूतों की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए। कई लोग इमारत की छत पर फंसे रह गया। ये इलाका चीन का शू कैपिटल कहलाता है, जहां दुनिया भर में बेचे जाने वाले 20% स्पोर्ट्स शूज बनाए जाते हैं। जिस वक्त आग लगी, करीब 240 लोग वहां काम कर रहे थे। अभी तक आग के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि इस हादसे के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चलाई जाएगी। ये थे अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 72 लोरिकोल वाली पिटोमे, नंबर 72 लोरिकोल वाली लोरिकू वाली पिटोमे 81 साल के टीवान यर्स ओल्ड के जनाब करमद अली महमद ममद अब्दुल रजाक, जनाब करमद अली ममद अब्दुल रजाक, जो बाई शरीफ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज शाम 3:30 बजे उनके मकान नंबर 72 लोहिकू वाली पीतो से उठाकर सबसे पहली नमाज जनाजे के लिए कासी के मस्जिद और फिर दफनाने के लिए बैरीडाम कासी का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। कौन लीला शुमे घोनी में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की मिसिस बीबी सारा यासीम, मिसिस बीबी सारा यासीम पैदाशी नाम दुलो, और जो सारा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी उनका जनाजा आज दोपहर 2:30 बजे उनके बेटे फिरोज़ यासीम के मकान कौलीला शुमे घोनिये से उठाकर दफनाने के लिए कौशौलू शुमे घोनिये का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। नंबर 491 एल्डबेरी रोड 2 पाइनवुड गार्डन वुटन में, नंबर 491 एल्डबेरी रोड 2 पाइनवुड गार्डन वुटन में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री मदेमुतु रासेन, श्री मदेमुतु रासेन जो दासेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और आजसू में पूर्व डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर 3:15 बजे उनके मकान नंबर 491 एल्डबेरी रोड 2 पाइनवुड गार्डन वुटन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेमोतेमोश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:15 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: सॉन्ग तुम हंसी मैं जवां। चलिए भाई गाना तो हो गया आपके लिए, नेक्स्ट बहुत सारे गाने हैं जो लाइन अप है खास आपके नाम। सुहाना सफर। अब आप सोच रहे होंगे कि किसके लिए गाना डेडिकेट करेंगे, तो गाना होगा फॉर हेना, एंजल, रेणुका, मीला रामा, अंजनी करपन उनके बॉस के लिए, शबनम उनकी बेटी की शादी है, और अगले हफ्ते है ना, हाँ, अनुषा हमारे साथ हैं, वी हैव संगीत, दीप, फिया, ललिता और वी हैव रोनी अच्छन्ना। चलो जी आपके लिए भी गाना डेडिकेट करते हैं एंड कहते हैं कि हम भी थोड़ा सा डांस करने की कोशिश करते हैं। हाय राधा कैसे हो, तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट गाना जो होगा हम आपके लिए डेडिकेट करते हैं। हेलो जी कैसे हो, नमस्ते जी, एम जे इवेंट जी कैसे हो जी, हमेशा रोज़ आ जाते हैं ये, रोज़ आते हैं हमारे दोस्त, रोज़ आते हैं नज़र उतार लूँ, ये रोज़ आते हैं हमारे टिकटॉक पे, हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं, हमारे गाने इन्जॉय करते हैं, इट्स अ प्लेजर, थैंक यू सो मच। तो ऐसा करते हैं आपके लिए गाना डेडिकेट करते हैं एंड मैं जानती हूँ कि आपको पता है कि सुन जाने जा आपका फेवरेट गाना है, हमारा भी है, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है ना कि हमारे इतने सारे फेवरेट गाने हैं लेकिन हम बजा नहीं सकते क्योंकि उसका समय नहीं होता है। शिमला भी ज़्यादा आपका स्वागत है, अब जब सही समय रहेगा तो चला देंगे, फिलहाल अभी के लिए
1: You're listening RM Free Radio.

0: सुहाना सफर।
1: खूबसूरत सा गाना था आपके लिए पुकार फिल्म से, समंदर में नहा के। वैसे हम जो समंदर में स्विमिंग करने जाते हैं, ये नहाने गए थे, नमकीन पानी है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, होता है होता है। अगला गाना किसके नाम डेडिकेट करें? चलिए, माधुरी कहती है कि समंदर का पानी तो ठंडा होगा, हाँ लेकिन इनको गर्मी लग रही है ना, इसलिए नहाने गए हैं, नहाने गए हैं, शायद पानी नहीं गिर रहा होगा, हम स्विमिंग करने जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर अगला गाना डेडिकेट करते हैं आप सभी दोस्तों के नाम। वैदेही, क्या बात है बहना,

0: अभी अभी आई हो. थैंक यू. गुड आफ्टरनून नीलम उमा गोवर्धन, कैसे हो? आपके बिलावड हस्बैंड अक्षय के लिए आज उनका बर्थडे है, तो उनके लिए नेक्स्ट गाना डेडिकेट करूंगी. और साथ ही साथ यहाँ पर सुनीता इमरित हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच. गाना नीलम अहाना माँ करुणा और आशु के लिए होगा. एंड चलिए जी, यहाँ पर हम कहते हैं एंजल कि हमने बचपन में ये मूवी देखी थी, हमने में भी देखी थी, लेकिन जब हम बड़े बड़े होते हैं ना तब हम भूल जाते हैं. क्या करें, याददाश्त चली जाती है ना, इसलिए कहते हैं बादाम दूध पिया करो. पूजा हमारे साथ हैं, गाना जाएगा फॉर आंटी सिमी बुदू, आंटी इंदिरा, मामा कविता. और यही गाना हम डेडिकेट करते हैं आरती के लिए जो कैटोबोन से हैं, उनके हस्बैंड संजीव के नाम. और आंटी श्रीचंद थैंक यू फॉर लविंग द सॉन्ग. अनुष कैसे हो भाई? प्रीति के लिए गाना होगा, ये गाना होगा शैलेंद्र बाचू के नाम.
1: RL3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए देखते हैं सुहाना सफर प्रोग्राम में अब हमारे साथ जो अगला गाना है वो कौन गुनगुनाना चाहेगा। सो अगला गाना हम लेकर आए हैं आपके लिए, हमारे साथ है समीता एंड वी ऑल्सो हैव संगीता सुखारी, ईशानी, विदुला, अनुराग जो कि अभी स्वीट्स बेच रहे हैं पोर्टविस में, थैंक यू अनुराग फॉर ज्वाइनिंग अस, त्रिशा, नगमा एंड डिनो। इतने दिनों के बाद डिनो हमसे मिलने आए हैं, बहुत लगा जानकर। चलिए इसके साथ गाना
2: RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: चलिए जी, निरुषा प्रताप हमारे साथ हैं, रोविन के लिए गाना मांग रहे हैं, वहीं पे जगह सरमोता नीलेश, ललित मोहन, रीना शिबनोद, धयन कमल, कामा से मैं काम करने वाली सभी दोस्त, रोशन के लिए शेगी वैदेही, रीना शिबनोद कल्याणी हमारे साथ है, श्रेया भी हमारे साथ हैं। चलिए स्वागत करते हैं आप सबों का हमारे प्रोग्राम में, और कहते मैं आपकी शेगी, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। एंड हाँ, जाहिर सी बात है अभिसान हमारे साथ हैं, और यहाँ पर गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं आपके लिए। शवि जो हैं हमारे साथ कब से जुड़ी हुई हैं, एंड गाने के साथ आगे बढ़ते हैं। रेखा रामा आपके लिए।

चलिए ये गाना जो है हम शैलेंद्र के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। हमारी डीवा गर्ल आ गई हैं, काफ़ी देर से आई हैं, आधा घंटा रह गया प्रोग्राम ख़त्म होने का, लेकिन आई है तो वेलकम करती हूँ मैं उनका और आप लोगों का भी जो साथ दे रहे हैं हमारे, थैंक यू सो मच। बस प्यार से ऐसे गुनगुनाते रहिए और आज फ्राइडे हैं तो मूड एकदम, वो कहते हैं ना, झकास होना चाहिए, तो उसी को कोशिश करें हम अच्छा बनाने की। आप लोगों का साथ है, आप लोगों का प्यार है, हमें और क्या चाहिए।

0: ना सफर सुहाना सफर
1: भाई प्यार तो ऐसे फूट फूट के बरस रहा है हमारे प्रोग्राम के लिए. थैंक यू सो मच दीप्ति जी, आपके लिए भी बहुत सारा प्यार. हाय निलेश, कैसे हो? हाय रेयांश, थैंक यू सो मच. और साथ में यहाँ पर गाना जो होगा डेडिकेट करना चाहेंगे हम आपके लिए. जी हाँ, आप कहते हैं कि एक गाना मेरे भैया के लिए, उसका बर्थडे है आज 39 ईयर्स ओल्ड. ना भैया का नाम लिखा ना खुद का नाम लिखा, लेकिन चलो भैया जी आपका बर्थडे है तो आपको हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे. और साथ ही साथ यहाँ पर गाना हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए जी. थैंक यू सो मच. एंड माधुरी जी वो भी अभी भी हमारे साथ ही हैं. अनीता पैतोप जी, उनके लिए हैप्पी फ्राइडे आपको भी. एंड साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं जिनमें नाम नहीं है. ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बो वी कैन. थैंक यू सो मच आपको भी.
2: RM3 Radio.
1: बहुत कम मौके मिलते हैं दोस्तों खुश रहने का, मुस्कुराने का. हमारे पास 2 घंटे होते हैं सुहाना सफ़र, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी आपकी टेंशन उनको दूर कर दें. एक ही चीज़ है हम सबके पास जो हम बांटना चाहते हैं और हम उसे पाना चाहते हैं, और वो है प्यार और कुछ नहीं. माया जी दूध पीठी बना रही हैं और थोड़ी देर में पकाने वाली हैं. बार बार बोलती है, उनका टाइम होता है एक्चुअली. पता नहीं ये प्रोग्राम सुन के उनमें क्या एनर्जी आती है कि सीधे किचन में.

0: RM3 Radio.
1: ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं हम हमारे दोस्त आज प्रताप के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं, और साथ में ये गाना जाएगा डॉक्टर अंजू, डॉक्टर नेहा और डॉक्टर सिमरन के लिए। आजकल डॉक्टरों का काम ज़्यादा बढ़ गया है, सबको सर्दी खांसी जुकाम सब आते ही कहते हैं अच्छी। अवनीश हमारे साथ हैं, ब्रदर आपके लिए गाना होगा माया भगवान, शाहिद इकबाल, दीपक बिहारी आपके लिए, और SRK हमारे साथ हैं। भाई हमने तो बस मजाक किया था।

0: चलो भाई लैला यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। सरिता लाल, कमल, शांता और प्रिया हमारे साथ है।
1: RL Free Radio, Radio, Radio.
0: हमने कहा था ना कि अभी फ्राइडे है आज, तो फ्राइडे में हम क्या करते हैं, हमेशा जाने से पहले थोड़ा धमाल करते हैं, तो वही करने आए हैं।

इतने प्यार के साथ आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, थैंक यू सो मच। और 10 मिनट में हमारा प्रोग्राम समाप्त होएगा, लेकिन उससे पहले अभी गाना है यम्मा यम्मा आपके लिए, रफी साहब साथ दे रहे आरडी बर्मन फिर से।

0: बात तो एकदम सही है कि आज हम साथ में हैं, कल पता नहीं कौन कहाँ होगा। चलते चलते विक किंग रुकैया सुदन के लिए गाना होगा, उनकी सिस्टर सलमा को बहुत सारा प्यार, हैप्पी बर्थडे। दुखी बहादुर फैमिली की ओर से देविना उनकी नीस अनीता सुमारू को गाना डेडिकेट करती हैं, जो कि हैं इन ऑस्ट्रेलिया।
1: You're listening RM Free Radio. Radio.
0: ये गाना राज बुदू, दिव्या, रीता देवी, जितन दुलवा, अनु मालिनी और पुष्पा, साथ में मिगेला और ललिता के नाम डेडिकेट करूंगी। थैंक यू सो मच वैदेही। चलो आपको भी थैंक यू वेरी मच। जाने का टाइम हो गया है, बाकी प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। साथ देते रहिए, मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात करूँगी मैं बहुत जल्द। हाय आतिश, हाय विमला लक्ष्मण, आपसे मुलाकात अब मंडे को होगी। अनिश्ता राम तोहल, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। आपको बहुत सारा प्यार, गाना सुनिए, मस्त हो जाइए। हैव अ ग्रेट फ्राइडे, ग्रेट वीकेंड। मिलते हैं सोमवार को यानी मंडे को।

0: चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हैं अब हम समाचारों की और जो आप सुनेंगे ठीक दो बजे
1: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 You are listening to RM3 Radio.

0: लिसनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे याचना नमस्कार
1: नमस्कार नीलमणि सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार पूर्व डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मध्य मथुरा सेन का निधन 64 साल की उम्र में हो गया है अपने लंबे करियर की शुरुआत उन्होंने एसएमएफ के साथ की जिसके बाद वे रेजिमेंटल सर्जेंट मेजर बने उन्होंने कई राष्ट्रीय आयोजनों की सुरक्षा का भार संभाला उन्होंने डिविजनल कमांडर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में भी काम किया एमबीसी शोक में डूबे परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है राष्ट्रसभा के कार्य आज शाम 3 बजे से जारी रखे जाएंगे आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन एक बार फिर पेंशन सुधार पर आधारित होगा इस दस्तावेज के परीक्षण के लिए जिम्मेदार पेशेवरों के आयोग पर विपक्ष नेता जलेशोंगा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से सवाल पूछेंगे वे जानना चाहते हैं कि इस आयोग के गठन के लिए सदस्यों के

चयन को लेकर कौन सी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। फुटबॉल की बात करते हैं। वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप के लिए कल रात 12 बजे क्वार्टर फाइनल्स का पहला मैच खेला गया फ्रांस और मोरक्को के बीच। स्कोर रहा फ्रांस 2 मोरक्को 0। इसी के साथ फ्रांस क्वालिफाई हो गया है सेमीफाइनल्स के लिए। अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने वाले

0: प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले रात 9:30 बजे से एमबीसी की ओर से स्पोर्ट्स विभाग द्वारा एक खास कार्यक्रम पेश किया जाएगा। विदेश समाचारों में स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग तेजी से फैल रही है। अभी तक कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए। 150 दमकल कर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन तपती गर्मी और सूखे के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। कौलीला शिमेघोनिये में 82 साल की 82 years old की मिसिस बीबी सारा एयासिम पैदाशी नाम दुलो और जो सारा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनका जनाजा आज दोपहर 2:30 बजे उनके बेटे फिरोज यासिम के मकान कौलीला शिमेघोनिये से उठाकर दफनाने के लिए कौशलु शिमेघोनिये का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। मोसेलमा एमडीए सियाकोंस्टांस सेंट पियर में चौहत्तर साल की 74 years old की श्रीमती द्रौपदी तिलोकी पैदाशी नाम बंधु और जो उमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनके मकान मोसेलमा एमडीए सियाकोंस्टांस सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। नंबर 491 एल्डर बेरी रोड दो पाइनवुड गार्डन वुटन में चौंसठ साल के 64 years old के श्री मॉडे मुतुरासेन जो दासेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और राजसू में पूर्व डीसीपी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ ही आज दिन के 3:15 बजे उनके मकान नंबर 491 एल्डरबेरी रोड टू पाइनवुड गार्डन वुटन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सहमत हैं मोहोश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:15 PM। नंबर 72 लोहिकू वाली पिटू में 81 साल की जनाब कहमद अली ममद अब्दुल रजाक जो बाई शरीफ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज 3:30 बजे उनके मकान नंबर 72 लोहिकू वाली पीटो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए बेडीडाम कासी का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: ninety-four, 95.6, 98.2 megahertz. You're listening RM3 Radio.

0: संगीत नृत्य और परंपरा।
1: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम आपका जाना पहचाना है, गीत नृत्य और परंपरा। श्रोताओं, गीत संगीत हमारे जीवन में है, पर नृत्य हमारे जीवन में रोज मायने में नहीं होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नृत्य से लगाव होता है, कुछ को नहीं होता है, पर जीवन में नृत्य भी हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ पाते हैं। और आज हम श्रोताओं को निमंत्रण दे रहे हैं, हमारी टीम में हैं अवि, शीतल जी और दीपशिखा जी, साथ ही अतिथि जुड़ी हैं हमारे साथ, जिनका नाम है श्रीमती वृंदा बाई नाओजी कनाहक, और हम उनका स्वागत करते हैं। आपका वृंदा जी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
2: थैंक यू, नमस्ते।
1: श्रोताओं, आज हम इनकी यात्रा के बारे में जाने, इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि नृत्य आपके जीवन में क्या है।
2: ठीक है, तो सभी को नमस्ते, अंजू को भी नमस्ते और पूरे MBC टीम को मेरा नमस्ते। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपको अंजू जी और पूरे MBC टीम को, जिनको मुझे इस मंच पे यहाँ मेरे विचार प्रकट करने के लिए

0: मुझे अवसर मिला। थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अमूल्य समय निकाला हमारे साथ, हमारे श्रोताओं को बताने के लिए कि नृत्य हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, कैसे हाँ। क्या है नृत्य आपके हाँ। लिए?
0: तो मेरे लिए नृत्य केवल डांस नहीं है, मेरे लिए नृत्य एक साधना है, एक उपासना है, भक्ति का एक मार्ग है जिससे आत्मा और परमात्मा का एक मिलन होता है। तो डांस, शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, ये उतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए।
1: इम्पोर्टेंट आपने कहा, बहुत आवश्यक है आपके जीवन में, पर कब आपको ये लगा कि ये आपके जीवन में इतना आवश्यक है?
0: अंजू जी, आपको पता है मैंने एक फर्स्ट डिग्री किया इकोनॉमिक्स में
1: जी,
0: लेकिन बचपन से ही बहुत रुचि था डांस में, म्यूजिक में,
1: वो
0: और नाटक
1: से
0: में
1: एक शौक जो है वो पनपता गया
0: बचपन से ही। तो बचपन के जब मैं 3 साल की थी
1: जी,
0: तो मैंने अपना ट्रेनिंग शुरुआत की रोजबेल के एक गांव में। मेरे पहली गुरु जो है श्रीमती पूर्णिमा देवी लक्ष्मण, इनके मार्गदर्शन में मैंने पूरा अपना जो बेसिक्स जो है उनके साथ मतलब सीखा।
1: और इसमें बेसिक, जब हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो आप अभी किसी नृत्य शैली विशेष की नहीं, बेसिक ऑफ नृत्य की बात कर रही हैं?
0: नहीं, प्रॉपर भरतनाट्यम का ट्रेनिंग जो रहता है
1: वो किया आपने?
0: वो किया, प्रॉपर टेक्निक वाले भरतनाट्यम, मतलब जैसे अरेमंदी रहेगा, नाट्यारंभ रहेगा, ये पोजीशन, सीटिंग पोजीशन, कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको डांस करना है, ये
1: सब मुद्राएं,
0: सब कुछ मैंने मेरे टीचर से सीखी। फिर इस जर्नी में मेरे पेरेंट्स ने बहुत प्रोत्साहन किया, माताजी और पिताजी ने बहुत ही प्रोत्साहन किया। पापा ड्रॉप करने के लिए जाते थे, फिर लेने के लिए आते थे।
1: तो यही सहयोग माता पिता का जब मिलता है तो बच्चे आगे बढ़ पाते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़ पाते हैं, अपनी है। जड़ें, जो हमारी जड़ें हैं हाँ। वो हमारे गीत है, शास्त्रीय नृत्य है, संगीत के साथ साथ हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, तो हाँ। उनको भी तो सींचा जा रहा है ना छोटे छोटे हाँ। माध्यमों से कि आपको हाँ। जाके ड्रॉप करना, आपको जाके लाना, ये पिता का भाग था उसमें आपकी शिक्षा के लिए
0: हाँ। और पिताजी जो है एक प्रसिद्ध गायक है मॉरिशस में
1: जी,
0: वो श्रीमान धनाजी नाव जी है, प्रसिद्ध गायक, उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में भी, मतलब नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल में बहुत
1: सम्मान मिला हुआ है,
0: सम्मान मिला है। और मेरे 2 बहनें भी है, एक उसने उसका ट्रेनिंग मतलब सर्टिफिकेट तक हुआ वोकल में, और दूसरी बहन उसने भी डांस सीखा, शास्त्रीय नृत्य। तो ऐसे ये चल रहा है परिवार में
1: हाँ। क्योंकि पिता को रुचि थी तो बच्चों में अपने आप को इंकल्टेड आ गया
0: हाँ।
1: और उसको बढ़ावा दिया आपके पिता ने, आपकी माता ने, आपको सहयोग देकर
0: जी हाँ।
1: ताकि हमारे बच्चे भी अपनी संस्कृति से जुड़ पाएं
0: जी हाँ।
1: अपनी जड़ों को संजो पाएं
0: जी
1: बहुत हाँ। अच्छा लगा। अब हम आते हैं कि भरतनाट्यम आपके लिए क्या है। भरतनाट्यम एक नृत्य शैली है, शास्त्रीय नृत्य शैली है, ये तो हम सब जानते हैं, पर इसकी विशेष बात जो आपको रुचिकर लगती हो, जो आपके लिए बहुत विशेष हो कि भरतनाट्यम के अलावा ये किसी नृत्य शैली में नहीं पा सकते।
0: ओके, भरतनाट्यम टेक्निकली अगर हम बोले तो भरतनाट्यम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य में है, एक है। तो इसमें कैसा उसके टेक्निक जो है बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ अगर हम बोल रहे हैं शास्त्रीय नृत्य, 8 शास्त्रीय नृत्य है
1: जी,
0: तो हर शास्त्रीय नृत्य के टेक्निक जो है अलग अलग रहता है
1: जी।
0: बैठने का पोजीशन, हाथ मतलब कैसे आप हाथ ये डांस करेंगे, फिर उनके मुद्रा, लेकिन ये सब कुछ नाट्य शास्त्र पे, भरत मुनि द्वारा लिखित हुई नाट्य शास्त्र पे और नंदीकेश्वरा लिखित अभिनय दर्पण पे ये अवलंबित है जी हाँ। और अगर हम भरतनाट्यम के बात कर रहे हैं तो 3 भाग आते हैं, भ, र और त।

0: का मतलब है भाव, भाव जो हम जब हम नृत्य कर रहे हैं ना तो एक्सप्रेशन। राग का मतलब है मेलोडी और ताल का मतलब है रिदम। तो भरतनाट्यम जब भाव राग और ताल और नाट्य का मिलन होता है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने थोड़े ट्रेनिंग ड्रामा में भी किया तो इसीलिए जब मैं डांस कर रही हूँ तो एक्सप्रेशन कैसे मतलब इमोट करना है। फिर अगर हम प्यू नृत्य के बारे में बोल रहे हैं तो आपको मतलब ताल पे कैसे ही कैसे आपको ताल पकड़ना है अच्छी तरह से ताकि छूट ना जाए।
1: तो ये मुझे छूट जाता तो इम्प्रोवाइज कर पाते हैं आप लोग?
0: हाँ, इम्प्रोवाइज करना ही पड़ता है।
1: जी
0: जी हाँ,
1: कहीं वो होता है कि एक नृत्यांगना का पाँव या कुछ गलत स्टेप उठा लिया, उसके बाद वो इम्प्रोवाइज करके सीधा अपनी ताल पे या उस पे आ जाती है।
0: बहुत जरूरी है, तो इसीलिए ये भी जरूरी है अंजू जी कि अगर हम नृत्य कर रहे ना
1: जी
0: तो साइड बाय साइड हमें ये म्यूजिक का भी शास्त्रीय संगीत का थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, बहुत जरूरी है।
1: तो आपने शास्त्रीय संगीत को पहले सुना फिर नृत्य शुरू किया, या के नृत्य करने के साथ साथ आपने संगीत का अनुभव किया?
0: हाँ, दोनों, दोनों साथ साथ में चले, क्योंकि कैसे हम पहले तो हम मंदिर में लोकगीत लोक नृत्य करते थे, मराठी लोक नृत्य
1: जी,
0: तो साइड बाय साइड ये म्यूजिक भी है, क्योंकि पारंपरिक जो है
1: जी
0: म्यूजिक तो चलता रहता है, तो इसीलिए। और जब MGI पे मैंने कोर्स किया डिप्लोमा का, फिर डिग्री का और मास्टर्स लेवल का, तो साइड बाय साइड हमें ये सीखना पड़ा जति स्वरम का, जो जति है, जति मतलब स्वर, सो हमें सीखना पड़ा प्रॉपरली। तो साइड बाय साइड जब हम संगीत के बारे में बोल रहे हैं ना, संगीत तो जो है मिश्रण है तीन तीन का, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्चते, तो तीनों को कंबाइन करके फिर संगीत उत्पन्न होते हैं। तो एक डांसर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको म्यूज़िक के बारे में भी पता होना चाहिए और ये गाना जो होता है ये भी पता होना चाहिए।
1: सुर ताल लय तभी
0: तीनों
1: जोड़ पाएंगे जब नृत्य कर रहे हैं, तो इन तीनों का ज्ञान भी आवश्यक है।
0: जी
1: पर आप भरतनाट्यम को किस प्रकार अपनी संस्कृति, अपने मतलब जो संस्कृति का इतिहास है उससे जुड़ा पाती हैं?
0: ओके, एक मिनट,
1: ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करते हैं तो अपने इतिहास तक पहुंच रहे हैं, अपनी परंपराओं तक, अपनी संस्कृति तक पहुंच रहे हैं। तो कैसे आज का जो युवा है वो सुने आपको, आज का जो श्रोता युवा श्रोता है वो कैसे जानेगा कि हमारी पहुंच कहाँ तक है, हमारी इतिहास में ये कैसे पाते हैं हम?
0: तो अगर हम हिंदू संस्कृति और भरतनाट्यम का संबंध बोलना चाहेंगे तो भक्ति का माध्यम है
1: जी,
0: एक भक्ति का माध्यम है। तो भरतनाट्यम के द्वारा देवी देवताओं की स्तुति और ईश्वर प्रति प्रेम व समर्पण व्यक्त किया जाता है। जैसे हम श्लोक लेते हैं, एक सिंपल श्लोक, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो इसके द्वारे हम स्टूडेंट्स को दिखाते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा।
1: उसमें आपने पूरा एक्शन डाला,
0: पूरा एक्शन डाला और बच्चों को भी सिखाया कि गणपति जो है उस मतलब जो भी है गणपति के उनके
1: उनका रूप
0: कैसे, हाँ उनका रूप कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, सब बच्चों को सिखाते हैं।
1: तो बड़ी काया है उनकी, बिल्कुल।
0: फिर धर्म और संस्कारों का संदेश, रामायण महाभारत पुराणों और धार्मिक कथाओं को भरतनाट्यम नृत्य के

0: माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि सीता स्वयंवर
1: जी
0: रामायण में। तो सीता जी और रामचंद्र भगवान के स्वयंवर कैसे हुआ? फिर अगर एक दूसरा एपिसोड लेते हैं, जब हनुमान जी वो सीता की अंगूठी
1: लेके पहुंचे अशोक वाटिका में,
0: तो ये भी और एक ये है और एक मतलब प्रकार है जिसके माध्यम से। फिर महाभारत आते हैं, द्रौपदी चिरहरण। तो इनके द्वारे हम अपने स्टूडेंट्स को भी मतलब स्टूडेंट्स को अपने संस्कृति के बारे में
1: बता रहे हैं
0: धीरे धीरे। फिर
1: तो हमारे जो ग्रंथ हैं, रामचरितमानस है, रामायण है, महाभारत
0: है, पौराणिक
1: उपनिषद है,
0: उपनिषद है,
1: तो उन सब के माध्यम से आप समझा रही हैं कि कितना आवश्यक है शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत। बहुत सुंदर। इसके अलावा
0: फिर शास्त्रीय परंपरा
1: जी,
0: भरतनाट्यम का आधार जो है नाट्य शास्त्र है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का उल्लेख किया हुआ है। जैसे हमने लिरिक्स लिया, म्यूजिक लिया, फिर जेस्चर्स लिया
1: जी,
0: फिर सेंटिमेंट्स लिया, तो इनको जोड़ के नाट्य शास्त्र प्रकट हुए। तो अगर हम नाट्य शास्त्र के बारे में हम बोल रहे हैं, तो साइड बाय साइड जो है हम वेदों को भी मतलब वेदों का जो महत्व है हमारी संस्कृति में, तो बच्चों को ये
1: बता रहे हैं
0: धीरे धीरे से। फिर मंदिर संस्कृति से जुड़ाव, प्राचीन काल में और अभी भी मंदिरों में, कोविल में, मंदिरम में अगर पूजा हो रही है, तो शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही ज़्यादा। तक जब हम ये देखेंगे कावड़ी फेस्टिवल, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, तो सब
1: त्योहार है
0: उत्सव है, तो इसमें आप देखेंगे शास्त्रीय नृत्य गौबासे में हो रही है, अलग अलग
1: सोशियो
0: कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है
1: जी।
0: तो अगर एक स्टूडेंट स्कूल में ये सीख रहा है, तो वो अपने मंदिर में, अपने संस्था में, अपने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में दिखा सकते हैं। सिर्फ अगर
1: जुड़
0: हम
1: सकते
0: एक
1: हैं,
0: जुड़
1: उनको
0: सकते
1: समझ
0: हैं,
1: सकते हैं
0: हाँ, और अगर उनकी फ्रेंड्स भी है तो फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि ये मुद्रा मतलब कैसे यूज करेंगे
1: जी।
0: अगर आपको कृष्णा दिखाना है तो आपको कैसे दिखाएंगे, कैसे ये
1: हाँ।
0: फिर अगर आपको नटराज, महाशिवरात्रि बोले तो अगर आपको नटराज के स्वरूप दिखाना है तो हाथ कैसा होना चाहिए, कैसे हम दिखाते हैं, ये सब हम मतलब ऐसे तो हम अपने संस्कृति से बहुत ही जुड़ा हुआ है,
1: समीप पाते हैं
0: जी,
1: अपने आप को नृत्य करके
0: जी हाँ।
1: तो आपने सबसे पहले जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो आपने कहा ये मेरे लिए पूजनीय है
0: जी हाँ,
1: आपको ईश्वर से मिलाता है
0: जी हाँ।
1: तो आप अभ्यास समय में ईश्वर से जुड़ती हैं, कितना अभ्यास करना पड़ता है आपको एक दिन में, या कि अब आप क्योंकि अध्यापिका हैं इसकी तो अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, वो रच बस गया है आप में, पर फिर भी कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं हम रोज एक ही मंत्र बोलते हैं ओम भूर्भुवस्व या कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो रच बस जाता है, बिना अर्थ जाने हम उसको बोल जाते हैं, क्योंकि ध्यान कहीं और होता है और मंत्र उच्चारण क्योंकि अभ्यास के उसको कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो वो हमें रटा हुआ है तो हम बोल जाते हैं। इसी प्रकार आप नृत्य करते समय भी आपको सारी मुद्राएं पता हैं, आपके लिए बहुत आसान है, उस समय आपका ध्यान आवश्यक है या कि नहीं, क्योंकि वो आप में रचा बसा है आप कर लेती हैं।
0: वैसे तो रियाज एक
1: बहुत आवश्यक है,
0: बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही। पहले तो जब हम कोशिश करते थे तो एकदम ये अनुशासन जो बोलते हैं डिसिप्लिन, एकदम डिसिप्लिन से हम सीखे,
1: नियम अनुसार
0: सर्टिफिकेट कोर्स किया, डिप्लोमा किया, डिग्री किया, मास्टर्स किया, सब

0: सीख मतलब जब हम क्लास में जाते हैं तो एक अनुशासन को पालन करके हम जाते हैं। तो मैंने बोला कि नृत्य मेरे लिए एक साधना है। कैसे? क्योंकि अभी तो हमने सीखा, जो भी बेसिक्स था सीखा, जो भी ये है क्या बोलते हैं कंपोजिशंस है हमने सीखा, लेकिन कैसे वो जुड़ा होता है आत्मा और परमात्मा का। जैसे अगर हम प्रेयर कर रहे हैं, कोई तो एक मार्ग है भक्ति का, हम गुणगान कर रहे हैं, तो हमारे लिए नर्तिका नृत्य डांसर के लिए जब हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे जो परम ये है गोल जो है, जो भी फीलिंग है अंदर में आपके, ये फीलिंग मुझे अपने रसिका को अपने स्पेक्टेटर्स को पहुंचाना ही पहुंचाना है।
1: बिल्कुल,
0: यही तो हम अभिनय बोलते हैं। और इस फेज में जब मैं सपोज मैं एक भक्ति के ऊपर एक नृत्य कर रहे हैं, तो अगर मेरा कनेक्शन नहीं है परम आत्मा से तो मेरे जो स्पेक्टेटर्स है उनको भी नहीं फील
1: नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ नहीं पहुंचा तो ऊपर कैसे जाएगा,
0: नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए मेरी डांस जो है, मेरी भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो है, मेरे लिए एक साधना है, क्योंकि इससे इस क्योंकि इसके माध्यम से ही ये मेरी पूजा है, ये मेरी पूजा है। क्योंकि स्टेज पर आने से पहले ही हम गणेश भगवान को पूजा करते हैं, फिर अपने गुरु को, गुरुजनों को, फिर अपने घुंघरू को भी पूजा करते हैं, मंश को भी हम पूजा करते हैं। तो अगर ये साधना नहीं है तो क्या बोले,
1: तभी आप जुड़ पाती हैं।
0: हाँ, जुड़ पाती है
1: उस अभ्यास से
0: जी।
1: तभी आप अपने शास्त्रीय नृत्य को, शास्त्रीय संगीत को समझ पाती हैं और अपने श्रोताओं तक या दर्शकों तक पहुंचा पाती हैं। क्योंकि संगीत तो श्रोता के लिए है, पर दर्शक जब सामने बैठे हों उनका जो करतल ध्वनि है वो बता देगी आपने कैसा नृत्य किया। क्योंकि जब तक दर्शक सही मायने में आपसे प्रभावित नहीं होंगे, उनकी करताली में वो आवाज़ वो खनक नहीं पाएंगे। आप सहमत हैं मुझसे?
0: जी हाँ। और डांस में कैसे, भरतनाट्यम में दो भाग है, एक तो नृत्य अगर बोले तो ये प्योर डांस है, जो टेक्निक हम सिखा रहे हैं स्कूल में, क्योंकि स्कूल में हम नृत्य के बारे में नहीं बोल सकते ज़्यादा। नृत्य जो होता है वो डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर लेवल के हिसाब से हम बच्चों को सिखाएंगे, मैंने सीखा। तो स्कूल में कैसा, ये एक प्रकार का अगर हम नृत्य बोल रहे हैं तो कोई भी नृत्य सीख सकते हैं स्कूल में,
1: फॉर्म वन से एचएससी लेवल तक,
0: फॉर्म वन से ग्रेड नाइन तक, ग्रेड सेवन से ग्रेड नाइन तक हम सिखाते हैं। क्योंकि हमारे स्कूल है मॉरिशस जो है एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो स्कूल में हम इतने एम्फेसिस नहीं देंगे कि क्लासिकल डांस जो है हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, बहुत ही मतलब
1: बेसिक,
0: लेकिन सब टेक्निक को ध्यान में रख के हम सिखाते हैं। और अगर एक नॉन हिंदू है क्लास में, उसको भी नहीं फील होना चाहिए
1: शास्त्रीय संगीत से नहीं जोड़ पाएंगे,
0: संगीत की भरतनाट्यम उसके लिए नहीं है। नहीं, डांस जो है सबके लिए यूनिवर्सल, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है डांस का।
1: बिल्कुल।
0: तो क्लास में हम कैसे सिखाते हैं कि ये डांस जो है सबके लिए है, मूवमेंट्स जो है सबके लिए है। इट इज नॉट लाइक अगर आप हिंदू हो तब ही आप भरतनाट्यम सीखेंगे, नहीं। भरतनाट्यम जो है, डांस जो है, कोई भी नृत्य शैली, कथक बोले, कुचिपुड़ी बोले, सब के लिए है।
1: जिस प्रकार योग है आज,
0: जी हाँ,
1: आज दुनिया भर के लोग योग कर रहे हैं,
0: जी हाँ,
1: तो वो भी इंटरनेशनल हो गया ना, भारत की उत्पत्ति है, भारत से शुरुआत हुई, पतंजलि से ये शुरुआत हुई और आज ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है
0: जी हाँ।

0: उसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस का भी सम्मान प्राप्त है कि 21 जून को हमें संगीत दिवस भी मनाना है, योग दिवस भी मनाना है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात हो सकती है। पर हम क्योंकि यहाँ पर मॉरिशस में ये स्कूल में नहीं प्रस्ताव रख सकते कि ये एक के लिए नहीं सभी के लिए है। तो आप उसे शास्त्रीय संगीत ना बोलकर केवल नृत्य बोल रही हैं।
1: हाँ जी हाँ।
0: अब मैं जानना चाहूंगी कि नृत्य और नृत्य में अंतर।
1: नृत्य मंजे प्योर डांस, जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ अल्लाह रिपू का, बहुत ही सिंपल है, जो फर्स्ट कंपोजिशन है जो हम सिखाते हैं बच्चों को आफ्टर ट्रेनिंग लेने के बाद।
0: ट्रेनिंग कितने सप्ताह की होती है?
1: ट्रेनिंग यहाँ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग का, अगर हम सर्टिफिकेट लेवल बोल रहे हैं तो 3 साल का ट्रेनिंग है। तो 3 साल के बाद, मतलब 2 साल के बाद, तीसरे साल में हम कंपोजिशन सिखाते हैं। 3 कंपोजिशन है, अल्लाह रिपू, जतिस्वरम और शब्दम। तो आज ये जो प्योर डांस जो बोलते हैं, मैं एक उदाहरण देती हूँ अल्लाह रिपू से। सो धला अंगुता का दिगुता का तदिगे न तोम ता तई तई युम तत् ताम किरत कता तई तई युम तत् ताम किरत कताम तत् ताम। तो आईज मूवमेंट, नेक मूवमेंट, अपने हैंड और फीट मूवमेंट्स,
0: हैंड्स एंड आर्म्स,
1: जी हाँ। तो तत् गदि गदि झुम ता, तत् गदि गदि झुम तई, तत् कदि झुम ता, तत् कदि झुम ते, तत् कदि झुम, तक कित धरुतोम, तक कित धरुतोम, तक कित धरुतोम। तो सब एम्फेसिस जो है मूवमेंट्स के ऊपर है, वर्डिंग्स के ऊपर है, ताल के ऊपर है। अगर हम नृत्य के बारे में बोल रहे हैं, नृत्य मतलब इमोशंस, समझे? अगर हम लव को दिखाना है, बेसिक लव, तो कैसे दिखाएंगे?
0: तो वो एक्सप्रेशन बदल जाएंगे आपके,
1: ऐसे
0: इमोशंस के साथ।
1: इमोशन के साथ अगर आपको भय दिखाना है, कैसे दिखाएंगे?
0: मतलब नेत्रों द्वारा,
1: नेत्रों द्वारा। अब सब फीलिंग्स जो है अंदर से आना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: अंदर से। एक डांस शैली है जो कथकली है, इस जिसमें आपको एल्बो का भी बहुत ही, नोज का भी, नाक का भी इस्तेमाल करता है, कान का भी इस्तेमाल, ये ओठ जो है, पूरा ये फेस जो है आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक प्रॉपर इमोशन अपने दर्शकों को दिखाना है,
0: पहुंचाना है।
1: जी हाँ
0: बिल्कुल,
1: बहुत ही आसान नहीं है।
0: कभी आपने ऐसा पाया कि आप एक दिन बहुत उदास हैं और आपको किसी मंच को सजाना है एक बहुत ही अच्छे कारण के लिए, बहुत खुशी का संदेश पहुँचाना है, तो उस समय आप क्या करती हैं? घर में आप उदास हैं, आपके ऊपर कोई समस्या है? आजकल तो टेंशन बहुत आसान हो गया है, मुदा टेंशन पर आपको एक संदेश जो है देना है खुशी का, तो आप क्या करती हैं?
1: ऐसे होता है, मतलब क्योंकि हमारे ट्रेनिंग जो है इतने, एक्सक्यूज मी, इतने कठिन ट्रेनिंग हुआ है हमारा, तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं सैड भी हूँ,
0: स्विच कर जाती हैं आप?
1: स्विच कर सकते हैं आसानी से।
0: कैसे
1: हो जाता है अंजू जी? हो जाता है क्योंकि हमारे अंदर है जो भाव।
0: जब मैं कैसे कह रही हूँ तो आप ब्रीद पर इम्फेसाइज करती हैं, या कि आप सोचती हैं एक मिनट के लिए, समय लेती हैं, आंखें बंद करके अपने ईश्वर से बात करती हैं, क्या होता है?
1: सब कुछ साइड में रख के मैं अपने रियाज शुरू करूँगी, डांस शुरू करूँगी, जो भी मैसेज मुझे पहुँचाना है मैं उसके ऊपर
0: ध्यान
1: देगी, अपने हो जाएगा, हो जाता है आसानी से,
0: क्योंकि
1: आसानी
0: आपका से। अभ्यास बड़ा सशक्त है। तो जब आप छात्रों के साथ काम कर रही हैं तो आपको ये बताना होता है कि अभ्यास कितना आवश्यक है।
1: जी हाँ।
0: और आप अपने छात्रों को कितना समय देती हैं अभ्यास करने के लिए, और कितना समय चाहती हैं कि वे अपने घर पर जाके अभ्यास करें?
1: जी, कॉलेज में कैसा है, ये देखिए, हम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए, मतलब मैं जहाँ काम करती हूँ, मैं महात्मा गांधी सेकेंडरी स्कूल सोलफेरिनो में काम करती हूँ।
0: जी,
1: तो महात्मा गांधी संस्था जो है, जो वो बहुत ही एम्फेसिस लेते हैं, देते हैं शास्त्रीय संगीत के ऊपर, ओरिएंटल लैंग्वेज के ऊपर। तो ये

0: मेरे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स आते हैं क्लास में उनको पहले से ही अनुशासन के बारे में पता है, उनके शूज़ जो है बाहर होना चाहिए, अंदर आने के बाद खाना नहीं चाहिए, और फिर हमारे क्लास जो है एकदम साफ़ है, तो बच्चों बैठ के सीख सकते हैं। क्लासेस कैसे हम शुरुआत करते हैं? प्राणायाम से, लेकिन हम प्राणायाम नहीं यूज़ करेंगे, हम ब्रीविंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तो ये टेक्निक से हम बच्चों को
1: अनुलोम विलोम से आप शुरू करती हैं।
0: जी हाँ। फिर उसके बाद होता है थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज। वार्म अप एक्सरसाइज के बाद फिर हम क्लास शुरू करते हैं। तो उनको मतलब बताना चाहिए कि अगर क्लास के बाद अगर आप प्रैक्टिस रियाज नहीं करेंगे घर पे, 5 मिनट 10 मिनट, अगर आप मतलब आप लिख रहे हो, ध्यान कर रहे हो और आप थके हुए हैं, तो आप जाके रियाज करो, 5-10 मिनट करो, तैयुम तत् तत् तैयुम ताम तैयुम तत् तत् तैयुम ताम, वो अपने आप काम हो जाएंगे, ये थकान भी दूर हो जाएंगे स्टडीज से, फिर वापस आप कर पाओगे।
1: आपने कहा थकान दूर हो जाती है, मुझे पता है जब लोग नृत्य करते हैं तो थक जाते हैं पर आप कह रही हैं कि थकान दूर हो जाती है।
0: मेंटल,
1: इसमें दो चीजें हैं, एक से थकान दूर होती है, एक से थकान अधिक होती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: दूर होती है। मेंटल स्ट्रेस जो है, मेंटल मेरा मतलब था मेंटल स्ट्रेस, जब आप नृत्य कर रहे हैं जो भी मेंटल स्ट्रेस है आपके अंदर, आपको ये कंप्लीट करना है, ये प्रोजेक्ट करना है, तो ये सब दूर होता है और हमेशा आप मतलब यूथफुल रहेंगे, क्योंकि मेरे हाँ नहीं मतलब ब्यूटीफुल यूथफुल ब्यूटीफुल रहेंगे और हमेशा आप अपने स्वास्थ्य के रिलेटेड आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अगर हम शास्त्रीय संगीत बोल रहे हैं ना, तो क्लोजली रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन भी है।
1: जी,
0: फिजिकल एजुकेशन और शास्त्रीय संगीत दोनों में ही हम ये एक्सरसाइजेस कर रहे थे। हाँ, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ आपको मेंटल पीस होंगी। आपने योग के बारे में बोला,
1: जी,
0: तो ये मैं मेंशन करूँगी कि हमारे स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी संस्थे के स्टूडेंट्स, दो स्कूल, महात्मा गांधी न्यूवेल फ्रांस और सोलफेरिनो, हम अपने स्टूडेंट्स को भारत लेके गए अहमदाबाद में
1: 21 तारीख को जून
0: इंटरनेशनल योगा डे के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे स्टूडेंट मॉरिशस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उन लोगों को इंडिया मतलब
1: लेकर गए। तो ये एक बड़ी बड़ी सम्मान की बात है।
0: जी हाँ,
1: जो बिंदु हमारे मैप पे दिखता तक नहीं है, उसके छात्र योग के लिए भारत जैसे देश में, बड़े देश में पहुंचे।
0: और हमारे तो संस्था ने बहुत ही प्रोत्साहन किया,
1: प्रोत्साहन है कि बच्चे वहां तक पहुंच पाए।
0: जी हाँ, और आपको पता है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट
1: कितने छात्र थे?
0: सोलफेरिनो से 4 और न्यूवेल फ्रांस से 5,
1: तो 9 छात्रों को लेकर आप गई योग दिवस के लिए।
0: जी हाँ,
1: तो ये एक सम्मान की बात है और आपके लिए अधिक, क्योंकि आपके छात्र वहां तक पहुंच पाए।
0: जी हाँ
1: जी।
0: और आपको पता है जो टेक्निक हम योग में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत सी टेक्निक भरतनाट्यम से बहुत जुड़ा हुआ है,
1: मिलती जुलती है।
0: जैसे हम ये आसन कर रहे हैं, आपके पैर कैसे होना चाहिए, स्ट्रेचिंग कैसे होना चाहिए, ये तो मतलब हमारे छात्रों ने बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा किया चैंपियनशिप में।
1: बहुत ये तो गर्व की बात है कि महात्मा गांधी संस्थान से SSS से छात्र लोग वहाँ तक पहुँचे। अब मैं फिर दोबारा आती हूँ नृत्य पर कि नृत्य सीखने के लिए आज के तिथि में आप कितने छात्रों को सिखाती हैं एक साथ?
0: अच्छा, एक क्लास में मिनिमम 12 छात्र
1: सीखते हैं। तो 12 छात्रों में कुछ छात्र, आपको तो अनुभव है तो आप पहचान जाती होंगी कि ये जबरदस्ती कर रहा है क्योंकि उसकी माता पिता ने कहा है, और ये छात्र अपने आपसे कर रहा है क्योंकि उसे रुचि है, तो ये जानना आसान है आपके लिए?
0: आसान नहीं है, लेकिन

0: हम कैसे सिखाते हैं स्कूल में, ज़्यादा टेंशन स्टूडेंट्स को नहीं देते, स्टूडेंट्स को टेंशन नहीं देते, टेक इट लाइटली, लेकिन आपको नियम के साथ करना है, टेक्निक के साथ करना है. जो भी आप कर सकते हो आप करो, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे. लेकिन जिनकी रुचि है, आप मतलब जब वो डांस कर रहे हैं पहचान जाते हैं, तो उनके लिए, क्योंकि यही हमने सीखा हमारे PGCA में, तो ये छात्र जो है हम मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं देंगे उनके ऊपर, लेकिन उनको एंकरेज करेंगे धीरे धीरे से, और वही छात्र आगे जाके सर्टिफिकेट करते हैं महात्मा गांधी संस्था में. क्योंकि महात्मा गांधी संस्था जो है एक 3 साल का सर्टिफिकेट को जो है सोलफेरिनो में चल रहा है, और अलग अलग संस्था में अभी ये चल रहा है रजिस्ट्रेशन. तो ऐसे मैं आइडेंटिफाई करती हूँ, आप बहुत अच्छे कर रहे हो तो आप ज्वाइन करो. ऐसे
1: अब मैं आती हूँ के वार्षिक उत्सव होते हैं स्कूल में भी, संस्थाओं में भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं, आपके छात्र उसमें भाग लेते हैं?
0: जी ज़रूर.
1: और आप स्वयं उनके साथ जाती हैं या कि केवल छात्रों को प्रोत्साहित करती हैं, आप भाग नहीं लेती हैं?
0: नहीं, हम कई प्रोग्राम्स है, जैसे प्राइज गिविंग डे स्कूल में, और लास्ट ईयर एक क्वालिटी सर्कल का एक प्रोग्राम था जिसमें हमने साथ साथ लिया भाग, और ये एक्सपीरियंस जो है बहुत ही क्या बोलते
1: अच्छा
0: हैं,
1: लगा,
0: एनरिचिंग था, बहुत ही एनरिचिंग था. क्योंकि टीचर जो है, हम सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं सिखाते हैं, हम भी सीखते हैं उनके द्वारे, हम भी सीखते हैं.
1: लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग
0: प्रोसेस.
1: हाँ, तो वो तो चलता ही रहता है.
0: तो स्टूडेंट्स के साथ मैं भी परफॉर्म करती हूँ.
1: आप परफॉर्म करती हैं
0: जी,
1: पर
0: हाँ.
1: क्या ये शास्त्रीय नृत्य पर ही रहता है या कि हिंदी सिनेमा के गीतों पर भी आधारित रहता है?
0: नहीं, हिंदी सिनेमा तो हम नहीं लेते
1: जी,
0: ज़्यादा तक हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लेंगे या फिर यूट्यूब पे जो भी म्यूजिक रहेगा तो उनके ऊपर मैं सिखाती हूँ. क्योंकि फिल्मी म्यूजिक जो है वो कल्चरल प्रोग्राम में
1: चल पाएगा.
0: हाँ, तो हमारे प्रोटोकॉल पर जो है हम ज़्यादा तक एम्फेसिस लेंगे शास्त्रीय नृत्य के ऊपर, और कैसे स्टूडेंट्स को एंकरेज करने के लिए. क्योंकि अगर हम एक प्रॉपर शास्त्रीय म्यूजिक लिया तो स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं होंगे. तो हम क्या करते हैं, थोड़े मैं रेमिक्स नहीं बोलूँगी लेकिन थोड़ा मिक्सचर म्यूजिक अभी मिल रहा है यूट्यूब पे, तो ये हम लेते हैं
1: रिमिक्स.
0: जैसे कि मैं एक उदाहरण देती हूँ,
1: संगीत भी है और थोड़ा सा
0: रिमिक्स मॉडर्न
1: म्यूजिक भी आ जाता है उसमें,
0: तो ये उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है. लेकिन हमारे जो टेक्निक है भरतनाट्यम का, ये हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे.
1: बिल्कुल
0: राइट. जैसे कि
1: उसका प्रारूप नहीं बदलना चाहिए,
0: नहीं बदल देंगे. तो ऐसे तो देन स्टूडेंट्स लाइक उनकी रुचि रहती है भरतनाट्यम में.
1: और कहीं आप मानती होंगी कि बहुत सारी जो फिल्मी गीत हैं शास्त्रीय संगीत पर आधारित हैं, पर उनके बोल आपको वो परमिशन नहीं देते होंगे कि आप उन्हें अपने छात्रों के लिए जोड़ पाएं, क्योंकि आपके स्कूल में केवल हिंदी या मराठी या तमिल नहीं, बहुत सारे और अन्य छात्र भी जुड़ते हैं, तो इसलिए आप उन बोलों का प्रयोग नहीं कर पाती
0: जी
1: हैं
0: जी.
1: ये विशेष कारण रहा होगा आपके लिए. अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगी कि आपने कितने वर्ष में ये पूरा प्रोग्राम जो था, सर्टिफिकेट से लेके डिप्लोमा से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक या जहाँ तक भी आपने पढ़ाई की, हाँ, कितने वर्ष लग गए आपको?
0: प्रॉपर ट्रेनिंग जो है प्री प्राइमरी सेकेंडरी, अगर मैं बोलूँ 15 साल से या 20 साल,
1: मतलब ये कंटिन्यूअसली चलता रहा तीन वर्ष की आयु से.
0: फिर जब मैं ग्रेड 11 में थी तब मैंने

0: सर्टिफिकेट किया प्रॉपर महात्मा गांधी संस्थे से. उसके बाद फिर HSC हुआ. HSC के बाद मैंने छोड़ दी, मतलब छोड़ दी उच्च शिक्षण के लिए. मैं भारत गई थी, वहाँ मैंने इकोनॉमिक्स किया. तो फिर वहाँ क्योंकि इतनी रुचि थी, भारत में हूँ तो साइड बाय साइड मैं कर रही थी भरतनाट्यम, ज्वाइन किया था एक ग्रुप. फिर वापस आने के बाद मैं काम पे थी, ऑफिस में काम करती थी. फिर मैंने ये देखा कि MGI ने अपना डिप्लोमा कोर्स लॉन्च किया, तो मैंने सोचा कि चलो
1: अब तो सीखने अपने देश में है,
0: अपने देश में है, टाइम भी है, तो क्योंकि पार्ट टाइम कोर्स था तो मैंने ज्वाइन किया. तो ऐसे करके 3 साल बीत गए. फिर डिप्लोमा करने के बाद ये अवसर मिला शिक्षिका बनने के लिए, तो मैंने अप्लाई किया, तुरंत शिक्षिका बनी. तो फिर उसके बाद डिग्री 2 साल का, MA 2 साल का, फिर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन जो बहुत ही ज़रूरी है शिक्षिका के लिए, मतलब ये स्टडी ये एजुकेशन सेक्टर के लिए. तो इसीलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन भी किया.
1: आपने कहा आप भारत गई तो वहाँ पर भी आपने भरतनाट्यम सीखा.
0: जी हाँ,
1: भरतनाट्यम आपने महात्मा गांधी संस्थान में भी सीखा.
0: जी हाँ.
1: क्या अंतर पाया?
0: इंडिया तो माँ है, तो वहाँ, लेकिन तब मैं एकदम एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि वहाँ भी मैं बेसिक्स ही सीख रही थी. लेकिन डांस का जो एसेंस है मॉरिशस में सीखा, गुरु के मार्गदर्शन, क्योंकि यहाँ की मेरे गुरु जो है, मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगी क्योंकि मेरे 3 गुरु जो है, श्रीमती पूर्णिमा देवी लक्ष्मण, दीदी सचिता देवी, श्रीमती संध्या मंगर, उन लोगों ने मतलब बहुत ही क्या बोलेंगे, अपने दिल लगा के
1: स्टूडेंट्स का,
0: हाँ,
1: शिक्षण
0: सिर्फ
1: दिया.
0: मुझे नहीं, मतलब मेरे हाँ, छात्रों को,
1: सभी छात्रों को,
0: हाँ, ये दिया. मतलब कैसे एक्सप्रेशन करेंगे, कैसे आपको बैठना है मिरर के सामने और कैसे इमोट करेंगे, ये सरल नहीं है, ज्यादा बिल्कुल बहुत ही डिफिकल्ट है.
1: आपने एक बहुत अच्छी बात कही, शीशे के आगे. दर्पण में अपना अभ्यास करना आसान है या बिना दर्पण के?
0: पहले बिना दर्पण के आप ट्राई करो, आप इमेजिन करो कि आपको क्या पोर्ट्रे करना है. अगर आपको जैसे सीता पोर्ट्रे करना है तो सीता के कौन कौन से क्वालिटीज़ है, कौन कौन से गुण है,
1: वो जानना आवश्यक है.
0: फिर आप ट्राई करो. अगर आप एक इनोसेंट लिटिल गर्ल की भूमिका निभा रही है प्ले में, अपने नृत्य में, तो उनकी फीलिंग्स क्या है, कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे वो, तो अपने आप बैठ के करो. फिर उसके बाद मिरर में जाके करो, मैं ये ठीक कर रही हूँ, ठीक नहीं कर रही हूँ. लेकिन ये स्वयं का प्रैक्टिस है, टीचर के सामने नहीं. टीचर के सामने ऑल सब प्रिपरेशंस करने के बाद आप जाओ, स्वयं का प्रैक्टिस जो है हम कर सकते हैं मिरर के सामने.
1: अच्छा, आज प्रौद्योगिकी का ज़माना है, हर तरफ, हर बच्चे से लेके बड़े तक मोबाइल सबके हाथ में है, टेबलेट सबके हाथ में है, लैपटॉप सबके हाथ में रहता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. क्या एक छात्र या कोई भी बच्चा सोचता है कि मैं YouTube के माध्यम से भरतनाट्यम सीख लूँगी, या कोई भी एक चैनल है जो कि सिखाता है, ऑनलाइन मैं सीख पाऊँगी, ऐसा संभव है?
0: हाँ, चल रही है
1: ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके सीख लेते हैं.
0: ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मॉरिशस में मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन इंडिया में चल रही है ऑनलाइन क्लासेस. लेकिन कैसा टेक्निक जो है, क्योंकि गुरु, अगर आप

0: गुरु के मार्गदर्शन, गुरु के घर पे जाके सीख रहे हो, वही तो हम बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा। गुरु के घर पे जाके सीख रहे हो तो गुरु आपको ABCD भरतनाट्यम का ABCD सिखाएंगे। ऑनलाइन में ये नहीं होगा,
1: नहीं होगा,
0: नहीं होगा, नहीं होगा। वो
1: तो
0: सिर्फ आपको बताएंगे,
1: जो जड़ है वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे,
0: नहीं पहुंच पाएंगे
1: बिना गुरु के।
0: बिना गुरु,
1: तो गुरु होना आवश्यक है,
0: बहुत ही जरूर है एक विद्यार्थी के जीवन में। अगर आपको शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत सीखना है तो आप गुरु के पैरों में जाओ, वही मतलब वहां से, क्योंकि अभी तो इंस्टीट्यूशन है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आप गुरु से सीखो, इंस्टीट्यूशन में जाके सीखो, लेकिन ऑनलाइन में ABCD जाके सीखो पहले, फिर आप ऑनलाइन करो।
1: पहले गुरु से वो ABCD सीखना आवश्यक है।
0: हाँ,
1: जब आप जी तक पहुंच जाएं
0: तब ऑनलाइन कर सकते
1: हैं।
0: जैसे कि मैं अभी ऑनलाइन कर सकती हूँ, मतलब अभी मैं सीख सकती हूँ ऑनलाइन, क्योंकि अगर वो मुझे बोल रहे हैं कि आपको ये इमोशन इमोट करना है, तो मतलब समझ है मुझे कि मुझे क्या करना है। लेकिन अगर बच्चे को ये सिर्फ देख रहा है कि आप अपने हाथ सिर्फ देखेंगे, हाथ ऐसे करो, उनको कैसे पता चलेगा कि नात्यारंभे इसको बोलते हैं कि आपके हाथ ऊपर होना चाहिए, एल्बो ऊपर होना चाहिए, आपके हाथ ऐसे कमर पे होना चाहिए, तो कैसे पता चलेगा? ऑनलाइन पे हम नहीं, मतलब कैसे करेक्ट करेंगे, वो टीचर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि आप जाके सीखो, संस्था में जाके सीखो। और मॉरिशस में कैसे, हमारे ये महात्मा गांधी संस्था तो बहुत ही फेमस है, और जो भी
1: ये मतलब हमारा सौभाग्य है कि देश में सभी स्कूलों में सिखाया जाता है, उसके बाद संस्थाएं भी सिखाती हैं।
0: जी हाँ
1: जी।
0: और अभी कैसा, Grade 7, Grade 8, Grade 9 के लिए भी बुक्स है, बुक्स।
1: अच्छा, आपने एक पुस्तक ले ली जिसमें भरतनाट्यम का इतिहास से लेके आज तक की तिथि का सब कुछ है।
0: सब कुछ
1: क्या
0: है।
1: एक पुस्तक से छात्र सीख पाता है कुछ?
0: जी हाँ, क्योंकि हम समराइज करते हैं, समराइज।
1: पर भी पुस्तक के साथ भी तो उसे गुरु चाहिए।
0: नहीं हाँ, सॉरी, थ्योरी पार्ट जो है वो सीख सकते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में है, तो आसानी से पढ़ के, अंडरलाइन करके, यूट्यूब पे जाके, ChatGPT पे जाके, मतलब आसान है, सीख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट जो है,
1: अभ्यास जो है
0: गुरु के बिना नहीं होगा।
1: अच्छा,
0: नहीं होगा।
1: आप एक शिक्षिका हैं, आप एक छात्र को सिखा रही हैं, एक हाथ टेढ़ा जा रहा है या एक हाथ की मुद्रा सही नहीं है, तो आप उससे करके दिखाती हैं, उसको पकड़ के सिखाती हैं, या क्या आप दर्पण का प्रयोग करती हैं, किस प्रकार आप सुधार पाती हैं?
0: जी, सब क्लासेस में मिरर है, दर्पण है,
1: तो सभी स्कूल्स में,
0: सभी स्कूल्स में, MGI स्कूल्स में,
1: जी
0: MGI स्कूल्स में मिरर है, एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट रूम है हमारे लिए। तो कैसे हम सिखाते बच्चों को, पहले हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि आपको,
1: आप करके दिखाएंगे।
0: हाँ, हम करके दिखाएंगे, फिर वो इमिटेट करेंगे, इमिटेशन के द्वारे तब मैं करेक्ट करेंगे, क्योंकि कैसे कॉग्निटिव जो है ब्रेन में, जो भी बच्चों ने देखा वो इमिटेट करेगी, लेकिन वो ठीक कर रही
1: है, भाग छूट गया,
0: छूट गया, आप ज़्यादा ऊपर जा रहे हो, अगर आप जंप कर रहे हो, कुडित्ता मट्टा कर रहे हो, तो जंपिंग कैसे होगा, आपको नीचे जाना है, आपके पैर कैसे होना चाहिए। कभी कभी जब इनिशियल स्टेजेस है ना, Grade 7 में जब स्टूडेंट्स आते हैं, तो मैं पैरों को पकड़ के भी सिखाती हूँ, कि क्योंकि उनको मतलब ऑनसेट बिगिनिंग से ही आपको पता होना चाहिए कि आपके पैर कितना आपको
1: उठाना है।
0: तो और आपके बॉडी जो है, क्योंकि कभी कभी जब नमस्कार कर रहे हैं तो ये पोस्चर्स बेंडिंग पोस्चर अलाउ नहीं है, आपको कैसे एकदम स्ट्रेट खड़ा रहना है और आप अपने पोस्चर्स करो, तो ये सब हम मतलब ऑन फ्लो करेंगे। और कैसे, मतलब एक स्टूडेंट को छोड़ के दूसरे स्टूडेंट को मतलब करेक्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज इनिशियल में होता है, Grade 7 में। और छात्राओं अगर थर्ड टर्म में आए, तो थर्ड टर्म

0: में अपने आप में जो मतलब बदलाव होंगे उनके उनको समझ में आया कि मतलब अरे मंदी क्या है, नाते रंभे क्या है, आपको कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, स्ट्रेचिंग कैसे करना चाहिए, ये सब आ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के बाद, क्लास में प्रैक्टिस, घर पे भी प्रैक्टिस।
1: अब मैं आती हूँ कि आपने कहा कथक एक बहुत सशक्त शास्त्रीय नृत्य शैली है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली है, कुचिपुड़ी एक दूसरी है, आठ इस प्रकार शास्त्रीय नृत्य हैं। कहाँ अंतर पाती हैं आप कथक और भरतनाट्यम में?
0: अच्छा, बहुत ही अंतर है
1: जी।
0: भरतनाट्यम का जो टेक्निक है एकदम हम बोलेंगे मैथमेटिक्स के जैसे है
1: जी।
0: जैसे मैंने ये किया, आप देखेंगे एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ट्रायंगल, जो भी मूवमेंट मैं राइट साइड पे करूँगी वही मूवमेंट लेफ्ट साइड पे भी रिपीट हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री,
1: ज्योमेट्रिकल।
0: फिर मेरे मूवमेंट्स एकदम स्टिफ है, स्टिफ, और क्या बोले मतलब
1: आपकी मुद्राएं
0: में दोनों मतलब दोनों स्टाइल में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कथक स्टाइल जो है एकदम ग्रेसफुल है, जैसे कि मैं ऐसे करूंगे ऐसे।
1: जब आपने कहा भरतनाट्यम कड़क है
0: तो
1: कथक कड़क लचीला है,
0: हाँ
1: लचीला है
0: जी, हाँ
1: वो लचक हाँ। ज्यादा प्रभाव करती हाँ। है।
0: और भरतनाट्यम में कैसे कथक देखा तो ज्यादा ये है स्पिन्स मूवमेंट, भरतनाट्यम में नहीं है,
1: स्पिन नहीं होता है,
0: नहीं
1: भी
0: होता है लेकिन मतलब सिंपल सा स्पिन होता है, एकदम 1 2 3 4 जैसे चक्कर है
1: गोलाकार में नहीं घूमना
0: है, नहीं है भरतनाट्यम में।
1: तो अब कुचिपुड़ी,
0: कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में थोड़ा ये
1: अंतर है,
0: नहीं मतलब सेम है, जो मुद्रा हम यूज करेंगे, जो एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे, जो कंपोजिशंस भी आप देखेंगे, जो कंपोजिशंस कृष्णा के ऊपर है, राम के ऊपर है, तो कंपोजिशन और क्या मेन जो है भरतनाट्यम कथक और कुचिपुड़ी में, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी साउथ इंडियन क्लासिकल डांसेस है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, तो म्यूज़िक जो हम इस्तेमाल करेंगे तो कर्नाटिक म्यूज़िक है, और कथक अगर हम बोले तो नॉर्थ इंडिया
1: का,
0: तो नॉर्थ इंडियन हिंदुस्तानी म्यूजिक हम इस्तेमाल करेंगे
1: जी।
0: ये तो मतलब
1: ये अंतर आया।
0: अंतर दोनों ही, मतलब टेक्निक में भी अलग और म्यूजिक में भी अलग और कॉस्ट्यूम में भी अलग, ऑर्नामेंट्स में भी अलग, ये सब
1: श्रृंगार भी अलग होता होगा
0: जी। हाँ
1: बिल्कुल। अब जो भी बच्चा थ्योरी कर रहा है तो उसे भरतनाट्यम के थ्योरी में थोड़ा बहुत महत्व दूसरे शास्त्रीय नृत्यों का जानना आवश्यक है या कि केवल भरतनाट्यम पर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा?
0: नहीं, बहुत आवश्यक है क्योंकि ग्रेड 7 में
1: आठों शास्त्रीय नृत्य,
0: अभी तो सिर्फ 7 है बुक्स में, अभी न्यू एडिशन आएंगे तो 8वां इंक्लूड करेंगे
1: जी।
0: तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन
1: थोड़ी सी जानकारी,
0: थोड़ी सी कहाँ से ये आया, क्योंकि ये इस टर्म में मैंने एक प्रोजेक्ट दिया
1: रूप में,
0: संक्षिप्त में स्टूडेंट्स ने एक प्रोजेक्ट किया, 7-8 मेन क्लासिकल डांसर्स ऑफ इंडिया, तो ये डांस ऐसा है, भरतनाट्यम ऐसा है, उनके ओरिजिन कहाँ ये करते हैं,
1: उनके
0: म्यूजिकल, हाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है इसमें, उनके ये जैसे कंट्रीब्यूटर्स है श्री कृष्णा अय्यर, श्रीमती रुक्मिणी देवी, ब्रीफ में कॉस्ट्यूम ऐसा है, ये सिंपल ज्वेलरी, एक ही पेज में सब कुछ आएगा क्योंकि हम ग्रेड 7 स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं।
1: और आती हूँ कि आपने कहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो भरतनाट्यम में विशेष रूप से कौन से वाद्य यंत्र रहते हैं?
0: हाँ, एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है मृदंगम, मृदंगम जो है ताल देते हैं
1: जी।
0: फिर वीणा है, वीणा, वायलिन,

0: और वायलिन नहीं है, वीणा, फिर श्रुति बॉक्स, नटुवंगम, वेणु, तो ये सब बहुत ही ज़रूरी है।
1: आपने इतनी सारी जानकारियाँ बांटी, आज युवा पीढ़ी को हम प्रभावित करना चाहते हैं ऐसे कार्यक्रमों से कि वे अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जुड़ें, तो आपका एक विशेष संदेश जो है इस कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाएगा।
0: जी हाँ, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, ये हमारे परंपरा से बहुत जुड़ी हुई है। आप जाके सीखो, गुरु के घर जाके सीखो या फिर संस्था में जाके सीखो, क्योंकि ये सीखने के बाद आपके जीवन में ही एक चेंज आएंगे,
1: बदलाव आएंगे।
0: आप हमेशा खुश रहेंगे, आपके कंसेंट्रेशन पावर जो है हमेशा बरकरार रहेंगे। और अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप नृत्य कर रहे हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में आप दिखेंगे कि आप, क्योंकि अगर हम आप डांस कर रहे हैं, म्यूज़िक सीख रहे हैं, तो परफॉर्मेंस भी होंगे, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बच्चों में आना चाहिए, तो ये कैसे आएगा, कैसे
1: आएगा? जाएगा।
0: हाँ, कैसे? तो आप मंच पे आके आप नृत्य करो।
1: और इसके साथ साथ आप नहीं सोचती हैं कि उनका चरित्र निर्माण भी हो रहा है?
0: जी हाँ,
1: वो भटक नहीं पाएंगे। हाँ, मार्ग से।
0: हाँ, जैसे कि हम कितने सोशल एविल्स है, सिगरेट्स इत्यादि, तो इन सब से दूर रहने के लिए आप अपने लेजर टाइम जो है पास टाइम जो है, अगर आप ये नृत्य सीखने में डाल रहे हैं, तबला सीखने में डाल रहे हैं, हारमोनियम सीखने में डाल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली होंगे।
1: बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी सारी जानकारियाँ हमारे साथ बांटी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे श्रोताओं के साथ और हमारे साथ बांटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देंगे वृंदा जी, और साथ ही हमारी टीम जिन्होंने आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया, उनको भी आभार प्रकट करते हुए आप सब श्रोताओं को शुभ संध्या।
2: और परंपरा।

टाइम चेक 3 PM राष्ट्रीय सभा के कार्य कुछ ही मिनटों में यानी सुपहर 3 बजे से जारी रखे जाएंगे। आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन एक बार फिर पेंशन प्रणाली में सुधार पर आधारित होगा। इस दस्तावेज के परीक्षण के लिए जिम्मेदार पेशेवरों के आयोग पर विपक्ष नेता जुले जोंगा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से सवाल पूछेंगे। वे जानना चाहते हैं कि इस आयोग के गठन के लिए सदस्यों के चयन को लेकर कौन सी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। आज रात 11 बजे स्पेन खेलेगा मैच बेल्जियम के खिलाफ। फीफा वर्ल्ड कप के इस क्वार्टर फाइनल्स के मैच का प्रसारण एमबीसी 11 पर किया जाएगा। इसके पहले रात 9:30 बजे से एमबीसी की ओर से स्पोर्ट्स विभाग द्वारा एक खास कार्यक्रम पेश किया जाएगा। देखना न भूलिए रात 9:30 बजे से एमबीसी के 11th चैनल पर। और फीफा वर्ल्ड कप के लिए कल रात 12 बजे क्वार्टर फाइनल्स का पहला मैच खेला गया। फ्रांस और मोरक्को के बीच स्कोर रहा 2-0। इसी के साथ फ्रांस क्वालिफाई हो गया है सेमीफाइनल्स के लिए। अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने वाली मोरक्को की टीम की आशाएं भले ही खत्म हो गईं, लेकिन विश्व कप में उसका सफर सराहनीय रहा। विदेशी स्तर पर चीन के दक्षिण पूर्वी शहर जिनजियांग में जूतों की फैक्ट्री में

भीषण आग लगी। इस हादसे में कम से कम 28 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए। कई लोग इमारत की छत पर फंसे रह गए। ये इलाका चीन का शू कैपिटल कहलाता है, जहां दुनिया भर में बेचे जाने वाले 20% स्पोर्ट्स शूज बनाए जाते हैं। जिस वक्त आग लगी, करीब 240 लोग काम कर रहे थे। अभी तक आग के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि इस हादसे के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

0: Sia Constance Saint-Pierre Mencho Hattersal, ki 74 years old ki Shrimati Draupadi Tiloki, Shrimati Draupadi Tiloki, Pedashinam Bandhu, aur jo Uma ke naam se zyada jani jati thi, unki mrityu ho gayi hai. Arthi aaj sham 4 baje unke makan Mosilma MDA Sia Constance Saint-Pierre se uthakar antim sanskar ke liye ilake ki shmshan bhumi le jayi jayegi. Cremation today at 4 pm. काली लेन बॉम्बू में 74 साल के 74 years old के श्री धनीलाल पुराहू जो ज्ञान के नाम से ज्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके मकान काली लेन बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 12:30 noon. शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है.
1: Centre 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: सभी दर्शक लोग की विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में स्वागत बात हम लोग के। जैसे कि आप लोग जानत हवा कि हर शुक्रवार की हमने की जोन कार्यक्रम बा एकर संगे हमनी जोन कानून बा एकर में जोन लालवा बा एकर बारे में हमने बतिया ला जा। और हमेशा की तरह हमने की आज के जोन मेहमान हुआ हमने के वकील कपिल देव रघुनंदन जी हमने के संगे हुआ चलो उनका स्वागत करे जा। कपिल देव जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
0: तो कार्यक्रम में आज हमने के जोन दर्शक लोग श्रोता लोग हवन जा लोग जाने खोजत जा कि हमने आज कौन विषय लेकर आ नहीं जा। तो जैसे जानत हुआ कि हमेशा जब हमने बात करी ला जा बंटवारा के लापौताज के तो ढेर कोई अपन हक नहीं जाने ला ढेर कोई नहीं जाने ला कि चाहे ना ऐसा ऐसा चीज बाजी कर पर सकें जा अपन हक के लिए लड़ाई करे। लेकिन उकर ले पहले हमने बता दिला जा कि पिछले हफ्ते हमने जुनबा चेंज ऑफ नेम जुनबा ई विषय के साथ आ रही जा। देखो छोटा को ना जे हमने रिकाप कर दिला जा हमने के श्रोता लोग जे तनिक उन कुछ औकाती कर दिले हुए अंजा तक।
1: हाँ अली पहला चीज हमने देखला से एगो आदमी क्योंकि मन हुई साझे करे चेंज ऑफ नेम जैसे हमने बोलिया सा या उकर पहिनो हो या कोई सियनो हो उके मन बात साझे करे के तो का करे के चाहला उके जाए के चाहला एगो फॉर्म बा अन मन है मिनिस्टर दे जस्टिस में उकर बीरो सहरुआ में जेब हुआ हजार गो रुपया पे करब वो अप्ली करब उ लोग प्रोसेस करेला एगो ऑफिशियल बा उ में जो देखल करेला और हुआ से कब देखेला कौन कौन चीज अप्ली कर ले वो फॉर्म में जे देखा था तोहर जो आदमी उकर रेजो जब साझे करे तोहर नाम कि उ वालिद बा तो का करेला एगो लेट देवेला तोरे एगो है के कि मजा कोरे बा अब का करी तू लेतवा में ओके बोली कि ई आदमिया के चाहला जाए के को मजा पिबलिए करे के एगो है जूनाल में एगो है के गवर्नमेंट के आ होने दू बग के है प्रिवे के को मजा लगाजित में कबू प्रिवे हो जाए तो काहे ई लगाजित में डाल जाला ताकि कोनो आदमी के मन हो ऑब्जेक्ट करे के कि ई नमुआ नहीं अच्छा बा या कुछ मजा कारण हो
0: नमुआ की दिशा कोई बा
1: हाँ या कुछ कोनो कारण हो तो उस सखी ऑब्जेक्ट करे जब ऑब्जेक्ट करेला तो हुआ से ऊ जाए हुआ फिन से पपीवा उगर बिरवा में आई तो ऊ पढ़ के देखेला ई ऑब्जेक्शन जो पब्लिकवा कर ले भाई वो फैमिली हो या कोई भी हो इसकी वालिद बा कि नहीं बा जब वालिद नहीं हो तो ओके दे ऑथोराइजेशन कुमा जे हई पिबलिए हई पिबलिए कर दे इसकी साझे करे तब एगो लेट दे ऊ लेता सिविल के जो नदमिया मांग कर ले बात साझे करे के जाए लेता सिविल के देखे लेता सिविल हुआ बस ओके कुमा जे हाँ एगो चेंज ऑफ है सर्टिफिकेट ऑफ चेंज मिलेला गाड़ियाँ तो उस सर्टिफिकेट ऑफ चेंज लेके जाला बस हुआ ओकर नाम कुमा जे साझे करे के लेता सिविल में जाए लेता सिविल के हुआ तब का करी ओकर हई के कुमा जे ओकर लाग देने सांस में जो नमुआ साझे ऊ सब करे के चाहे तो ऊ करके तब एक कुमा जे उस की सिर्फ करे ऊ में एगो लेत रही एगो पापिया उलो के एगो डायरी बा ऊ जोन जोन साझे हो रहल नमुआ ऊ नमुआ के मजा कोइजे करी हुआ अरे एगो डाली एगो एंट्री जैसे हमने बोले सा ऊ हई में कि ई ते अब आदमिया से आज से ई मिली अब ओके अब एगो सर्टिफिकेट को मजा मिली है लाग देने सांस मतलब अब मिली से बाद जोन चीज कैसे ओकर नाम
0: में नमुआ आज से अब से यही नमुआ जोन बा इस सेकंड अब से भी करे एगो नया नाम इनकरा मिला था।
1: हां अरे एगो बोले कि ई ते एगो बड़ा आदमी के कब होई त एगो आदमी से बोसो एगो लड़का है और एगो का है तो ओकर पोसे जे है ऊ तो नहीं सकी कुमा जे जुजवितों से तक कमती बा नहीं सकी कुमा जे एप्लीकेशन करे के मांगों करे के मिस सकी ओकर माँ ओकर बाप जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में बा ऊ लैकवा ऊ सकी मांगे या ओकर चितेय चितेय का हो जब माँ बाप कोई नहीं है तो कोई दूसरा एगो तीसरा आदमी खड़ा होएला ओके देखभाल करे के लिए एक नाम चितेय ऊ सकी भी अप्लाई करे ऊ लैकवा के बिहाफ में।
0: बिल्कुल यानी कि हाई जन हम शीर्षक रहा चेंज ऑफ नेम के यहाँ पर कि कंप्लीट कर देनी जाए बता देनी जाए हमने कि जो दर्शक श्रोता लोग हम जान गए जा कि जब हमने चेंज ऑफ नेम करेला तो कौन पोसी जा अभी आज के हमने के अब करब जा बंटवारा यानी कि लापौताज के बारे में बतिया जा धीर कोई नहीं जानेला कि जब हमने लापौताज के बारे में बतियाला जा तो चाहे छोकरा रही चाहे छोकरी रही छोकरा रही सबको बोलेला ना कि बेटी शादी करके चल जाए जो जमीन जायदाद बा वो खाली बेटा में पौताजी करे लन जा तो बेटी लोग के भी हक रहेला लड़का लोग के कौन कौन हक रहेला जानेला जा तो हर से।
1: हाँ जैसे खूब बोल रहा है एक बार आदमी सोचेला एगो बेटी एगो पढ़ाया धान है तो ये कॉन्सेप्ट असल में ये अब नहीं बबे पहले एगो जमाना रहे अच्छा भूल जाए सा आज हमने देखब सब प्रॉब्लम पौताज और एरिताज एरिताज के कुमा जा पो ये काहे हम नहीं पो गुआ है कर ले हैं सर बहुत

0: सब मांग जे कहते हैं यही कर ले वंशन कि बड़ी खुशी लेन थर्मी
1: की
0: भाई बहन लोग
1: कि
0: मजे लोग की मन बाक मजे ज्यादा जाने के
1: बस कि देर कोई नहीं जाने ले जैसे बोलनी कि नहीं जाना
0: था कोनो
1: जमीन बा जाना था जमीन बा उलोक के बा लेकिन नहीं जाना था जमीन बा कैसे ओकर पर कैसे ओके अपने यन जा यानी कि कैसे ओके अपन नाम कर यन जा तो कौन चीज चाहला अपन नाम पर करे खातिर
0: कैसे कोतरा उसे बने जा हमने देखे ना सर ये प्रॉब्लम जो पतास एगितास एगितास के हमने के दादा पर दादा पर दादा का कर ले रहे हिया कब आर लंसन खुली जैसा सब कोई दबाई जाने ला काम करे के तो हिया काम करते लंसन कान में काम करते लंसन लाबुए नियर में और कान काटते लंसन सब तब तब तब विस्म के रखल ब्लॉ के तो उ लोग अम्प्लॉई करे इ लोग के आधे के हमने के भाई दादा पर दादा के तो उ लोग हिया आवे तो इ लोग का करे एक बान कुमा जे कान जमीन में कब उ लोग प्लांते जब प्लांते उ लोग लगलन सन सैक्रिफिस करे बहुत सा आ जोन पैसा मिले उ लोग के काम में लाबुए हो या कान प्लांता तर हुई उ में काटत हुई तो उसे उ है पैसवा से का करे उ माई करत रहल एगो है है एगो पैसा रमासे जब वो पैसा रमासे तो का करे उ बखत हुआ आवे रहल ब्लॉ बोले को एक बार जिके मन हुई बा पैसा उ सकी खरीजे जमीन देवतलन सन जमीन उ लोग के मजा खरीजे के अभी तो देखब उ लोग के सब अभी तक नहीं उ लोग बेचते हो वन सन में हिया उ लोग का करे कोनो भाई दादा पर दादा बड़ी कुमा जे मिजे रहे मुसवार तक पार में दलते रहे घाम रही पानी रही सिकलो ना कुछ आई काम करके बेचारा लोग पैसा रमासे करके एक सौ एक काश मिले हैं अभी के लिए नहीं तो का करे वो पैसा से लेके जमीन खरीद टेंशन देखो कहाँ शुरू हुए के कानून के कैसे
1: काम करके पैसा रमास के अपन जमीन खरीद
0: हाँ अब जमीन वहाँ कब खरीद टेंशन कैसे एक बार तक मैं जब खरीद लेतल तो हिमा ओके तब इसमें वहाँ दे दे एगो कोतरा वो है बनाई हुई के नुतेर तो पहले के देख बार तीन कार यही लोगे रहन सन तो नुतेर बना के ओकर पापी मिला के ओकर कोतरा सब बना दी तो अब जो हो जाए वो में का करे बेचारा लोग दिन रात जैसे बोली ना काम करे तो वो जमीन जो मिलल बा उ में का करे एगो घर बनाई अब घर तो जनबे कर लो उले पोकवा में रहल एगो घर जोन आदमी एगो मजे लपाई के घर रहल लपाई के घर रहल तब फिन से तोला तोलते बेतों सब बाल देखल कल्ले कल्ले कुमजे उ लोग कुमजे को वेचियो कर लनसन उ लोग के घरवा में तो आज के देखब बेतों होला मिसर मत हमनी लेवत है अपन दादा दादी के पर दादा दादी के हैं उ लोग का कर लनसन कब लगलनसन उ में रहे अब देखब उ लोग का कलन सन एगो मजे उ जो उ लोग के लड़का रहल तब उ लड़के कैसे हमने के बाप की बाप रहल दादा रहल अब उ लोग के मजे नाम में कोतरा लगल होई उ लोग के जमीन हुआ उ लोग अपन लड़का लोग से बेच देवे देखल एगो सिस्टम कैसे एगो एगो लासन नियर कहते रखल कुमज है
1: लड़का
0: नहीं नहीं अपन लड़का के भी
1: अपन लड़का के नाम अपन लड़का के
0: अपन तो फोपिए ते होगा रहल ना तो ऊ का करी अब तो नहीं हमेशा रखी यही से हमनियो सब स्वीव कर ले से आइला कब बाप रही तो कर बेटा की दे कर बेटा रही तो ऐसे ये उत्थाजिशो हो गल अपन अपन जोन से मिनवा के अभी जोन तभी को एक बार बेच रहा तो कहाँ कर लन सन तिकल से ऊ लोग कब फिने हो गल तो ऊ ले पोकवा में मजे अब कम लगल घर खनी बनाई के तो का कर लग दादा पर दादा वो ओके एक बान अभी तक बहुत मुश्किल बा कोतरा ही नहीं बने ले रहा लंसन अभी तक देखो आदमी के बोलब ना आलबा आल तोर बीरो में मांगत है एगो कोसे ही कभी को कोसे ही मांगत है तो पहला चित्तू तो बोलब अच्छा तोहर है वो था दादा जमीन के रल दादी के बोले नहीं मर पर दादी के रल तभी पूछा साहब जिस तो बातों और एगो कोतरा बोले नहीं बा तब बोली नहीं बा यहाँ लाफी दाफी दे सिक्सेशन नहीं बा कुछ नहीं बा तो कैसे सकब बोले इस जमीन हुआ कि तोहर एगिताज में मिली अभी आप दिवस एगिताज में तो यहाँ कैसे तोहरा बोल बा सक मिले एक बान कोई बा आज मॉरिशस में है कि देखब उ लोग के दादा पर दादा या दादी पर दादी से बगल से बा जमीन हुआ वो की पे भी करे थे वनसन में कोतरा नहीं बा बड़का मुश्किल हो जाए बड़ी मुश्किल हो जाला पतास करे की तब एगो चित नहीं रही कैसे रही अभी देखते नवा अलो तो तू अभी कोंजरे करके अब तुम जानत है कि उलो तो वह तुहर नाम में बा कल तुहरा मन बा बेचे के हाँ कोतरा बा बस उलो तो वह तुहर नाम में बा सकबा बेचे अरे गो बोली के नहीं रह तो कहाँ सकब उल तो वह बेचे तो देख ला जमीनों भी ऐसने एगो है कि मुश्किल हो जाला कभी को कोतरा नहीं बा आदमिया के तब तभी ही से मजे का कर लनसन पहले तो बोलन सन नहीं चल प्रिस्क्रिप्शन करब सर तो प्रिस्क्रिय कर दे बोलन सन तब फोपित

0: बनेलन सन तब अपन बांटियन सन अपन से। अब का होल दादा पर दादा में जब कुछ न कुछ बनैल हो, घर हो, जमीन हो, तो का करलक ओकर लैका होल। पहले के तो जाने लग बान लैका है एगो एगो परिवार के 15 गो लैका रहल, 10 गो लैका रहल, तो उ लोग में कुमा जे अपटासे करे। अरे एगो बोली के का करलन सन दादा पर दादा दे देलक एगो बेटुआ के। अब उ बेटुआ के जेनेरेशन ही देखबा आज के लैका लोग पोपीतेर हो गल वंशन। हाँ। जमीनों के हो गल बा, बिजनेस के हो गल बा, कमर्शियल के हो गल बा, सब चीज के ले बा, शेबा कंपनी में बड़का बड़का कंपनी में देखबा पसी का एगो लैका ओकरो मिलेला, लीजिंग हो या कुछ हो या गो कंपनी हो एगो बिजनेस हो। हाँ। तो ओकर लैका की तो मिलबे करी ना, कुल देखल कहाँ से अइली से कहाँ से कहाँ। अब बड़ा बड़ा कुमा जे जोन भाई बेटी सब जोन कुमा जे होल घाजी होल तो अपन अपन चीज खरीद लन सन। अब उ लोग हो गल बा फोपिए के जोन अभी बनाई ले बाते कहा कर ले वंशन एगीते कर लनसन अपन दादा पर दादा से। तो देखे ला हिया जोन जोन है, लैका जोन ओकर रहल अपन लैका के जब छोड़ दे ले बा तो दिखिला सा एगो जेविचे बन गल बा। आज मुविस में देखबा बहुत सा आदमी जोन धनवान हो गल बा, जोन के एगो पोजिशन हो गल बा, जोन एगो कर लावी जैसे बन सको लिमन में बा, एगो कुमा जे ओकर भाई भाग रहल कि ओकर ददा पर ददा से एगीते करके उ लोग आज ई में जमीनों के पोवितर बन गए वैसे। तो देखेला मैं अब ये कब हुएला तो हमने देखेला सा कि सब जोन बा उमे एगो चीज रहल एगो ले पोका रहल, पहले तो नहीं रखल है कुमा जे एगो है कोथा बनाई के, तो का कर लग वेन में अनलग एगो कुमा जे एगो है ब्यू एनरजिस्ट्रे में सब जोन आदमी जोनों के मन हुई किने के या बेचे के। हाँ। तो जाके हुआ अपन एगो कोथा मिली, वहाँ से कोथा वहाँ से अपन नोतेर उसे बना दी था। हाँ। तो जाके हुआ ओके मिलेला एगो कोथा, मतलब नोतेर बना हुएला एगो कोथा जब एगो आदमी खरीदेला एगो बेचेला एगो जमीन के विषय में। आने ये तो दिखेला सर हमने के कैसे एवितिक कर ली सा एविताज। हाँ। हमने की कुमार जा कैसे हमने की
1: जमीनवा कैसे। हाँ
0: हाँ कैसे प्रोप्रिएटर बन ली सा है हमने की दादा पर दादा से। मैं अब उही के एविताज हुआ के उही हमने देखा सा कौन प्रॉब्लम बा इपोताज में। आजकल तो बड़का समस्या है जहाँ देखब बीरो भरल आदमी से कहाँ अल कहाँ सकल जाप करे चाचा। वो बोली हम आलही तोरा देखे एगो जमीन के विषय में, हम लिखो छिया हम बोली पहताश करे के। अब यही अब आल बा ओके पहताश करे के से पूछो लैका हो कितना लैका हो कोनो कितना लैका माफ करिए नहीं बा तो सामा करे के चाह हिया तो नहीं
1: जगह चाहिए सकन दे।
0: हाँ हाँ ओके जगह खुशी रही। मैं अब एगो बोली के हमने अभी देखब सर कि पहताश के प्रॉब्लम का है। तो हिया एक बार दिखिला सक पहताश हुएला एगो आदमी ओके एगो बाप है बा और उकर बा से बो 2-3 गो लैका बा, तो बड़ी खुशी आली से एगो पता सकेला उ बपुआ दे बिना ओकर त्राका ली बिना के पैसा बिना जाए के आबू आबू का के देखे के या कल सैपे गुआ पौतेर के दे। बोली खाई कुछ चलन उतर हिया काहे हिया पोता जुआ अलामियाब बा। लामियाब के मतलब सबे चीज से आराम से करब। हाँ। एगो कुमा जे आको हुईते से करब तो कुमा जे फासिल रह गेला पैसो नहीं चाहला दे पौसे करे बड़ा बड़ा तो का करी हिया जब सब से गिचिए दाको होवन सन कि माँ बाप देवता एगो पताज तो कुमा जे एगो जमीन या कुछ के अपन अपन दिख ले लेवन सन के कहाँ ले सब दाको होवन सन कौन फासों में उ जमीन वहाँ कुमा जे है जीवजे करियन सन। कभी तो देखब भाई हे भैया बोलिया लिपा फे नहीं है हम है मिसल में एक बार भाई बहन लोग का करेला सोचेला के वो जो बड़ा भाई है तो के चाहला आगे ही मिले के ये हमने के कानून में लिखल नहीं है। ये आलोक समझ लो ना नहीं यार कि वो जो है इसी वजह बहन हुई तो के पाछे मिले के हमने के सोसाइटी में ये बिगाड़ दिले वंशन माँ जे चारों बगल के आदमी बोले नहीं हमके तो चाहे तो बड़ा भाई है हमके आगे चाहला मिले के ना ये सब कुछ लिखल
1: नहीं। ये भी बोलेला कि जोन छोटा बेटा बा ओके चाहला हम जोन घरवा बा ओके चाहला हुआ रहे के माँ बाप के संगे रहे के।
0: हाँ
1: ये भी आगे से चल रहे आल बाकी जो सबले छोटा बा ओके चाहला माँ बाप के संगे रहे के।
0: हाँ तो देखे ये सब नहीं है अभी तो आज के लैका कहाँ माँ बाप संगे रहता है बोली के वो बोल रहा सर मैं एगो हाँ एगो थाजिशो नहीं आवे हैं। मैं पहले तो का करे आदमी ने बोले ये बेटी के अरे तू का करबे तू तो दूसर फर या धान भी दूसर के खेबे तो के नहीं चाहेला है माँ बापुए करे इसे हैं माँ बापुए नहीं देवे अपन बिटिया के पसी बिटिया तो एगो सीनियर सेकंड सिटीजन को मजा वो लोग एक मजा और जगह तेन ऊक मजा है कौन तो नहीं है। मैं कभी देखब जब से सबसे बड़ा मजा है मैं बेटा और बेटी में बेटिए ज्यादा अपन परिवार के कोट लेवेला कोई कुछ बोलेगा मुझे कोई दिबा

0: सकप सकर में मेगो बोली के तो देख ऊ लैकुआ ओकरो हक बा और हम के कानून में बोलेला का पता सुला चाहेला एक किताब तो हु ले लेला हो एगो कुमा जे 10 पेज के हम के कुमा जे मिला था एगो है 4 पेज के तो यहाँ का पम पतिया जाला उ कुमा जे मिजरे करेला कोर गापो करेला तो बोलेला एकर 10 पेज वा के कुन इतना वाले बा और हो 8 पेज वा के कुन वाले बा 4 पेज वा के जोनु के वाले कम बा हो जोन के 10 वा मिला था ला डिफरेंस सेलो के पे ये करे के ये एगो लिख दे वाला ओकर गापो में है बस के कभी गो अबका या वही पढ़ी तो जान जाई बोले तोरा तो 4 पेज मिला था बोले हरे कैसे मोर भैया के मिला था 10 पेज और हम के 4 पेस तब बोली हाँ देख ली मन से कोथरवा में अपंतरवा लिख दिले बा कि तोहर वाले ज्यादा कम बा ओकर वाले ज्यादा बा तो इमें तोहरा कुमा जे पैसा ओके दे के चला एक नाम हमने बोले सा शुल्क SULTE तो देख ला जे सब चीज कुमा जे अमिकाब से हो अमियाब से हो डाकू से हो तो कोनो जिस्पित नहीं बा एगो डाकू बा में बहुत सा देखिला सा हमने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बा कब हुए लंसन जमीन के बंटवारा में जमीन के पताज में जी चीज जो नीति कर ले बा जब पताज कर ले बा तब जनब कि ई हमर भाई को न ई हमर बहन कौन छ कभी तो देखब कुत्ते में कुत्तो चलेला गाड़ी ऊ सब चलेला लड़ाई बोरेला बोन होई देखब है भाई से बहन से लड़ाई करी बोली कैसे तोर बाप ऐतिल के दे देलक इतना हम की तोरा इतना कम तिल बा ई सब हो एगो बड़का समस्या है तो हियाँ देख ल पताज कब हुए ला तो सुबह हमने देखेला सा एगो प्रॉब्लम हुएला बस कि का हुएला एगो भैया एगो बहनवा बोली हमके चाहेला हई घरवा ये तो पापा छोड़ के चल गए एगो बोली के तो हमके हम एगते हमहूँ तो आ जाए कैसे तो कि घरवा मिली और हमके नहीं मिला था ये भी है तो देख बगो या उमें लसाम हुई तो बोली 4 लसाम तोर 4 लसाम हमर या उ तो बोली नहीं हमके मन नहीं बात हो कि तू ही घरवा में रही बे देखे ला एक बांध को ये एक दूसरा हुई एगो भैया बोली हम तो बना दे ये घरवा हमके चाहेला यही घरवा मिले के मिसल मा कानून है जो भी बनाई लो अपने पैसा से तो ओके तो मिलबे करी
1: लालवा बोले ला कि हाँ, लालवा बोले ला। अपन पैसा डाल के घरवा बनाई ले बा मान ला माँ बाप नीचे रहता ऊपर में भाई अपन घर बना दे ले बा तो ओकर हक है घरवा में रहे
0: जरूर मठियो चाहे लो के दे के घर मठियो दोनों ओकर पोतरा में ये लिखल कानून है हमने के हई में बस एक बार बोले रहन मिठमिया वालेर में तो यहाँ देख पाओ कि मिलता घर यहाँ तक मजे बहनिया के बोली कि एगो कही ज्यादा कम मिला था कि नहीं मजे अनमन घर वो मिला था अब यहाँ वो घर एगो बाचिमा हुई या कुछ हुई बाचिमा मतलब एगो लोत्याज के हुई एगो तो भैया बोली नहीं हम नीचे चाहते तू ऊपर जो तू रहिए हुआ बस बपुआ तो छोड़ दे एगो घर जो 3-4 केला है बा और हो सकेला दू गो है भाई बहन होवन सन एगो घर बा या एगो फ्लैट बा ये बता हम हई सिमुआ यहाँ लेब हाउ बोली नहीं हम हई मजे हई जो जहाँ आगे हई गिरी वो हम लेब दिख ले या कौन समस्या कौन प्रॉब्लम हुआ पताज माँ बाप छोड़ दिले बाहियाँ मैं देख लैका का करता बेटा लोग बेटी लोग का करता एगो बड़का है झगड़ा और हियाँ अब एगो चीज है जैसे हमने बोल सा जमीन के स्वाजगी करे के जाने ना कितना क्यों बोला जो आगे जमीन वह वो चाहे ला एगो बड़का के दे के लिखल ओके दे के और दूसरा हियाँ का होता एगो जमीन वहाँ तक बहनिया के बोली तू पाछे रहिए अब ओके एगो बोली के पाछे रही तो ओके सीमा वो सब दे के तारे देख सर सीमा के प्रॉब्लम का है तब हियाँ नहीं सकी ओके पहताज करी अब हो जाए सब चीज कोनो तो बोली देख हमके मन नहीं बा पहताज करी के जो माँ बाप छोड़ के कल बा आले तो के तो उतना बड़ा नहीं मिलल बा अच्छा हमार परवा जो मिले के चाहे हम तुर से बिद देवत हैं कोनो तो भाई बहन बड़ी अच्छा बा बोलिए अरे हम के
1: बहन के आज बहन के आज शादी होगल बा बहन कहीं और रहता तो मान ला अजय 10 प्यास माटी बा और उकर में भाई के घर बा तो जो प्लास में वो मटिया कोई और से बेची भाई हुए से बेच दे
0: हाँ ये भी हुए ला हाँ नहीं कोनो जालू भैया कोनो भी बा हमने के बोली ला सा एगो आकोगिते गिर जाऊ जमीनवा में का करबा बेच बोले नहीं हम हमके मनबार जमीनवा रखे के वो रखबे नहीं वो रखे को जाता बेचे नहीं को जाता अपन भैया से और भैया के भैया बोले हो कि जोन वालेर के बा फिक्र नहीं करिए तू हम तो के देव अब ओके मन है नहीं बा कर से बस कि यहाँ खसाई के हिलासों जोन दोनों के बा यहाँ ठीक नहीं बा भाई बहन में तो जनबे कर कभी लड़ाई हुए ला तो यहाँ अब ओके मन नहीं बा दे के ओकर है बहनिया के ओकर से नहीं बेचिए बोली हम दूसर से बेच दे बड़ा हो बहनिया से नहीं बतियाला तो हियाँ देखिला या जैसे बोली तरह

0: लोग ना अब एगो दूसरा चीज है ये प्रॉब्लम देखो पोताज के माँ बाप छोड़ के चल गल बा उस जमीन वहाँ खाली ओकर माँ बाप के नाम में बा हियाँ तो पोताज कर ले नहीं बा मैं ही अब यहाँ पोताज करे के खोजता मैं जिगिचिए ज्यादा बा सिर्फ चार गो जिगिचिए बा हियाँ पहुँचे पैस है बा जमीन तो कैसे चार गो जिगिचिए के है पहुँच पैस के सकल दाई माँ के बारे
1: में बताओ सच्चे के ये बहुत एतरेसों बा अब आज एगो घर पहुँच पैस पलाते हैं मैं एगो छोटा कुन घर बा और जिगिचिए मांडा छो सात गो बा तो कैसे पता जिगिचिए अरे
0: एगो पोगा मानव से स्पेशल में भी अभी बोल दे रहा तोरा जब ऐसा एगो एजवीज हुएला मतलब नहीं सकल दाई पताज करी नहीं नहीं अभी एक गो चीज बोलिए कब ऊ नहीं हो कुमा जे हियाँ तो सकी ए गोवा जेगिचिया बोले देख पोताज नहीं सकल दाई हुई अरे जे पोताज नहीं सकल दाई तो के नहीं सकल दाई कौन बने चल समी ला बार में डालब स लिसिटेशन एक नाम लिसिटेशन मस्त के आगे हुआ बेचब सब पब्लिक में जोन पैसवा मिली हुआ से और पताजे करब से पैसवा जमीन तो बेचा जाए बस के खाली थोड़ा जाए कि जीजी के देखे के चला कैसे मस्त कोर्ट में चहला कुमा जदमी पूछे करेला लबार में जाला तो हुआ लबार में ऐसन हुए ला मैं कोनो से पूछो एजविस हुई सखी बोली देख अरे तो हमार भाइयो असी हमार बहिने है हमार परवा ले ले तू फिक्र नहीं करे कादो तुके कुछ नहीं बा पिए करे के तो ये भी हुए ला कबू की पताज या आके सीए कर दे ओके कुमा जे ऐसने में बोले हम पछता तो हियाँ देखब जितना कुमा जे आको हुई सकियन संगी रे ऊ पतसवा में तो हियाँ सकल लाई पताज करे मिसिल में जे जेगी छे ज्यादा होई माटी कम होई तो एजिविजियों में जे अब रहेलन सन तो कभी देखब तीन कार में जाए के चाहला लबार में हुआ बेचे के और जैसे हियाँ एगो ई सिर्फ नहीं होला कभी देखब एगो मिशे शादी कर लेबा अरे शादी कर ले मिसल में दूसरे को मैथ्रिस
1: अच्छा।
0: अब मैथ्रिस वहाँ से दूसरा लड़का हो गल बा तो देख ला अब ओहू लड़कुआ जो ने होल बा
1: ओकर नाम पर बा
0: हाँ ओकर नाम में बा तो जिगिचिए हुई बे करी और होके नहीं सकबा कुमा जो के हई भैया लोग तो बुझे हम तो हमेशा जानत रही सर हमने चारे गो ही सर अरे देख बाप का कर ले बा कब कुमा जे जैन रहल अब हुए को कुमेकास करके आज देखत एगो दूसर भाई हमने के मिल गल तो ओकरो तो मिलबे करी कब देसी कर ले अन मन मिली ओकरो जैसे ही लोग चारों के मिला था बस कि एक गाल एक जिगिचे हमेशा एक गाली थी हैं तो एक बार नहीं बोली छोकड़ी वो छोकड़ा है नहीं कानून ऐसे नहीं देखे ला सबके मेले के चाहला बराबर तो हियाँ देख लो अब का हुआ था एक बार सिक्सेशियों जो माँ बाप एक नाम है कब मर गए लन सन पताजे नहीं करलन तो कर लड़का लोग सिक्सेदे करेला वो लोग के मिलेला वो है जमीन वहाँ एक बार देखब हियाँ बा है माटी जो माँ बाप नहीं सके पताजे कर ले अनमन छूट गल बा ऐसने अरे ओके यहाँ छोड़ दे रहा सपाफे नहीं है मैं एक बार का करेला भाई बहन बोले जाने ले हमने के माँ बाप छोड़ दे ले भाई में है माटी जाए के गाड़ी भी चल हमने नोतेर के आगे नोतेर के आगे हियाँ बोलन सन सब दाखो होन सन सब पापिए मियाँ तो पहला नहीं देवा था हो नहीं दे पापी लाग देने सांस नहीं दे बाप माँ के आविदाविद शिक्षेशों नहीं दे कुछ नहीं दे अब न कहते दाँ चीते नहीं दे कॉपी का मेम बस कि नुतेरवा तब लेक नहीं मिली सब दुखी मवा तो वो कैसे सकी पतजुआ करे तो हियाँ देख ल सब चीज हुआ कुमा जल एन मन लड़ाई हुआ था जहाँ के बरिसन हियाँ कोतरावा छोड़ दे ले वनसन कोई नहीं जाता हुआ पताज करे एक बान है ये बोले नहीं कौन है अभी तक छोड़ दे रहे हाँ तो हम नहीं बा हमारे यहाँ जाने ले है नहीं बा हम के कुमा जे नहीं बा कुमा जे है लेते हमारे यहाँ नहीं बा पैसा भाई ए भाई करे की एगो पताज करे की
1: चला एक साथ एक एक एगो एगो एगो एगो फोन कॉल आल बा कोई बा हमने संगे बात करे खोजा थोन हेलो नमस्ते
2: हेलो नमस्ते बहन जी प्रणाम भाई जी के भी प्रणाम थोरो भी प्रणाम करत है
0: भाई
2: जी के बहुत धन्यवाद देवत है हमेशा की तरह धान धकार बा उजाला करेलन जनता के बहुत ज्ञान देवेलन ताकि जो अपना है वो भी छुपावेला लेकिन तू नहीं छुपावेला जो सच्चा बा आगे रख देवेला तो ये बहुत भारी बात है ये बड़ी भारी पुण्य काम कैला ज्ञान बिना जीवन अधूरा बा हाँ हाँ हम बोले थे हमारे सास के माँ बाप के पार बाते ओकर में कई गुजरगी चेबा सात गुजरगी चेबा तो उमे सब मरगल हो जा इमे जब सब कोई मरगल हो जा तो हम एगो मौसा सास के ओकर बेटा आल हमके बोला था जे तोहर मामा के जब मौसी के ओकर सब थी राफी दाबित कर देले तो हम बोली हाँ सब कर देले है तो बोली पपीवन दिए हम जब दिमाग करे मट्टी के जब तब थोड़ा बोला एक हो

0: Saudi dia ke hitam tu kerabulah membeli ha dia lah sapa pion di mosque ke dia di papa lag di sel lafi david ke sab lafi dia di jabu gal di mosque re jam ke arik mahina ke baad aake bola tha je jane le bahut te pons bate hai koi lafi david nahi kar le ba jo mosil mosil ke beta bhi maral ba o logo bhi lafi david nahi kar le ba sab je riche ke ta fami ba log nahi kar le wansa ta bahut difficult bate bahut paisa de pons ba ta tu hamra ko nide deta humke kahan chala jaye ki hum kaise karab
1: पहला चीज भेन जी चाहेला देखे के जब एगो पता सुवता ऐसे में नई बनल बा सब चीज मतलब कि हियां ओके चाहेला है के सब डॉक्यूमेंट मिले के त जाय की तब सब चाहेला लाग देने सांस कते दंची ते अब जे होई होल बा सासुस मरगल होई या स होकर है पति भी गुजर गल होई त मटिया के पहला चाहेला देखे को और कोतरा हमने का वकील हो इलासे देखिला से आगाड़ी करे कि सब एसके ओकर बाज जमीन की नहीं बा मतलब कि बा कोंतरा की नहीं बा कब कोंतरा
0: में बोला कोंतरावा ओकर एक हमर सास के एक गो भाई रहल त ओकर ओकर बेटा लोग चार गो बेटा बा त ओ लोग सब कोंतरी का कान कटेलन सा जहां रहला सो एक बीघा बा ककनुआ में एक एक बीघा आधा बा त ओ लोग सब करता तब कोंतरा मंगबा तब लेला नहीं बा कोंतरा कहे ने ना धोने ने बतियाला त नहीं देबे लोग ने आप सेते बा कोजा परवा दे के
1: हां नहीं से हर की एगो प्रॉब्लम के एगो सॉल्यूशन हां आ ये बोली के जब तोरा नहीं देवा त ओकर से गईरम मांगे बोले चल चाहे पता आजूज करी है पपीवा देना सिपा हाँ। एतेल एतेल ओके मन नहीं बा देखे सैफ हाँ। बहन जी तुम्हारा हाँ। जाई के सीजीएम लेता बीरो एनरजिस्ट्रेमेंट हुआ सब कोंतरा सब बा है किसे लेता सिविल में लाग देने सा सब चीज तोहर बा कब शादी कर ले हो वह सब उत हुआ मिले ला सब पपीवा तोहर कहते दा चीते लेके जाइए हुआ देखी कि कुमाजा काहे आल हुआ जे जो कुमाजा जोड़ल हुआ उस जमीनवा से तो उत हुआ जाइबा तोहरा सब डॉक्यूमेंट देके कोई के सिपाहस नहीं करिए जब माजिया नहीं मिलेला तो हमने तो सूच पूछा दे दे दे कहा हम जाके पैसा दे पहुँचे करब सब पापिये निकाले के चाहेला मतलब शुरू करबा जब ओकर मिल गलबा कर कोतरा तो हर है बड़का आदमी जिन के बोला है सास ससुर के बगल से तो ओकर कोतरावा मिल जाए ओकर लाफी दाविद मिल जाए जे जे बा कुमा जे लड़का लो के लाख देने सा सकबा निकाल जाए सकल जाए पोता फासिल करे
0: तो भैया तो बोला थोन जा कि वो लोग एफिडाविट नहीं करे बा मौसा के बेटा लोग मरा ना मौसा तो नहीं बाते लेकिन जो मरा बा वो लोग के एफिडाविट नहीं बोल बा
1: हाँ तो चल हाँ तो सुनो सबके जेके मिले जमीन जैसे हमने बोली ला सा एगो आले को जीवित छे बा जैसे बोला से ओ मर गल वंसन यहाँ कुछ नहीं कर लंसन तो कर लड़का बा ना लड़का वा तो जीवित छे बनेला अब के नहीं सकी कि पपियो नहीं दे कुछ वो नहीं करी अब के धन दौलत ओके काल मिली मिसे म एगो के चाहेला शुरू करे के त का होला एगो छोटा सीमा से चाहेला गोल बड़का लंबा करे सीमा जाय में मे सैफ ओकर लाग देने सांस ओकर सब चीज मांग आली अभी तो प्रॉब्लम हो चला कभी ओके आले एगो लाग देने सांस कैसे मांगब हौ जो आदमीया मर गल बा ओकर लड़का कैसे जन्म कोनो कर लड़का है ओकर लड़का के नमुआ जन्म तब ना जाके लाग देने सांस निकलब यही से हमने प्रोग्रामवा रखल से कौन कौन प्रॉब्लम है जैसे तू एगो बोल एगो बड़ी जोली कहानी राकोते कर देना सब में कैसे एगो प्रॉब्लम एक्चुअल में तू फेस करत हुआ समझल ना मिसल अब तो ऐसा ऐसा काम है तुहरा चाहेला एगो से मांग के जोन से तू कुमार जी लीमन हुआ कुमाजे को बो रिलेशन में हुआ
0: सुना ना भाई जी सब तो इसे बोली है दो तीन जना से बोली है देई की तो ओ लोग बोला थन जा ओकर ओकर को चार तीन को भाई मरल बा ओकर पाप नहीं बाते मौसी लोग के लड़का लोग मरल बा ओकरो पाप नहीं बा तैया तनी कॉम्प्लिकेट ना हो गए बाते बोले जितना
1: हां अली कोरेक बा ई सब जब हो जला त तोरा पहिला चैनल मजे एगो है के देखे के एगो अफा एगो अवे के त उका एगो रिसर्च करी रिसर्च करी बिगो एनरजिस्ट्रेमेंट में देखी कहाँ ओकर कोंतरावा रहल आर सिपा एगो एफिडाविट दे सक्सेशन कर ले वंसन कि नहीं कर ले वंसन जे एगो में खोगल हो एगो बुलिया के जेवी छेवा तो तब बोल दे ओकर कर कौन कौन लड़का है सब चीजों कर कहते दा चीते
2: सब डिटेल
1: मिल जाए मिसल में एगो रिसर्च कर लाई मैं आप वो भी एगो आप वो के देख के माता जी तू ओके बोला तोर कहानियां का कोते करिए उच उलो के कम हो ही तो साकी जाके सकेला एगो रिसर्च करी कभी बिगो एनरजिस्ट्रेमेंट भी आदमी रहेला हुआ ओके खाली एगो एगो पैसा देब बोलब ई आदमिया के नमुआ से जाके ओके मजे ओकर पपीवा निकाल उ लोग सब जानेला अब जानेला वो जमाना रहल लीव में सब ई सब रहल अब तो कंप्यूटर में है सब चीज कंप्यूटर में उ लोग जानेला रिसर्च कैसे करी
2: टाइप करब तो सब निकल जाला
1: सब मिल जाए
0: तो भाई जी सुना ना तो अभी

0: एगो मोक्षा के बेटवा बता हमार त सब कुछ बा हम नहीं हम हम देमास नहीं कर भाई सब में नहीं परब सही में का बोल
1: हां तो कर में कुछ नहीं मिलियो के बस की जमीनवा त रखल तो और बड़ा आदमी या की जैसे बोला हुआ
0: आज
1: ओकर नमवा से आज तक अभी लइकवा लो के मिलल नहीं बा तो ओ कैसे प्रोप्रिएटर होई बड़का बड़का बात बोलता अपने से मैं ही या कबो के सकी प्रोप्रिएटर बने तब नहीं सकी तो वो आदमी ऐसे बोले ला कभी तो एक दूसरा बोली जाने ले हमारे यहाँ पैसा नहीं बा दूसरा बोली हम तो ऐसे ही नहीं बा इसे मन के मन नहीं
0: बात बोला
1: दूसरा बोली हम नहीं ऐसे बा कभी देख ले वो एगो है पति का बोले ला पत्नी के बोले ला हम तो माँ बाप के धन के मरत ही नहीं हमके नहीं चाहे ला तू जे
0: जो
1: बोले हम ना कितना दिन से ही मेरा बोले जो तू देख का करबे हम नहीं कर मैं एगो चीज कर एगो आबू के देख एगो रिसर्च करी वो जानी कैसे कैसे तोरा एगो मिलल एगो के मिलल तो एगो लीड मिल जाए दूसर की शकल लाई दिमस करे बहन जी
2: बहुत बहुत धन्यवाद चले और फोन कॉल वाह ले लिया
1: चल
2: हेलो नमस्ते हेलो हेलो हाँ जी नमस्ते नाम बताओ तो
3: अनीता
2: अनीता जी कहिए
3: हाँ
2: जी हाँ जी आप सवाल कर सकते हैं हाँ बता सकते हैं
3: Vous savez dire, moi, moi, j'ai des enfants, mon monsieur est fini mort. Là, moi, j'ai 70 ans, là, c'est moi, nous pas encore faire peur.
1: Pas ta vie, quand même,
3: Non, pas encore, parce qu'il y a un problème. Il y a juste des enfants n'ont pas d'accord. La cause problème peur, même, là. Et il y a reste Déo, il y a reste Maurice. Et là, comment dire, depuis quoi, moi, je prends plus beaucoup de nos intérêts, les enfants Maurice, là, parce que vous connaissez.
1: माता जी के दुगो लड़का बा दुगो लड़का में बा एगो देश दूसर देश में बा उ देशवा होला नहीं हियाँ सिंह करे खोजता नहीं कुमार बोले ऐसे वैसे नहीं है तो सैफ है जो ओके कब कुमार है कि जो नहीं बा हाँ देशवा में और हियाँ जो हियाँ था घरवा में बा घरवा के यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं बा सैफ क्यों तेल में डाल द ओके कि कातिल में डाल दे पहला तो चना एगो अबुआ बोका के देखियो वही तोरा बोली ऐसन एगो चीज कब एगो आदमी इ देशवा में नहीं बा सकी एगो कि कातिल में डाल के ओकर जोन भाग मिली जोन छोकड़वा हुआ नहीं है तेरे से बा थे हिया देख बा गुवेनमा के करे कि कातिल में रख दे हुआ जब एक दिन आई तो पोतजवा मिली तोरा खाली चाले को पौतेर के देख के पौतेर के देख के कुआ जमीन आधा आधा तजवीजे कर दे बा जहाँ हई भई वा अभी जोन मॉरिशस में बा ओके ले के बा ओके मिले के बा हाँ ओके दे द हऊ के परुआ रख द ओकर पपुआ खिवा तेल में जैसे मैंने बोला सा रखी ला सा हुआ पतवासवा तो होइबे करी वो खुशी रही नहीं खुशी रही
2: पताज
1: हो जाए आ जोन

0: पताज हो जाए आ जोन दिजेम लालिन के अरे हाँ। दिजेम लालिन के जब उकर बापू के देखला रहे हो या उकर माँ जहाँ जे गिद से करे जे बपुआ देखला रहे करू रहा तो के मिलबे करी बपुआ बगल से मैं दिजेम लालिन की बात बताइए मऊआ बगल के तो मिलबे करी तो यहाँ दोनों बगल से मिलबे करी तो वो भी देखब कुमा जब कोनो भाई बहन जो कुमा जे लिजिचिम भवन सन वो लोग नहीं खुशी बा बोले मर बापुआ का कौन कर एगया कर लग जाके दूसर लड़का के दे हई कर लग हमर ओकर लड़को है कि नहीं है न देखेला कैसे काम कर लग अब ओके लगी गाड़ी दे अब ओके लगी एक बात बोले इस जेरी छे कि कुमा जे रोज के कहानी है तो मिसिल में ओके मिली जब ओके मिलल तो हियाँ कुरेक अब हम नहीं देखा था ऐसा जब देखब ये कुमा जा प्रॉब्लम हुआ समस्या हुआ नई तेमीने हुई बड़ी मुश्किल हुई पताज करे के तो चाहे एगो केस डाले के लाखू सिप्रेम में ये हमने बोलिया सा पताज आ ला जुस्टिस यहाँ देखब मस्त कोर्ट में हुआ पताज हुएला तो पताज हुएला हुआ देखी अरे यहाँ तो देख ले सा कौन कौन मजे केस हुएला जो प्रॉब्लम हुएला वान बेचे के एजिविजियो में हुआ अब दूसरा क्या करेला भाई बहनों में कब कुमा जो है एगो प्रॉब्लम समस्या हो जाला कौन तेस्ते करेलन सन वैल्यूएशन ए वैल्यूएशन के ये बोझ दू गो घर बा या दू गो माटी बा एगो भैया बोली हई जमीन वाले हम हौ बोली नहीं है हम यही ले पसी काहे हो जमीन वाले
1: एक एक चीज के दोनों जना झगड़ा करत हन सा कि ई हम चाहला हमके चाहला उ बेरा ने हमके चाहला
0: हां और दूसरा बोली कि ओकर वालिया ज्यादा बा पसी एक बार अभी हुकुमा अरे एगो बोली के एगो के बोलबा तू रेजिडेंशियल में लेके तो एगो के बोलबा एग्रीकोल में बोली के कान के माटी हम ले भी होला देखब यहाँ डाको नहीं हो अनसन अब
1: ऐसे से की हुई कि जो रेजिडेंशियल बा उ आधा आधा और जो एग्रीकोल बा उ आधा आधा से की हुई
0: हाँ जी सकल जाए बांटे तब
1: हाँ
0: तब करेक्ट हुई तब जे नहीं सकल जाए बांटे तो होके तब मिला था कुछ ना कुछ सेलमो के ला डिफरेंस हुआ दे के पैसा के ऊपर वाले के समझल ना अब ये तो हो गल बा कभी हुएला पताज हुएला पाँच गो जगह छे बा एगो माटी बा अब जीविजे कर लन सन के कहाँ मिली कौन सी एक मिली तो हियाँ एगो पताज के प्रोपोजे करब कि एगो भाई वहाँ हियाँ तू ले ले हाउ बोली हुआ ले ले बोली अनसन वो बोली नहीं कोनो एगो हुएला ए में बोली नहीं हम नहीं आते कैसे हई कि हई बुतवा हमके चाहेला हिये मिले के एक बार आदमी बोले नहीं सीमो हियाँ मिले के चाहेला कहूँ बोले के नहीं बात सीमा हाँ जी घर बना दिले होई उ जमीनवा में पताज के गाड़ी तो पताज कब होएला तो ओके बुतवा मिली हुए जहाँ बनैले बा ये घरवा तो ये देख ल कोरे खा अब हम एगो तुहरा एगो बड़का कहानी का कौन थी करब ई में तो जीविचे सीविचे में प्रॉब्लम होएला पति पत्नी
1: हाँ
0: शादी कर ले हो अनसन
1: हाँ।
0: अब जी पति पत्नी शादी कर ले हो अनसन तो बड़ी तो जोली चीज है ओकर बाप या ओकर माँ बेटुआ के सिपोजो पतिया के एगो जमीन दे दिले रहल शादी के गाड़ी
1: पति घर बना
0: हाँ मैम कि कोई बिया से प्रकाशो जी बिया शादी कर ले बा कोनो लेफे नहीं बा एगो डोनेशन है एगो एरिटाज है एरिटाज में बताई सा अब एरिटे कर ले बा ओकर माँ बगल से पत्निया के कुछ नहीं मिली अभी लड़का के बनाई बताई सा पत्निया के कुछ नहीं मिली पसकी ए ओकर जिबिया हमने बोला सा भोप मतलब उकर माँ बाप के कब जिबिया मिलेला मेम की शादी कर ले बा कोई भी आए पत्निया के नहीं मिली कुछ अनमन
1: पति आज गुजर गल तब पत्निया के सकी
0: हाँ हाँ अभी हाँ। नहीं गुजर के नहीं जीते
1: जीते के बोला थी सा
0: तो का होल हियाँ देखब उकर पत्निया के कुछ नहीं मिली पताज में अब वो तो वहाँ मेर दे बोल देख ला को निकालते कौन आदमी के देखे एक बार आदमी के देखे सन खुशी के मारे नहीं वो तो बोले अरे बाप वो तो मर जाइए हमार पतिया या हमार पत्निया हम तो बड़का कपमा मिली घर मिली माटी मिली लुत्तु मिली बड़ी ही खुशी से शादी कर ले बा वो तो नहीं शादी कर ले बा मजे प्यार से या मोहब्बत से यहाँ ऐसे करके आदमी कभी शादी हो जाला मिसलमा यहाँ भूल जाला कि ओके मजन भी मैं सेलमा कब जी मर गलत मियाँ हाँ तब ओके मिलबे करेला मत हई पत्निया के या पत्निया के बस ओकर जेगीचे मत मडम हुए रहेला ना अरे ये कोरे खो गल बा इस समस्या अभ्यम ई में आवत है पति पत्नी लिमन से बड़ी ढेर दिन से रहलन सन जब पति पत्नी रहलन सन संगे पत्निया तो बड़का काम करे या पतिया बड़का काम करे पैसा तो मिले बोले जाने ले का करते ये घरवा जो नवी बनैले स हाँ हकमा हम बनैले चला सुते करी स कंट्रीब्यूट करके घर हुआ या जमीन में खाली रहल घर हुआ अब एगो बनैलन सन दोनों

0: काम करके अब समस्या होल भैया जीवोस होल। अब जीवोसवा होल तो ये घर हुआ जो न बा प्यार से बनैलन सन बोले मेजो दे गैव मजक मज बनैले वन सन हिया एगो ड्रीम हाउस के। अब हिया पता सो बता अब देखा कौन कितना प्रॉब्लम होवेला ऐसन में बस हमने कहा यही में से जीवोस के कब आवेला देख बात ये बता। अब न पता जुआ खो जाता पति पत्नी तो दोनों संगे काम कर ले वन सन दोनों तो दिल्ले वन सन में छोटा दिल्ले हुई पैसा बड़ा पैसा दिल्ले होवेला में दोनों कॉन्ट्रीब्यू करके बनाई ले वन सन घर हुआ जीवोस हुई तो पता जुआ कैसे हुई। अब देखा कौन काका हिया होल बा
1: काका की पति की तो जमीन पहले से रहल
0: नहीं जमीनवा के को मजा कोट नहीं बा घरवा के हिया जोन बनाई ले वन सन दोनों संगे बस की जमीनवा तो घर मा दे दे ले रहलो के ऊ तो उकरे रही मैं हिया तो अब घरवा कुमा जो के बनाई ले बा हुआ दोनों कैसे ऊ घरवा के कुमा जो पतजवा हुई। अब एगो प्रॉब्लम होवेला जब सकी बताई कि कुमा जे कॉन्ट्रीब्यू कर ले हो वन सन या जोन पतिया नहीं देई को जे तो कर पत्नियाँ के तो पति पति पत्नियाँ बताई के जाना ना देख हम काम करते लिए तेल है का मर पिछली बाएँ तेल है तेल जिसको तो हम तो दिले रहे को पैसा 2 रुपया दे ले हो 4 रुपया दे ले हो मैं दे ले बा पैसा घरवा बनाई के ओकर हक बा उ घरवा में तो यहाँ देख ल पतजवा की विषय आई तो ऐसने होला। हाँ अब जाने के चाहला उ कॉन्ट्रीब्यूशन जे कर ले बा ओके कितना मिली बोल देला तू ही तो ओके कितना मिली तो इमें चाहला एगो चौटेज सेवैया लेके चौटेज सेवैया एगो अपतेर नियर है अपतेर नहीं है चौटेज सेवैया वो एवैल्यूए करेला एगो घर के ओकर वाले तो सखी बोले ई घरवा में एक मजे ऐतेल के बा ऐतेल ऐतेल बा सुबुजों आके एवैल्यूए करी 2 रुपया के बा तो सब जे हियाँ कानून में बगल में 1-1 रुपया समझ ना। अब एक चौटेज सेवैया लेके चौटेज सेवैया आके बोली हम गईली विजिटे करे ऊ घरवा घरवा में देख ली सेपा कई गोला सांबा हमर देखे में 2 रुपया के वो बा ये बोले तो एक एक, एक रुपया के कुमा जे हियाँ हो तो ऐसे करके
1: खाली घर के बतिया थी सर जमीन के नहीं
0: नहीं नहीं, नहीं जमीन वा तो रही जो नदमिया के
1: मौवा के घरवा के वाले
0: घरवा के वाले तो हियाँ ओकर पतजुआ मिली है के ओके मदमों के या है के जितना कॉन्ट्रीब्यू कर ले बा ओके ऐसे काल के लिए करी कितना लासा मुंबा सब एगो बा एगो सिफूफ डाले वही तो अगर कम हुए है एगो चौटेज से वही तो हिया ओके बस पतजुआ हुई एगो भाव बोली अच्छा का करबे हिया ऐसन कौवा में हम तो तुके दिक्कत है तुके चाहे 4 रुपया और हिया चाह बोले हमारे यहाँ 4 रुपया नहीं बा तुके दे के तो बोले सैफ हमारे तो पुष में बहुत पैसा बा तो बोले किन ले हमार से तो का करी पतिया या पत्निया बोली हेले पैसा वाले ले जो ओकर के ओकर शे के ओकर इन्वेस्टिस्म कर ले बा ओकर वालिया के ओकर हक बा तो ओके मिल जाए हूँ ओकर पैसा ई दे दई अब जोड़ी चीज हो जाए ऐसन में मैं अब ओके मन नहीं बा कुमा जे है एक मन नहीं डाकू बा डाको नहीं बा बोले तू बोलत हुए 4 रुपया की चीज या 2 रुपया हमार देखे में तो 2 रुपया के वो नहीं बा ज्यादा वो बा आर हम तो देखो थे तुरिया पैसा नहीं बा ना ओकरो भी एगो सोल्यूशन बा चल ला बार में घरवा डाल दे सब बेचे के जब हुआ के कोई किन ले तो पैसा तो देवे करी ना वो घरवा के है कितना वो बा तो वो तो भूगवा मटियो ले खरी जाए वो क्या एक बगल मैं हिया कर घरवा के ओकर वाले जुन बा जब हुआ बेचा जाए से बुझो 4 रुपया के 2 रुपया तो रह भैया 2 रुपया हमारा एक और सॉल्यूशन
1: बहुत बढ़िया। अब एगो और एगो सवाल करी खोज से तो बात है जब पति पत्नी शादी कर लन जा जीवोसियो के लन सा दोनों जना मिल के घर किन ले वन सा तो बात है जब जीवोस हो जाला पत्नी अलग हो जाला तो हो जोन लैकवन और के मान लैका बा तो हो जोन घरवा बा ओकर पति आज दूसर शादी कर लेलक तो ओ घरवा में ओकर पत्नी के हक रहला ला लैकवन के घर रहला
0: एगो जोली चीज पूछ ला एक बार जीवोस में कब होएला तो अरे तो मां बपुआ दोनों पता से हो गल हो सर जीवोस हो गल
1: मान लो पत्नी पैसा दे दिलक पति के बोला घर रख ले हम जात है
0: अरे ई तो हो गल तो हिया तोहर सवाल है जे पतिया ओकी पे करता उ घरवा और दूसर शादी कर ले बा अब ओके मन नहीं बा जाए के यहाँ से बुझो अब ओके बोले ओकर पत्नियों के जो लैको के छोड़ के जाए के लैकवा लोग भी कब जीवोस होवेला तो हिया जीज दिखेला कौन चीज कर ले हो तोहर लैका के विषय कैसे हमने दिखेला कभी को जीवोस होवेला हमने आईला से एगो पोछो दे फामी एगो कुमा जे ए धुआ दे विजिट धुआ दे बेजम और दूसरा चीज बोले ला कि ई में ऊ घरवा में ऊ लैकुआ जाके रही बस कि चाहे एगो लैका था ऊ लैका है

0: कहाँ जाके सीमा में तो नहीं सकी रहे ना, तो ओकर जिजमवा कौन जिजवा देवेला ला गॉड दिस एन्फेंट जो आदमिया के मिलेला वही घरवा में जाके हुआ रही और मांग करता पस करते ले मुआये नहीं वापे ये करेगी तो मांग करी तो पतिया नहीं सकी वही घरवा में शादी करके ओकर दूसरा पत्निया आन के रहे के उमे
1: घरवा में लैकुआ के
0: द्वारा लैकुआ के द्वारा आर कभी जीज देवेला एगो कुमा जे जीजमा की पत्नियों सकी घरवा में रहे एगो लैका से बोसो पांच बरिस के होबा तो मऊआ कहाँ जाके लैकुआ सकी छोड़ दे
1: अठारह साल के हो गल तब
0: नहीं कब जिजवित जिजमा हुए ला तक मजा माजे कब हो जालन संसिता जी जिजवित के बाद वो कोई कानून देखेला अपन डिबुए कर तू हाँ जे लिखित करत हुई पढ़त हुई तो वो बोलेला कि जो एक लेकुलवा में पेय करे के चला बपुआ के चाहे को पशुआली माते पेय करते जाय के मेम क्यों के जिजवित हो गल बा मैं घर में रह के लागत के जोन के मिलेला लैकुआ ओकरे संगे लगेला आलू तो हिया तब बतिया नहीं सकी आने को दूसरे को है पत्नी के और ऊ घरवा में रह के
1: यानी कि हाँ जोन घरवा बा ऊ घरवा में दोनों लैका के या तीन गो लैका रही या चार गो लैका रही ऊ घरवा में हाउ लैकुए लोग के द्वार रहेला रहे
0: लैकुआ रही ऊ में वो कि जे जासिया तू जिजुआ कब दे देल बेगो जिजमा नहीं सके निकाले और ऊ नहीं सकी आने जब प्लास्टर नहीं बा कि कुमा जब पतिया ओकर बपुआ वो के मन बा वही घरवा में रह के नहीं लाकू हिया दे देवला यही से कभी एगो आबुका करे लगो का जीवोस के तो सब जोन ओकर प्लेतुआ में आबुए बा वो के लिख देवला दुआ दे बेजमा दो है पंशों अलिमेंटे
1: अच्छा मान ले लैकुआ जोन बा अपन सुदला अपन मां लगे सास लगे छोड़ सुदला जैसे लैकुआ जोन बा वो पतिवा जोन बा अपन मां लगे छोड़ ले बा नया शादी करके हौ घरवा में पत्नी के संगे रहता
0: तो ही बताई ना पत्निया के अनले बार वही में रहे को जाता वो के तो पहला चीज के निकले के चाहेला है पतिए के पत्निया के भूल जा भी वो कहता दुआ ही नहीं बा मैं पतिया के सोचा तो यारे घरवा ही मार हिया तो लाकू दे दिल बा दुआ दे विजी दुआ दे बेजमा करियो दुआ दे बेजमा आके ऊ घरवा में जीज डाल दे ले बा मांग कर ले बा कोराबो का या आवे कि ई घरवा शादी के बाद हम नहीं मांगत हैं सर दुआ दे बेजमा कि ओकर हिया रही लागत जे के मिले ला ओके मिले दुआ दे बेजमा ओके मजा के रही ऊ घरवा में तो अब कैसे पतिया ओके दुआ ही तो नहीं बा अब आन के हुआ ओकर पत्निया के आनी या ओही ओके मन बा रहे के नहीं सकी तो देखे ला ई एपो तो एगो दूसर समस्या पताज में हुएला हिया दूसर समस्या मेम की एगिताज में हुएला कब नहीं सोचिया कि कौन का शादी कर ले वो अब जीवोश हो गल तो उसे दिया था कुमा जय फिनिश हो गल कुमा जय समझ ले ना वो तो एग्जिस्ट ही नहीं बा तो सब जोन बा दुआ ओब्लिगेशन पति पत्नी में जोन जोन रहल खाई पियाई की फिदेलिटी सिकू असिस्टेंस कुछ नहीं एग्जिस्ट बा बस ये सब तो फिर नहीं होगा अब तो कानून है मैं पति पत्नी नहीं रिको नहीं तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वो देख बा हुआ से आके कुमा जे है बपुआ नहीं सकी रहे कानून से यही कब जाला एगो आबुई एगो आदमिया मांग करेला एगो जीवोस तो के चाला सब ओकर आबुई आबो का के बोले के कि देख हम के चाला ई हम के चाला ऐतेल ऐतेल ऐतेल जिस्तो तब ओकर प्लेतुआ में कब द्राफ्टे करेला तो सब लिखेला और आके लाकू में बताई के चाहला ओके कि चार गो लैका बा बाप और चार गो को मजा नहीं काम करे लन सन सब मिने बा हम कहाँ लेके लैकुआ के जाब लाकू बोलिया सैन कौआ में फिक्र नहीं है सुन के पहुँचिया के देसी दे करके बोले लैका हुई घरवा में रहिया निकले के नहीं और पति के नहीं बदवा रहे के अब तो दूसरा के आना था बाप उतार कुमा जे है वो प्रॉब्लम खो जाता निकला ये कैसे कानून जैसे बनल बा जैसे कभी देखभाल लिमन से सब चीज जोन बनल बा ठीक हुए से बनल बा के मजे लौकता हो के नहीं अच्छा बा जो नदमिया के कोद बा कानून हुआ तो वो अरे से बुझो पतिया के बोले तो कि तुआ नहीं बा रहे के तो बोलिए हमर घर हमर जमीन है हाँ तो शादी के बाद तो यहाँ दिखेला जेगी छे न बा जेगी छुआ कहाँ जाए समझ ला ना तो यहाँ तो कर एगो प्रॉब्लम हो जाला अरे अब हम नहीं दिखेला सा पहताज पताज के कुमा जे एगिताज के चला एगिताज हुई पताज हुई माँ बाप हुई दे हुई लैका हुई ओकर माँ बाप से मिली पताज चाहेला बराबर एक किताब तू एगो छोकड़ी हो वो एगो छोकड़ा हो भाई बहन हो कोनो डिफरेंस नहीं हो चाहेला पागे दे के हो जोनों के दे जम लालीन के बा जो ना डूबते बा सकेला कोता लैका ही आदोपते देखले रही से ना जे ओके आदोपते कर देले बा ओकर लैका ओकरो तो अन मन बराबर मिले के एक बार नदी बोले हाँ जे ओके मन होई कम लई के तो ही तो कर दुआ समझ लेना मैं चाहे लामनी के कानून

0: लिखल ह चाहेला हर लू हर कुमा जे जमीन हर बटवारा कब होवेला तो ओके चाहेला अनबन बराबर दे के तोहरा चार पेस मिली तो हमरो चार पेस मिले के चाहेला नहीं कि तोहरा कुमा जे दू पेस हमके एक पेस सिपा हमके पाँच पेस नहीं सब के चाहेला अनबन बरा के और जे कुमा जे हई होवेला कोनो आदमी हई हई फिजिक करेला ओके मन नहीं बा तो बोलेगा अरे जिस तरह देखले से ना बेच दे या हमके पैसा दे तो उसे केला एगो शुल्क एगो पैसा ओके मिलेला। अब हमने देखेला सा कभी बहुत सा जमीन बा मेहिया ऊ लैकवा एगो मिनेर बा माँ बाप मर गल बा ये भी एगो समस्या है यो भी प्रॉब्लम है वो कैसे अपने नाम में सके कुमा जे मटिया कोथरा सब बना दे या तो मिनेर बा त सकेला जब एगो मिनेर रहेला एगो आदमी सकी ओकर है के एगो चितेनियर रहे ओकर कुमा जे खड़ा होके बनाई के अरे तू एगो मिनेर हो हम तोर से जस्ती बड़ा हई तू हमके बोला चाचा हम घर कुमा जे हई बना दे और एक बार हम मिनेर हो आक्षेपते हो कि हम तोहर कुमा जे खड़ा होके रिस्पॉन्सिबल पार्टी नियर तैगो हम एगो चितिया बन जाब कब हम चितिया बन जाब हमके उदवा मिल गल बा तोहर सब चीज जोन जोन चीज बा हम ओके पे करब ने चितिया बोने के ऐसे करे के चाहेला कि गातिल जाए के चाहेला हर माजे जोन सुफे होवेला अब घर हिया तो यहाँ देखते सब कौन समस्या है पताज में कभी तो देख बाई पलुआ रुआ में अरे एगो भैया या एगो चचा हो या चचिया जोन के मटिया मिले के बा ओकर कपार दिमाग नहीं बा तो कैसे जाके नुतेर के आगे सीए करी पसी जोन आदमी पगला माफ करी वो तो स्वाजीजन नहीं सके सीए कर कुछ तो नहीं समझेला मैं पूछता हूँ यहाँ एगो जेवी छे बा ना
1: तो कैसे सकेला
0: कुछ अली हाँ जब वो एगो माजे है वो सुफे होवेला एगो फैकल्टी मटाल से तो देखब ओके चाहेला एगो चितेक नोमे करे के ओकर एगो दूसरा आदमी के नोमे करे के चाहे और उन आदमिया जो कि नोमे करल जला देखल जलन सन ओकर पलिवरवा में के एगो आदमी सकी खड़ा हुई
1: भाई ने तो करो बहिन जी कर संगे रहे लाज हाँ, दिखेला
0: एगो आदमी के खड़ा जैसे ओकर दिसंद आसंद उ लोग स्वाजगे करेला कि कौन आदमी के ई लइकवा के सकी खड़ा हुई
1: बिल्कुल तब ऊ जाके सकी
0: ऊ सकी खड़ा हो के ओकर हई देखी अभी जैसे हम देखे सब पहला माता जी टेलीफोने करलक इतराजे बा ऊ तो दूसर देश में बा तहिया तो एगो समस्या बा पताज करे के तो हिया देखबे को चीते चाहेला डाले के कातिल में डाले के
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तो चला अभी हमने के और एक दुगो देताई था रगल बा उम्मीद कर रही जाके अगले हफ्ते अजय सकब जा करे नहीं तो हाँ, बाद में सकब सा आप तो हमने के जो कार्यक्रम बा आज की चर्चा यहाँ पे समाप्त होता है। श्रोताओं हम अपने वकील कपिल देव रघुनंदन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी श्रोताओं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एक और कार्यक्रम के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। अभी के लिए आगे चाहते हैं आज के चर्चा कार्यक्रम की पूरी टीम की तरफ से नमस्ते।
0: नमस्ते।
2: आज की चर्चा सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 98.2 यू आर लिसनिंग योर आरएम3 रेडियो।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। राष्ट्रसभा के कार्य आज दोपहर 3 बजे जारी रखे जा रहे हैं। आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन एक बार फिर पेंशन सुधार पर आधारित रहा। इस दस्तावेज के परीक्षण के लिए जिम्मेदार पेशेवरों के आयोग पर विपक्ष नेता जोलेजोंगा और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से सवाल पूछे। वे जानना चाहते थे कि इस आयोग के गठन के लिए सदस्यों के चयन को लेकर कौन सी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। इस वक्त राष्ट्रसभा के कार्य जारी रखे जा रहे हैं। फुटबॉल की दुनिया में आज रात 11 बजे स्पेन खेलेगा बेल्जियम के खिलाफ। एमबीसी 11 पर इसका प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले रात 9:30 बजे से एमबीसी की ओर से स्पोर्ट विभाग द्वारा एक खास कार्यक्रम पेश किया जाएगा। देखना न भूलिएगा रात 9:30 बजे से एमबीसी 11।

0: लाइनअप पर और फीफा वर्ल्ड कप के लिए कल रात 12 बजे क्वार्टर फाइनल्स का पहला मैच खेला गया फ्रांस और मोरक्को के बीच। स्कोर रहा फ्रांस 2 मोरक्को 0। इसी के साथ फ्रांस क्वालिफाई हो गया है सेमीफाइनल्स के लिए। अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने वाली मोरक्को की टीम की आशाएं भले ही खत्म हो गईं, लेकिन विश्व कप में उसका प्रदर्शन सराहनीय रहा। विदेश समाचारों में चीन के दक्षिणी पूर्वी शहर जिनयांग में जूतों की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम 28 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। कई लोग इमारत की छत पर फंसे रह गए। ये इलाका चीन का शू कैपिटल कहलाता है, जहां दुनिया भर में बेचे जाने वाले 20% स्पोर्ट्स शूज बनाए जाते हैं। जिस वक्त आग लगी, करीब 240 लोग वहां काम कर रहे थे। अभी तक आग के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि इस हादसे के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चलाई जाए। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आ गया दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Up center, 95.5. North, south, 95.6. East, west, 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
1: आपकी चिट्ठी मिली की चिट्ठी मिली। नमस्ते आदाब दोस्तों, कहते हैं दिल की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी से कही नहीं जाती। कभी वो आंखों में रह जाती है और कभी चुपचाप एक चिट्ठी बन जाती है। आप सुन रहे हैं आपकी चिट्ठी मिली, एक ऐसा सफ़र जहां हम सुनते हैं आपके दिल की बातें, आपकी यादें, आपकी उलझने और कोशिश करते हैं कि मिलकर उनका जवाब ढूंढें। तो आइए आज फिर खोलते हैं कुछ चिट्ठियां, कुछ एहसास, कुछ ऐसी कहानियां जिनमें शायद आपकी अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा नज़र आए। मैं हूँ आपके साथ पूनम और शुरुआत करते हैं आपकी पहली चिट्ठी से।

0: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
1: आपकी चिट्ठी मिली आपकी चिट्ठी मिली। इतनी है हमारी एक दोस्त, कहती मैं अपना नाम तो नहीं बताना चाहती पर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा या किस्सा कह लो ज़रूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो पहचान है मेरी, जो आज मेरी पहचान है, वो आज से पहले नहीं थी। आज मेरी उम्र 63 साल यानी 63 ईयर्स की है। लोग मुझे देखकर कहते हैं आप तो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि इस मुस्कान तक पहुँचने में मुझे 30 साल यानी कि 30 ईयर्स लग गए। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी, पति अच्छे इंसान थे हमेशा, लेकिन गुस्सा बहुत करते थे, छोटी छोटी बातों पर डांटना। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी और मुझे इतने काम भी घर के नहीं आते थे, तो वो हमेशा हर बातों पे, उनके मम्मी एक्सपर्ट थे पर मुझे कुछ नहीं आता था, इसलिए वो मुझे जब डांटते तो मैं चुप रह जाती। कई कई दिनों तक वो मुझसे बात नहीं करते, हमेशा कहते कि अपनी मम्मी के घर से सीख कर क्यों नहीं आई, पर फिर भी मैं क्या करती, मैं चुप रहती। और क्योंकि मेरे घर परिवार वाले इतने तो अमीर या इतने बड़े परिवार से नहीं थे जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया हो, पर मैं अपनी पूरी हिम्मत से करती रह रही। पर धीरे धीरे मुझे लगा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं हर दिन खुद को बदलने की कोशिश करती रहती। फिर एक दिन मेरी बेटी, जो उस समय सिर्फ 10 साल की थी, मेरे पास आई और बोली, माँ आप हंसती क्यों नहीं है? बाकी सबकी मम्मियाँ हंसती हैं, स्कूल में आती हैं, हम बच्चों से बातें करती हैं, पर आप कभी नहीं हंसती। उसकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं जी रही, मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी देखकर जीना सीख रही है। उस दिन से मैंने एक फ़ैसला लिया, मैंने किसी से लड़ाई नहीं की, किसी से कोई बात नहीं करती थी, आर्ग्यूमेंट नहीं करती थी, एक चेहरे पर सिर्फ स्माइल रखती थी, एक मुस्कान रखती थी, किसी को गलत साबित करने की कोशिश भी नहीं करती थी। मैंने बस अपने लिए रोज़ 15 मिनट निकालने शुरू किए, कभी मंदिर चली जाती, कभी समुद्र किनारे बैठ जाती, कभी अपनी पुरानी डायरी पढ़ती या कुछ नए पन्नों पे कुछ लिखती, कभी खुद के लिए चाय बनाकर चुपचाप पीती और एहसास करती कि मेरी बेटी जब आएगी तो मेरे चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। धीरे धीरे मुझे फिर से जीना आ गया। आज मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, कुछ दिन पहले उसने मुझे गले लगाकर कहा, माँ आपकी हंसी बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसी बचपन में तस्वीरों में दिखती थी, और जब आप स्कूल आती थी या कहीं पर भी जाती थी मुझे लेकर, आपके चेहरे पर वो स्माइल वापस है और आज तक वैसी ही है। दुनिया बदलने से पहले इंसान को खुद से दोस्ती करनी पड़ती है। अगर मेरी तरह कोई और भी अपनी खुशी को सबसे आखिरे में रखता है तो बस इतना कहना चाहती हूँ, खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है, ये सिर्फ एक खुशी है जो आपको अपने लिए चुननी चाहिए। सबसे पहले, हर चीज़ से पहले भी आपके अपने भी सच में खुश रह पाते हैं। तो ये तो बहुत ही सुंदर, इसको सुनने के बाद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस आए। कहते हैं ना कि हम अक्सर अपनी

परिवार को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देते हैं और कहते हैं सारे रिश्तों का एक जो स्माइल है या आपकी कोई हॉबी है उसको ढूंढिए, और कहते हैं कि अगर आपने उस चीज़ को समय दिया है और उस चीज़ में आपके लिए ज़िंदगी का जो सफ़र है उसको आसान कर दिया और आपका समय मुस्कुराने में लगाया और किसी को खुश करने में नहीं, आप जो भी कर रही होंगी अपने दिल से कर रही होंगी, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। आपने ये अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, हम अपने दोस्तों को भी ये कहेंगे हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए ये गाना।

चलिए हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी चिट्ठी की ओर। इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के थ्रू, पर हम उनके किसी के कॉल्स नहीं लेते हैं और किसी के मैसेजेस यहाँ से नहीं पढ़ते हैं, पर हाँ हम चिट्ठियाँ ज़रूर पढ़ते हैं। तो हमारी दूसरी चिट्ठी आई है हमारी एक प्यारी सी श्रोता से और लिखती हैं, मैं 55 साल की हूँ, आज अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत सच आपसे साझा करना चाहती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी लोग कहते थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, जहाँ भी जाती लोग मुझे देखकर रुक जाते, मेरी सहेलियाँ हमें

हमेशा हंसकर कहती थी, देखना तुम्हारे लिए तो कोई राजा जैसा दूल्हा आएगा। धीरे धीरे ये बात मेरे मन में भी बैठ गई। मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी किसी फिल्म की कहानी जैसी होगी। मैं हमेशा अपना चेहरा, हमेशा बहुत सारे लोग हमेशा मुझे कहते शीशा टूट जाएगा, इतनी सुंदर मैं थी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। मेरी शादी एक बहुत ही साधारण परिवार में हो गई। मेरे पति ना तो बहुत अमीर थे, ना किसी बड़े पोस्ट पर थे। पहली बार उन्हें देखा तो मन में थोड़ा सा अफसोस भी हुआ। मैंने सोचा ये है मेरे लिए, मेरे माँ बाप ने इनको चुना है मेरे लिए। मैंने सोचा क्या यही मेरी ज़िंदगी रहेगी। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद मुझे समझ आया कि इंसान की पहचान उसके चेहरे या पैसों से नहीं, उनके व्यवहार से होती है। एक दिन मैं बीमार पड़ गई और बहुत बीमार पड़ गई। मेरे मुंह से खून निकलने लगा और मुझे लगा, और मेरे परिवार को यानी कि मेरे मम्मी पापा को लगा कि मैं शायद ज़्यादा ना बच सकूं। और सब जने मुझे लेके हॉस्पिटल भागे। रात दिन सुबह शाम सब ने मेरी तीमारदारी शुरू कर दी। और बहुत दिन तक तो नहीं, बस 5-6 दिन में ही सब लोग तो एकदम थक चुके थे, पर बस मेरे पति थे जो पूरे दिन मेरे साथ रहते। उन्होंने ऑफिस से छुट्टियां ली, अपने सर्कल में सबको कहा कि मेरे को क्या खाना है। हर बार सबसे पूछते रहते, अगर ऐसा होता है किसी भी डॉक्टर के पास चले जाना और उनसे बोलना कि मेरी पत्नी को ये हुआ है, रिपोर्ट दिखानी। बार बार डॉक्टर से ये पूछना कौन सा और टेस्ट होगा और कौन सा रिपोर्ट लेनी है आपको। और ऐसे करते करते मैं अस्पताल से 1 महीने बाद निकली, पर मेरे हर छोटे बड़े सपने को अपना सपना बना लिया उन्होंने। और मेरे माता पिता, जो कि सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 बार आके पूछते, उस टाइम तो ऐसा फ़ोन भी नहीं होता था कि हम उनका चेहरा देख सके, आए थे तो उनके भी और भी बहुत सारे काम थे, पर बस मेरे पति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज हमारी शादी को 32 साल हो चुके हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, चेहरे की चमक भी पहले जैसी नहीं रही। लेकिन आज भी जब मैं चाय लेकर उनके पास बैठती हूँ तो वो मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी पहली बार लगी थी। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरी सहेलियां गलत नहीं थी, मेरी जिंदगी में सचमुच एक राजा ही आया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके सिर पर ताज नहीं था, उसके दिल में बहुत प्यार था। और जो इतने है और इतने सालों में भी उनको मेरा चेहरा वैसा ही लगता है जैसे उन्होंने मुझे पहली बार देखा था। अगर कोई आज सिर्फ चेहरे या पैसे या दिखावे से किसी की परख रहा हो तो उसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, सच्चा जीवन साथी आंखों से नहीं दिल से पहचाना जाता है। आपकी एक श्रोता। ये तो दिल छूने वाला लेटर था। मतलब मुझे, जब मैं बहुत सारे लेटर्स पढ़ रही थी तो ये लेटर इसीलिए मैंने निकाला क्योंकि मुझे एहसास होता है कि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ घटता रहता है। तो दोस्तों, खूबसूरती वक्त के साथ बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, पद बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन अच्छा स्वभाव और सच्चा जो होता है ना, वो उम्र के साथ भर कर रहता है। जीवन साथी चुनते समय चेहरा नहीं, चरित्र देखना चाहिए, क्योंकि घर रूप से नहीं रिश्तों से खूबसूरत बनता है। और आपके परिवार ने भी ऐसे ही किया था कि आपके लिए सच्चा जीवन साथी आपके लिए चुना। थैंक यू, आपने हमारे साथ ये लेटर शेयर किया। आपको हम हमेशा यही कहेंगे, आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने पति के साथ हमेशा खुश रहिए। और मैं हूँ आपके साथ पूनम।

चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी चिट्ठी की ओर और लिखते हैं प्रिय आरजे, मैं आज 52 साल का हूँ। लोग मुझे आज एक सफल बिजनेसमैन के रूप में जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि ये एक समय ऐसा भी था जब मेरे पास बस का किराया देने तक के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। 25 साल पहले मेरी सगाई किसी से हुई और उसके बाद एक उसे हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन शादी से सिर्फ 2 महीने पहले मेरी नौकरी चली गई। घर की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसके परिवार वालों ने साफ कह दिया कि उनकी बेटी ऐसे लड़के से शादी नहीं करेगी जिसका कोई खुद का भविष्य ना हो, क्योंकि उसको तो बस एक बड़ा बिजनेसमैन चाहिए था और उनके परिवार वालों को भी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकी और हमारी शादी वहीं टूट गई। शादी का कोई मतलब मेरी ज़िंदगी में नहीं रह गया। उस दिन मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मैं उनसे इतना प्यार करने लगा था, मैंने रोना छोड़ दिया और काम शुरू कर दिया। छोटी सी नौकरी से शुरुआत की, फिर अपना काम शुरू किया। कई बार नुकसान उठाया, कई बार गिरा, लेकिन हार नहीं मानी। आज मेरे पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ है। कुछ महीने पहले ही एक शादी के समारोह में वही लड़की मिली। उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा, मुझे खुशी है कि तुमने हार नहीं मानी और मुझे पता है कि तुम बहुत ही सफल बिजनेसमैन बन गए हो। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर उस दिन तुम चली नहीं जाती तो शायद मैं इतना मजबूत कभी नहीं बनता। आज मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैंने ये बात अपनी पत्नी को भी बताई और उन्होंने भी इस बात को माना और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कि आपने ये जवाब दिया उनको, और उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट की। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आज किसी का रिश्ता, नौकरी या सपना टूट गया है तो यकीन मानिए, ईश्वर आपको गिरा नहीं रहे बल्कि किसी बेहतर मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं। आपका एक श्रोता। बहुत ही खूबसूरत आपने बात बताई। और कई लोगों की ज़िंदगी में ये सब कुछ घटता रहता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबके साथ होता है। हर टूटा हुआ रिश्ता, हर हार ज़िंदगी का अंत नहीं होती। कई बार वही दर्द हमें वहाँ पहुँचा देता है जहाँ हम शायद कभी खुद वैसे ही नहीं पहुँच पाते। पर जब कोई हमें डांटता है या हमें कोई बड़ी बुरी बात कह देता है, हो सकता है हमारे आंसू उस पल निकल रहे हों, हम अपने आंसू दिखा भी ना रहे हों और दिल ही दिल में कहीं ना कहीं रो रहे हों, तड़प रहे हों। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ छूट गया है तो उम्मीद मत छोड़िए, जैसे इन सर ने नहीं छोड़ी। हो सकता है ईश्वर आपका आपकी बेहतर कहानी लिख रहे हों, तो बस आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हम तो यही चाहेंगे सर, आप भी खुश रहें, आपका परिवार भी खुश रहे। और आपने हमारे साथ ये चिट्ठी शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।

तो दोस्तों इसी के साथ आज आपकी चिट्ठी मिली इस कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी बात है जो आप किसी से कह नहीं पाए तो आप अपने तक मत रखिए, हमें भेजिए, हम उसका जवाब देंगे। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 5250620 पर। हो सकता है आपकी कहानी किसी और की जिंदगी में एक उम्मीद की एक नई किरण बन जाए। आप हमें MBC के पते पे भी। मैं थी आपके साथ पूनम। अपनों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। नमस्ते।

0: RM3 Radio.
1: घड़ी मिलाते चले शाम के 5:01 हो गए बा अनुराधा पोडवाल तब बोलत हुवन अकेले पड़ गेलन परंतु हम तो अकेले नहीं हैं तो हर साथ बहाय जा और प्रोग्राम है
2: कलाकार की बात

अभी अभी आप लोग सुन ले जहां आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम पूनम जी द्वारा। प्यारे साथी गण के भाई बहन लोगन, भोजपुरी प्रेमी लोगन के हमार सप्रेम नमन। तोहार सेवा में उपस्थित बाहिया पर रोशन लेकर तोहर अपन कार्यक्रम कलाकार के बात, जो हर शुक्रवार के सांझ के बखत प्रसारित होला तोहर अपन मनपसंद रेडियो चैनल पर चलेला, यानी ऑरएम फ्री रेडियो मनोरंजन। आज अफसोस के बात बाते कि हमनी के कलाकार नहीं आल होवन, परंतु तोह लोग हमनी के श्रोता जोन होवा जा तो रो हमेशा साथ देवे जा, कलाकार से का कम होवा तू। उत्तर दे के कला तो लोग के हम तो खूबे जानीला, खूबे परिचित है, प्रश्नोत्तर तो बहुत ही पसंद करेला जा। तो चला पहला गाना सुना जेकर

आधारित बहुत बहुत सारे विषय। चलो पहला गाना सुना एकर बाद में हमनी प्रश्नोत्तर शुरू करब से और छोटा सन क्वीज रहे तो हर खातिर कोनो प्रकार के प्रश्न रहे हम जानिला तो लोग बेशक बेशक तो लोग अच्छी तरह से जवाब दे बजा। तो पहला गाना सुना बहुत ही ध्यानपूर्वक एक

0: RM3 Radio. Radio.
1: कलाकार के बाद
2: कलाकार के बाद रोशन के साथ चला किशोर की मियां जी की आवाज में सुन ल हमनी के पुरखन सचमुच ही देश के वो लोग सोना बना दिलन वो लोग के बदौलत आज हमनी विराजमान है इस ऐसन स्वर्ग जैसन देश में

चला हमने अपन छोटा सुन खेल तो हर संगे शुरू करत हैं जा और आजकल तो सभी के जो होंठ पर बा खाली वर्ल्ड कप के समाचावल बा सगरो जहां पर देख बा तब कुबजमोन के बात करत हुआ जा कोने किप के मिलल के कर हार होल के सबसे जस्ती गोल दलन कौन खिलाड़ी खूबे चमकता ई वर्ल्ड कप में तो चला काल के गो बहुत ही सुंदर मैच रहल 12 बजे यानी आज के सवेरे 12 बजे एगो बहुत ही सुंदर मैच खेलल गल मोरोको और फ्रांस के बीच में तो जल्दी जल्दी तू अपन दिमाग के घोड़ा लगावा और हमनी के बतावा कि फ्रांस वर्सेस मोरोको के जो मैच रहल ओकर में केकर जीत होल और कौन स्कोर से जीत होल बहुत ही आसान सा प्रश्न हम तो पूछ देली 4028070 पर बतावा या व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजे सकब 5250620 जल्दी जल्दी बतावा कि फ्रांस और मोरोको के बीच में जो मुकाबला होल कल वर्ल्ड कप के दौरान ओकर में केकर जीत होल और कितना स्कोर से चला जमजी चा जानी ला सा कि मॉरिशस में तो लोग इंग्लैंड के बड़ा ही फैंस हुआ सा खासकर लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के तो चला ई गाना सुना और बाद में तू हम तो हर जवाब भी सुना

हम तो रली लिवरपूल है लिवरपूल और रहब भी लिवरपूल ई जुन गाना है नीरज गुप्त मधु जी गैले हुआ अपन मधुर आवाज में और है जुन गाना है समर्पित कर लन सभी जुन मॉरिशस के लिवरपूल के फैन है परंतु जुन मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन है जरा नाराज नहीं हो यही तक हरी को गाना है और हमर प्रश्न इ प्रकार रहल पहला प्रश्न इ प्रोग्राम के कि कल जोन मुकाबला होल फ्रांस और मोरक्को के बीच में ओकर में केकर जीत होल और कौन स्कोर से जीत होल हो और सही जवाब बहुत जल्दी जल्दी चलाल आसान त प्रश्न रहल और सभी महिलाएं ही जवाब दिलन जा सही जवाब है मोरक्को 0 फ्रांस 2 हाँ और सही जवाब देलन सरिता जी काट्रोबोन से मीनाक्षी जी बोबासें से इंदिरा जी मौदालबिया से और वाक्वा से शोभा जी चलो वो लोग के तो हमने खूबे तालियों के गूंज से स्वागत करब जा और मोरक्को और फ्रांस के बीच में एक और मुकाबला हो रहा वर्ल्ड कप में 2022 में जब कतर में वर्ल्ड कप के आयोजन हो रहा था और उ रहल सेमीफाइनल के दौरान यही स्कोर से फ्रांस पीटले रहल मोरक्को के 2-0 के स्कोर से पीटले रहल मोरक्को के और फाइनल में चल गल अर्जेंटीना के साथ खेले और कल क्वार्टर फाइनल के दौरान उही इतिहास फिर से दोहरावल गल फ्रांस मरलक मोरक्को के एम्बापे और उस्मान देम्बेले ते हछड़ के गोल दलन सा का बात बाते बहुत ही बधाई हो फ्रांस के अब फ्रांस के मुकाबला किकर से हो स्पेन से या बेल्जियम से ही तो रात्रि के पता चली आज क्वार्टर फाइनल के दूसर का मैच में चल हमने के जो दूसरा प्रश्न है एकदम तैयार है चल गौर से सुनो और ई जो प्रश्न हम जानिला तोहर अपन संस्कृति के बहुते प्रेम करेला जा और रामायण के तो बहुते खूबे तो लोग खुशी रहेला सा चल रामायण पर आधारित एगो प्रश्न हो जाए जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गयलन मेघनाद के बाण लगला पर उमूर्छित हो गयलन श्री राम जी व्याकुल हो गल और पता चलल कि एगो पर्वत बा जेकर में संजीवनी बूटी पावल जाला और हनुमान जी से गुजारिश करल गल कि चल तू उड़ेला त चल उ पर्वत में से गो ऐसन बूटी बा जेकर नाम है संजीवनी बूटी ऐसन औषधि है जेकर रस से लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था से बिल्कुल होश में चलाए ओकर जान बच जाए हनुमान जी बिना समय गवाए चल गए लन वहां पर पर्वत पर से संजीवनी बूटी ढूंढे पर ऊ नहीं जनलन कि कौन सा ओकर औषधि और संजीवनी बूटी रहल तब पूरा पर्वत उठा के चलाल अब हमने के बतावा ऊ पर्वत के नाम का रहल 402-808-5-70 पर बतावा कत सौदे का तो वैसा जिस पर जल्दी जल्दी हमने के बतावा कि जोन पर्वत हनुमान जी उठा के चल अलन ऊ पर्वत के नाम का रहल जल्दी जल्दी

0: कार के बाद
1: अभिदानन जी बिजन जी की आवाज में है प्रो है गानावा सुन ल रघुराम जी अयोध्या वेलन। और हमने सवाल कर ले रली सर कि कौन ऐसा नाम हो पर्वत के जिके श्री हनुमान जी उठा के चले लन क्योंकि मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण जी रलन युद्ध के बाद। और वो पर्वत के नाम है द्रोणगिरी पर्वत। जी हाँ, द्रोणगिरी पर्वत ही

सही जवाब और एक बार फिर सही जवाब दिलन मीनाक्षी जी बोबासैन से और साथ ही साथ मोचीदा से राधा जी जवाब दिलन देवी जी हाईलैंड से ग्रोंगुब से शमा जी और इंदिरा जी मोदाबिया से और शोभा जी एक बार फिर वाकवा से चला अपनी आगे बढ़ी लसा और तोहरा एगो प्रश्न पूछे के बखत चला बा और एगो कहा तो लोग जाने लजा कि 11 जुलाई है और विश्व भर में मनावल जाए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। हाँ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनावल जाए ई 1989 से लेकर अब तक मनावल जाता 1989 से पहला साल रहल ई विशेष दिवस मनावल रहल अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैसे बोली ल सर हमने के बहुत ही आसान सा प्रश्न हमारे ओर से तोहरा जवाब दे के परी 4028070 पर 4290 पर जवाब दिया और हमने के बताओ कि भोजपुरी में या फिर हिंदी में हम दिया जानी ला सकी तो लोग भोजपुरी भाषा या हिंदी भाषा बेहद ही पसंद करे ल जा तो चल हमनी के जल्दी जल्दी सोच के बताओ कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हिंदी या भोजपुरी में अनुवादित करो कर अनुवाद कर ट्रांसलेट कर हिंदी या भोजपुरी में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के का बोलब जल्दी जल्दी जवाब द तब तक ई बहुत ही सुंदर सा गाना सुन के हम

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: कलाकार की बात, कार की बात।
2: हाँ हाँ, धोखा देके कहाँ जाए बोला फ्रांस। कल तरह फ्रांस के जीत हो गल और तो सेमीफाइनल में चल गल। एक सवाल रहल कि वर्ल्ड पॉपुलेशन दे के हिंदी या भोजपुरी में का बोल ब, और सही जवाब है विश्व जनसंख्या दिवस। जी हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस, और एकर सही जवाब दिलन एक बार फिर घोंगुप से शामा जी। साथ ही साथ मौदालबिया से इंदिराज, एक बार फिर अमृता जी कानूत से भी जवाब दिलन, और हाईलैंड से देवी जी खूबे डूबकी गंगा में, बहती गंगा में डूबकी लगेलन। चला एगो और प्रश्न तोहर खातिर, रामायण पर हमनी प्रश्न कर ले रही सा, तो चला महाभारत की ओर बढ़ी सा। और महाभारत में एगो ऐसन राजकुमारी रहल, प्रिंसेस रहल, जेकर नाम रहल अम्बा। हाँ, अम्बा नाम के एगो प्रिंसेस रहल, जेके ठुकरा देलन भीष्म पितामह देवव्रत जी। कहे कि देवव्रत जी सौगन ले रलन कि जीते जी कभी वो शादी नर करियन, यही खातिर रानी अम्बा के ठुकरा दिले रलन, ओकर से शादी नहीं करे खुजलन। तो एकर से व्याकुल हो के अम्बा जी बहुत ही दुखी हो गल, और शिव भगवान से उगे वरदान मनलक कि अगले जन्म में भीष्म पितामह के मौत के कारण उही बनी। हमने के बताओ कि जब रानी महा राजकुमारी अम्बाजी फिर से जन्म लेलन, और कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भीष्म पितामह अर्जुन के साथ लड़ाई कर ले रलन, तो अम्बाजी अगर दूसरा रूप जोन रहल ई जन्म में हो जा खड़ा हो गएलन, तो ऊ नाम का रहल, ऊ वीर के का नाम रहल जेकर अगले जन्म में, पिछले जन्म में ऊ राजकुमारी अम्बारलन, त ई जन्म में कौन महावीर बन के आल और भीष्म पितामह के मौत के कारण बनल। हमने के बतावा 402-8070-4200 पर, और तब तक ई गाना सुन।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. कलाकार की बात, कार की बात।
1: जिले जिले जिले जिले उमेश डानू जी की आवाज में सुन ला। सचमुच बहुत ही तोहफा मिलल बा तोहरा है, जोन प्रेजेंट है, जोन तोहफा है, जोन वर्तमान है, के तोहरा छना जी भर के जिले के कल कोची हो के जानता। और हमने को प्रश्न पूछ ले रही सब महाभारत से निकाल गर प्रश्न कि राजकुमारी अम्बा प्रतिकार ले खतिर भीष्म से अगला जन्म ले लग तो ऊ के बनल, कौन नाम हो वीर के? और सही जवाब है शिखंडी, बिल्कुल। और शिखंडी ऐसा सही जवाब के देलन पुत्र देव जी जवाब देलन, राधा जी मोचीदास एक बार फिर, मीनाक्षी जी बोबासे से एक बार फिर जवाब देलन, और एक बार फिर मौदालबे से इंदिरा जी जवाब देलन। चल अगला प्रश्न तो हर खतीर तैयार हो गल बा। हमने एगो प्रश्न पूछ रहे रही सा एकर जनसंख्या के बारे में, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में। ऐसा आसान सवाल हम तोहर से पूछे जाब कि का बोली तोहरा।

दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है जेकर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बाते जनसंख्या बा ओकर नाम हमके बतावो तू आप हमके बतावो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जुन में जनसंख्या बा पॉपुलेशन बा उ देश के नाम का है 402-807-0 पर जवाब दिया 402-8070 पर इतना साधारण नंबर बा जल्दी से याद कर और हमनी के आप जवाब द जी

0: RM3 Radio. Radio.
1: कलाकार की बात. You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: मीरा मोहन जी की आवाज में सुन ले, जीने को तो जीते हैं सभी. और हमने के प्रश्न ही प्रकार रहे कि दुनिया में जो देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या बा, पॉपुलेशन बा, ओकर नाम का है. और सही जवाब है भारत. जी, भारत ही वो सही जवाब है. कोनो श्रोता बोलन कि नहीं चाइना है, लेकिन नहीं, लाशिन नहीं है, भारत है. काहे कि 2023 से 2023 से भारत चाइना के ओवरटेक कर देलक, सरपास कर देलक. और पहला ऐसा देश है जेकर में सबसे ज्यादा आबादी बा, वो भारत है. और सही जवाब देलन वीना त्यारूज से, वीना दीदी जी, विजय भाई क्लावेत से, राकेश जी कटरबोन से, मीनाक्षी जी बुबासें से, पुत्रदेव जी एक बार फिर मेबर्ग से, शोभा जी वाकवा से और इंदिरा जी मोदालबिया से सही जवाब देलन. चले रामायण पर एगो और प्रश्न हो जाए. तो लोग तो जाने लगा कि राजा दशरथ जुन रहल श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी के पिता श्री रलन. और राजा दशरथ के तीन तीन रानी रहल. तो जब युद्ध में राजा दशरथ जी जात रहलन तो कौन रानी ओकर साथ देवत रहलन युद्ध में? बहुत ही बहादुर रानी रहल उत. तो तीनों रानी में से कौन रानी राजा दशरथ के साथ साथ जात रहल युद्ध के मैदान पर उतरत रहल राजा दशरथ अपन पतिदेव के साथ? जवाब द 4028070 4028070. अभी तक प्रश्न समाप्त होल और फोन के त्रिंग त्रिंग तक करे लगल. का बोली तोहरा तो है गाना सुना पहले.

0: RM3 Radio. Radio.
1: कलाकार के बाद कार के बाद
2: श्रीमती निर्मला फरदौजी की आवाज में सुन लो भी कोनो दिन भात खाके सचमुच जिंदगी जो है जिए के चाहेला और मेहनत भी करे के चाहेला सब कुछ बैठल बैठल तो ना मिली और हमने सवाल कर ले रही सर कि जो राजा दशरथ जी लरन रामायण काल में ओकर तीन गो महारानी रहल तो उन तीनों महारानी में से कौन ऐसन रानी रहल जो कर साथ साथ जात रहल युद्ध में और ऊ रहलन रानी कैकेयी जी और सही जवाब देलन मोचिदा से राधा जी विजय भाई क्लाबित से बास्तोपुर से वीना जी त्यागूज से अमृता जी कानुत से जीवंती जी बिलवेदिया से शमा जी घोंगुप से मीनाक्षी जी बोबासे से और इंदिरा जी मौदालबेया से ऐसन संख्या में तू जवाब देवत हुआ इतना ज्यादा संख्या में भाग लेवत हुआ हमर त मन गदगद हो गल चला एगो अंतिम प्रश्न तोहर खातिर रखल गए बा बहुत ही आसान बा हमनी अभी बात कर ले रही सा कि भारत जो ना ई देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा आबादी ही देश में है 1.47 बिलियन से लेकर 1.48 बिलियन तक का यानी 140 करोड़ के से जस्ती 140 करोड़ से जस्ती आबादी बा भारत में तो 1 बिलियन जो ना ओकर में कितना जीरो बा कितना शून्य बा गण के बतावा ये गो गणित विज्ञान के प्रश्न है मैथमेटिक्स जो हम जानीला कि तो लोग मैथमेटिक्स के बेहद पसंद करेला जा जैसे कि 1000 में 3 जीरो बा 10000 में 4 जीरो बा और 1 मिलियन में 6 जीरो बा तो हमने के बतावो कि कितना शून्य बा 1 बिलियन में फ्रेंच में बोली लसा 1 मिलियार्ड इंग्लिश में बोली लसा 1 बिलियन एकर में कितना जीरो बा जल्दी जल्दी नंबर वा मिला हुआ 4 02 8 0 7 0 और है गाना सुना

0: सरकार के बाद
1: कलाकार के बाद रोशन के साथ आज अफसोस की बात बाकी कलाकार नहीं आल हुआ परंतु तो लोग तब बढ़िया कलाकार निकल गए ऐसा प्रश्न की सही सही जवाब देके और अंतिम प्रश्न ही प्रकार रहल मैथमेटिक्स पर गणित विज्ञान पर 1 बिलियन में कितना शून्य बा और सही जवाब है 9 शून्य 9 जीरोज और सही जवाब देलन इंदिरा जी मोदालबिया से अमृता जी कानूत से शोभा जी वाकवा से रोशनो से मालिनी जी पहली बार के लिए और साथ ही साथ संध्या जी पोइंटोपिमो से बुबासे से मनशिनी जी और बुबासे से ही मीनाक्षी जी और 1 बिलियन के बोलल जला 1000 मिलियन यानी 1 मिलियन में 6 जीरो बा और 1000 में 3 जीरो कुल मिला के 9 जीरो हो जला और बन जला 1 बिलियन और इसी के साथ समाप्त होता है आज के जो कलाकार के बाद प्रोग्राम है तो लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से साथ देला जा जवाब देला हमने के प्रश्न के गाना भी सुन ल भोजपुरी में बात भी कर ल एकर से जस्ती हमनी के का चाहेला गलबा एकदम झकास काहे कि तो लोग होवा सा हमर लिए बड़ा ही खास तो चल हमनी के मुलाकात कल होई खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में एएम टू रेडियो मॉरिशस के लहर पर होजा पर भी प्रश्न के बौछार होई और स्पेशल वर्ल्ड कप भी तो होई तो हर लोग तो लोग खतीर तो चला 5:58 हो गल बा 6 बजे तो लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुन बजा लेकिन जाते जाते वादा करिए कि कोनो प्रकार के तो लोग स्पोर्ट्स करिए जा व्यायाम करिए चाहे वो जुम्बा ही क्यों न होई नमस्कार और शुभ रात्रि आप लोगन के

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: इस समकालीन बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले पेश आज की सुर्खियां। पेंशन सुधार पर गठित एक्सपर्ट्स कमेटी की अध्यक्ष या सदस्यों के कामकाज में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पाया जाता, न ही वास्तव में और न ही अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रसभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। 2025 की चीनी की फसल के लिए खेतीहरों और कारखानों के मालिकों को चीनी के लिए दी जाने वाली कीमत 24,095 रुपए प्रति टन तय। मॉरिशन शक्कर के व्यापार के जिम्मेदार शुगर सिंडिकेट के अनुसार इस गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी का ज्यादा उत्पादन माना जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार यौन दुराचार के हर 3 पीड़ितों में से 2 की उम्र 16 साल से कम। ये आंकड़े याद दिलाते हैं कि सबसे कम उम्र के बच्चे ही मुख्य रूप से इसका शिकार होते हैं। विदेश में दक्षिण पूर्वी चीन में जूतों के एक कारखाने में भीषण आग, कम से कम 28 लोगों की मौत। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस हादसे के पीछे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने का आदेश दिया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब पेश समाचार विस्तार से। पेंशन सुधार पर गठित एक्सपर्ट्स कमेटी के अध्यक्ष या सदस्यों के कामकाज में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पाया जाता, ना ही वास्तव में और ना अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रसभा में विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ये बात कही। उन्होंने एक बार फिर इन पेशेवरों के लिए अपना अटूट समर्थन दोहराया। उनको सुनते हैं।
2: I'm informed that Quantum Insurance Limited is licensed to transact only in short-term general insurance. This is not a subject related to pension reform. As such, there is no conflict of interest, actual or perceived, for serving as chairperson of the Commission of Experts. When we returned back into government, we could not leave the NPF and the NSF, which have together more than 200 billion rupees of assets, without professional advice regarding investment. That is why the Minister of Finance proceeded with a tender exercise for investment advisory services, and Actuarics was awarded the contract on the 28th of April 2026 for an initial period of 1 year, renewable for a further period of 1 year for an amount of 3.8 million rupees. There were, I should add, 5 bidders that participated in the tender exercise. Being an advisor to the investment committee on investment does not constitute a conflict of interest in advising on pension reform. It is ironical that the sole representative of a party which has the unenviable record of having introduced the concept of institutional nepotism and turned Mauritius into a model of abject cronyism is now asking questions about conflict of interest, ethics and good governance. I'm tempted

0: Mauritius and the State Bank were deeply involved in cases of conflict of interest and incestuous relationships. Vous savez, Madame la Présidente, ces fossoyeurs de la bonne gouvernance veulent aujourd'hui se faire refaire une virginité by attacking professionals who are recognized as such both nationally and internationally. We must ask ourselves, Madam Speaker, if this is yet not another attempt to deviate attention from the decade of corrupt and despicable practices that sullied the reputation of our country on the international front. Or could it be simply a case of selective political amnesia or trying to challenge the collective intelligence of this nation? Madam Speaker, the systemic attacks on the Commission of Experts smacks of demagogy and pettiness. The campaign of innuendos and hitting below the belt demonstrates the level of chief politics that some people in the opposition are willing to stoop to present themselves as the neo paragons of good governance, transparency, and moral authority of this country. These people do not seem to realize that this vile campaign is belittling top-notch professionals who we badly need for this country to take it to a new level of development. I once again, Madam Speaker, want to restate my unflinching support to such professionals.
1: 2025 की चीनी की फसल के लिए सिंडिकेट प्राइस यानी खेतीहरों और कारखाने के मालिकों को चीनी के लिए दी जाने वाली कीमत 24,095 रुपए प्रति टन तय की गई है। नॉर्शन शक्कर के व्यापार के जिम्मेदार शुगर सिंडिकेट के अनुसार इस गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी का ज़्यादा उत्पादन माना जा रहा है। पुलिस विभाग में रिक्रूटमेंट प्रक्रिया चलाई जा रही है। जो लोग भर्ती होने की इच्छा रखते हैं वे सोमवार 13 जुलाई तक अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। इस साल एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा रहा है। सिलेक्शन के नियमों को में हल्की ढील दी गई है, खासकर फिजिकल और अकादमिक आवश्यकताओं के मामले में। इसके साथ ही शुरुआती वेतन भी बढ़ाया जा रहा है। चलिए आज हम पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग पर एक रिपोर्ट आपको पेश कराने जा रहे हैं। हमारी एक टीम ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का दौरा किया।
2: पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पुलिस ट्रेनियों की सुबह 5 बजे शुरू होती हैं और लगभग 17 घंटे बाद यानी रात के 10 बजे जाकर समाप्त होती हैं। ये उनकी रोज़ की ज़िंदगी हैं। हफ्ते में 5 दिन शारीरिक ट्रेनिंग, टैक्टिकल एक्सरसाइजेस और थ्योरी क्लासेस के बीच उनका दिन काफ़ी व्यस्त और चुनौतीपूर्ण रहता है। वे पूरी लगन के साथ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में हिस्सा लेते हैं। ट्रेनी वुमन पुलिस कांस्टेबल बीबी स्वालिहा हिम्मत कहती हैं, मैंने ये पेशा इसलिए चुना ताकि मैं लोगों को न्याय दिलाने में मदद कर सकूं। ट्रेनिंग के पहले 6 महीने पूरे होने के बाद उनको विभिन्न विशेष इकाइयों में रोटेशन पर भेजा जाता है, जिनमें स्पेशल मोबाइल फोर्स, स्पेशल सपोर्टिंग यूनिट और नेशनल कोस्ट गार्ड शामिल हैं। ज़कारिया तूफान कहते हैं, सबसे पहले स्पेशल मोबाइल फोर्स में मैंने ट्रेनिंग पाई और अब बोबासन के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में देश के कानून पर जानकारी पा रहा हूँ। यहाँ कई लीडरशिप स्किल्स सीखे हैं, आत्मविश्वास भी बढ़ा है। ट्रेनिंग कई चरणों में होती है। पहला चरण 9 महीने तक चलता है, जिसमें भर्ती जवान थ्योरी की पढ़ाई और मैदान में व्यावहारिक प्रशिक्षण के बीच अदला बदली करते हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में SP सदानंद टोकोगी कहते हैं, इस प्रशिक्षण के बाद वे पुलिस स्टेशन में जाते हैं। 1 महीने के दौरान वे काम की वास्तविकता को जानते हैं, शिफ्ट पर काम करते हैं और ट्रेनिंग का समापन एक अंतिम परीक्षा से होता है। इस साल 367 लोगों ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में प्रवेश लिया है, जिनमें 117 महिलाएं और 112 रोडवेज से हैं। उम्मीदवारों के चयन के बाद हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। दिन ब दिन इनकी संख्या कम हो रही है। साथ ही नए पुलिस भर्ती अभियान के लिए आवेदन की भी मांग की गई है। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। अन्य बदलावों में शारीरिक मानकों में ढील दी गई है। पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई अब 1.68 मीटर कर दी गई है और महिलाओं के लिए 1.61 मीटर। एक और अन्य बदलाव ये है कि अब शरीर के किसी दिखाई देने वाले हिस्से पर टैटू की अनुमति होगी, बशर्ते कि ये आपत्तिजनक या आक्रामक न हो। शुरुआती वेतन अब 27

0: ₹25,905 प्रति महीने कर दिया गया है। रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के पास अपना आवेदन भेजने के लिए सोमवार 13 जुलाई तक का समय है।
1: चीन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाय की अहम भूमिका है और लोग दिन भर चाय का सेवन करते हैं। ये एक आम उपभोग से बढ़कर एक रीति रिवाज की तरह है। चीन से चाय की कला के कुछ माहिर मॉरिशस आए हुए थे। इस परंपरा को आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में उन्होंने मॉरिशनों के बीच इस संस्कृति की विशेषताएँ बाँटी। सुनिए।
0: चाय समारोह यानी टी सेरेमनी की शुरुआत चीन में सोंग वंश के दौरान आज से 1000 साल से भी ज्यादा समय पहले हुई थी। इस समारोह की बारीकियों में निपुणता हासिल करने के लिए सालों की प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ताकि सबसे बेहतरीन सुगंध और स्वाद निकाला जा सके। इसके लिए पानी के तापमान, चाय को पकने के समय और चाय डालने की विधि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सिर्फ एक पेय पदार्थ से कहीं बढ़कर चाय ज्ञान, सम्मान और सामंजस्य का प्रतीक है। चाय बनाने की कला की एम्बेसडर वांग फेई कहती हैं, चाय बनाने के लिए तैयारी और इसके सेवन के कई लाभ होते हैं। जो व्यक्ति चाय बनाता है उसे बहुत ध्यान देना चाहिए और इसका सेवन करने वाले को भी। चीन की एक और प्रसिद्ध मंच कला है मास्क बदलने की कला। सिचुआन के ओपेरा आर्टिस्ट वांग पान पान कहते हैं, मास्क बदलने का मंचन चाय कला से सीधे तौर से जुड़ा हुआ है। हर एक मास्क व्यक्ति की विभिन्न भावनाओं को दर्शाता है। ये खुशहाली फैलाने का एक अच्छा साधन भी है। इस समारोह में उपस्थित चीन की राजदूत वांग शिफांग ने चाय के प्रति मॉरिशस और चीन के प्रेम को उजागर किया। इस शाम का एक और मुख्य आकर्षण था सिचुआन के कलाकारों का प्रदर्शन, जिन्होंने चाय की फसल के समय चाय उगाने वाले किसानों की खुशी को दर्शाया।
1: मॉरिशस में बच्चों के साथ यौन हिंसा और यौन शोषण एक चिंताजनक वास्तविकता बनी हुई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार हर 3 पीड़ितों में से लगभग 2 की उम्र 16 साल के कम की है। ये आंकड़े याद दिलाते हैं कि सबसे कम उम्र के बच्चे ही मुख्य रूप से इसका शिकार होते हैं, इसीलिए सभी का सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। 1.5 साल तक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के बाद लिनियो मोरिस फिर से वापसी कर रहा है। पार्टी के नेताओं ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू करने की घोषणा करने के लिए इस शुक्रवार को एबेन के निसीपाक होटल में प्रेस से मुलाकात की। इस दौरान देश के हालत पर भी चर्चा की गई। और स्थानीय स्तर पर ही आज लगे प्रेस सम्मेलन के दौरान समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने पेंशन प्रणाली में सुधार पर ज़्यादा स्पष्टीकरण दिए। उन्होंने कहा कि 60 साल की उम्र वालों का पेंशन बरकरार रखा जा रहा है, उसे रोकने का सवाल खड़ा नहीं होता। 60 साल के हर एक व्यक्ति को पेंशन मिलेगा, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ। इसके अलावा मॉरिशस पेंशन फंड भी वापस कायम किया जा रहा है, जिसे अब MPF 2.0 से जाना जाएगा। विदेश की खबरों में दक्षिण पूर्वी चीन में जूते के एक कारखाने में भीषण आग लग गई। कम से कम 28 लोगों की मौत हुई है। आग पर काबू करने के लिए 500 से ज्यादा दमकल कर्मी तैनात हुए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस हादसे के पीछे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने के आदेश दिए हैं। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: चीन के दक्षिण पूर्वी इलाके में जूते के कारखाने में आग लगने से कम 28 लोग मारे गए। फुजियान प्रदेश में जिनजियांग के हुईटेंग कारखाने में ये हादसा पेश आया। अधिकारियों के मुताबिक दिन के करीब 12 बजे आग लगी। राहत कार्रवाई के लिए 500 से अधिक दमकल कर्मियों को तैनात किया गया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वहां फंसे लोगों को बचाने के लिए सभी साधन तैनात कर दिए। साथ में हादसे के कारणों का भी पता लगाने के लिए आदेश दिए गए। कई घंटों के अथक प्रयासों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे के वक्त स्थल पर 237 कामगार थे और अन्य दो लोग। कुल 213 लोगों को हटाया गया। इनमें से दो की मृत्यु अस्पताल में हुई, जबकि लापता 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिससे कि मृतकों की संख्या 28 तक पहुंच गई। कंपनी के उच्चाधिकारी तथा इस मामले में संलग्न अन्य लोगों के साथ पूछताछ की गई और कंपनी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। अधिकारियों की ओर से दुर्घटना की परिस्थितियों का पता लगाने के वास्ते जांच शुरू की गई।
1: फुटबॉल की बात करते हैं। स्पेन और बेल्जियम के बीच का मैच आज रात 11 बजे से शुरू होगा। इसका सीधा प्रसारण एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर होगा और स्पोर्ट्स डेस्क की तरफ से इससे पूर्व रात 9:30 बजे से एक विशेष प्रोग्राम पेश किया जाएगा। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: स्पेन की टीम ने अब तक कमाल किया है। ग्रुप एच में पहला स्थान लिया, ये तो मामूली बात थी, लेकिन अभी तक एक गोल भी किसी ने उस पर स्कोर नहीं किया, ये एक रिकॉर्ड है। स्पेन ने अपना पहला मैच ड्रॉ किया था, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया था बेस्ट ऑफ 16 में और पोर्टुगल को एलिमिनेट किया था 1-0 से। ये लोग आगे जाना चाहते हैं, लेकिन इनके रास्ते में बेल्जियम होगा और गोलकीपर जो है उनई साइमन अभी तक रिकॉर्ड बना चुका है और वो इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगा। 609 मिनट हो गए जब से उस पर गोल स्कोर नहीं किया गया है इस वर्ल्ड कप में। तो अब देखना है लाहौर कितना आगे जाएगा और बेल्जियम की टीम जो है इसमें अनुभवी खिलाड़ी है, अपने ग्रुप में ग्रुप जी में पहले स्थान पर आए थे और जाबलो रूज सेनेगल को 3-2 से हरा पाए थे और अंतिम मैच में यूएसए को हरा पाए थे 4-1 से। धीरे धीरे इस टीम ने रफ्तार पकड़ा है और अब रिगासिया की टीम में जो अनुभवी खिलाड़ी है उनको दिखाना है गोल्डन जेनरेशन, ऐसे ही उनको नहीं कहा जाता, कुछ साबित करके दिखाएंगे कि ये जेनरेशन वर्ल्ड कप जीत सकता है। इसीलिए लाहौर के लिए आसान मैच नहीं होगा। ये मैच आज 11 बजे खेला जाएगा। इससे पहले एमबीसी स्पोर्ट्स डेस्क की ओर से एक स्पेशल प्रोग्राम एन रूट वेर न्यूयॉर्क।
1: फ्रांस के रेगुलर टाइम में मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल्स में जगह बनाई। मैच का फाइनल स्कोर 2-0 रहा। सेकंड हाफ में किलियान एम्बापे और उस्मानी देम्बेले ने मोरक्को के दफे के को भेद कर फ्रेंच टीम के लिए लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की की। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: बड़े बड़े मैचों में बड़े बड़े खिलाड़ियों द्वारा पेनाल्टी मिस करना अब आम बात हो गई है। मेसी ने पेनाल्टी मिस की और यहाँ पर किलियान एम्बापे भी पेनाल्टी स्कोर करने में नाकाम रहा, लेकिन इसके बाद जो ये लोग करते हैं अपनी टीम को जितवाते हैं। किलियान एम्बापे फ्रांस का टॉप स्कोरर सेकंड हाफ में आकर अपना पहला गोल स्कोर करता है। बुनू जो गोलकीपर है उसने बहुत कोशिश की, इस वक्त तक उसने अपनी टीम को संभाल के रखा था, लेकिन कितना बच पाता एम्बापे के सामने।
4: Jouer une demi-finale de Coupe du Monde, c'est exceptionnel. C'est la troisième de suite avec l'équipe de France depuis que je suis en sélection. Et voilà, je suis très heureux de cette qualification. Alors on savait que le Maroc c'était un match difficile. On a avec des joueurs de qualité, mais on est resté concentré dans ce match. Même après le penalty loupé, on a voulu rester concentré. Voilà, on est heureux de cette qualification.
3: Mbappé qui est goal que bad, thori der bad Dembélé goal score karta hai. ये एम्बापे के पास पर एम्बापे के असिस्ट काफी है, गोल्डन बूट के लिए ये काम आएगा क्योंकि वो अभी लियोनेल मेसी के बराबर है 8 गोल के साथ।
5: On est en demi-finale, on est très content, il y a encore un long chemin et on est conscient que ce qui nous attend est encore plus dur que ce qu'on a passé mais on est prêt à tout affronter et on va tranquillement récupérer.
3: वर्ल्ड कप के फाइनल्स में डिडिये देशांस 20 मैच जीत चुका है ले ब्लू के साथ 25 मैचों में और इस बार कोच के रूप में चैंपियन बनना चाहेगा।
6: C'est trois consécutives, donc déjà ça c'est bien, mais ça semble logique et naturel, mais il faut y arriver.
7: évidemment, j'ai des super joueurs, autrement on n'arrive pas là, mais c'est bien, c'était compliqué, parce que aujourd'hui, en ratant le pénalty, les occasions qu'on ne met pas, mais bon, quand c'est Kylian, pas de souci, il ne doute jamais, même s'il a eu une occasion avant de marquer aussi, donc c'est super.

0: est là où on voulait être.
1: लेकिन आगे चलकर उसके रास्ते में कौन होगा, स्पेन या बेल्जियम, ये आज रात को पता चलेगा।
2: चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की सी सामान्य हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, कल दिन के दौरान धूप खिली रहेगी, हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर कल दोपहर बाद से। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 15 से 17, अधिकतम 20 से 24, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 7:45 बजे, शाम को सूर्यास्त 5:44 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर डोमिनिक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। रॉय रोड एनएस फ्लोरेंस में तिरसठ साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री जयराम सिंह बृहस्पतिया की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान रॉय रोड एनएस फ्लोरेंस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। कॉम्बे लैंड ग्लेन पॉगवाक्वा में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री अनंद हरिलाल जो विदान के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे रागेश अनंद के मकान कॉम्बे लैंड ग्लेन पॉगवाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामामेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। न्यू रोड होशनुआ में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मराज हरलोल जो धर्म के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनकी पत्नी माला हलुल के मकान न्यू रोड होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। कालीमाई पालमाकाथोबोन में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री जसोनाथ भैरू जो चिबाई के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पूर्व सीएनटी के पूर्व ड्राइवर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी रविवार को दिन के एक बजे उनके मकान कालीमाई पालमा काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामामेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन संडे एट 1 PM। Avenue de l'Espérance Piton में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शांति देवी शंभू पैदाशी नाम बद्री और जो बसंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके बेटे रामचंद शंभू के मकान एवेन्यू डे डोल एस्पेरेंस पीटों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। क्रिमेशन रोड होशनुआ में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री अभिमन्यु इमामजी जो राम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल

दिन के 11 बजे उनके रिश्तेदार अनिल कपूर पादियाची के मकान क्रिमेशन रोड रोशनौ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। वाल्टो मुताइलोंग में 62 साल के 62 years old के श्री सत्यानंद इत्वाहा जो अजीत के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी बबीता इत्वाहा के मकान वाल्टो मुताइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौ शांति अरूज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। मोसेलमान बुले रूज फ्लैक में विनर्स सुपरमार्केट के पीछे मोसेलमान बुले रूज फ्लैक में विनर्स सुपरमार्केट के पीछे 69 years old के श्री करण गजाधर जो सुरतम और पेपे के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे पहले गांधी रोड लाल माटी रहा करते थे और पूर्व कपरल थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनके मकान मोसेलमा बुले रूज फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। नंबर नौ मोसेलमा माउंट पॉम्पलमुस में 80 साल के 80 years old के श्री प्रेमानंदा मंगापति जो नंदो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी रविवार को सुबह 9 बजे उनके मकान नंबर 9 मोसेलमा माउंट पॉम्पलमुस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन ऑन संडे एट 9 AM। रॉयल रोड खेफगया में 66 साल की 66 years old की श्रीमती मेधा धनु पैदाशी नाम बर्टन और जो मेधा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और फॉर्मर एक्टिंग डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ एसोसिएशंस थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति सामराज सिंह धनु के मकान रॉयल रोड खैफगया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। काली लेन बॉम्बू में 74 साल के 74 years old के श्री धनीलाल पुराहू जो ज्ञान के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके मकान काली लेन बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 PM। आले भैयों वाकवा में 85 साल की 85 years old की श्रीमती सुभावती पैसान पैदाशी नाम शिवनाथ और जो साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे लाशा पेलोदों डेलियन सन्स रॉयल रोड बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले ब्रियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। नंबर 21 एवेन्यू लुवे कैथरबोन में 87 साल की 87 years old की श्रीमती वार्ता कुमारी गुराना पैदाशी नाम वेंकिया और जो दीवा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उनके मकान नंबर 21 एवेन्यू लुवे कैथरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा कैथरबोन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। कोंकारोल केन्या में 64 साल की 64 years old की श्रीमती मानती नायको पैदाशी नाम से प्रसाद और जो नंदा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके मकान कोंकारोल केन्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 9:00 PM।
Montecchio Road, Riambel में

टोक्यो रोड रियांबेल में 60 साल की 60 इयर्स ओल्ड की श्रीमती सुभावती दुखराज, श्रीमती सुभावती दुखराज की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके पिता ज्ञानी दुखराज के मकान मोटोक्यो रोड रियांबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9 AM। पायोंके रोड मोसेलमों सेंट अंतोन गुडलैंड्स में, पायोंके रोड मोसेलमों सेंट अंतोन गुडलैंड्स में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जगवंती राजकुमार, श्रीमती जगवंती राजकुमार पैदाशी नाम जुदवा और जो इंद्रानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे विमल राजकुमार के मकान पायोंके रोड मोसेलमों सेंट अंतोन गुडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: नमस्कार, शाम के 6:30 बजे हैं। हमारा आपका साथ रेडियो मनोरंजन पर हो रहा है। रेडियो मनोरंजन पर आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। अभी आप सुनेंगे हमारा प्रोग्राम नई सोच, और नई सोच कार्यक्रम हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, बस इस उम्मीद में कि आपका मन शांत होगा, आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और आज की शाम भी बहुत अच्छे से, बहुत ही सफलता के साथ गुजरेगी। सो हम हैं सुरेखा, लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो प्रोग्राम जिसे सुनकर दिमाग में, मन में अच्छे विचार आएंगे।
1: नई सोच
0: कार्यक्रम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। जहां भी होंगे आप खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और हंसना मुस्कुराना औरों को भी सिखाएंगे, यही हमारी उम्मीद है। चलिए ज़रा हम गाते हैं, ज़रा हम मुस्कुराते हैं, औरों को मुस्कुराने के बहाने ढूंढ के दिया करते हैं। किशोर कुमार की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला लीजिए। मनहर और किशोर कुमार की आवाज़ें आप प्रोफेसर प्यारेलाल फिल्म में सुनिएगा।

जमाने से क्यों मांगे उधार हम वो घड़ी जिसमें मुस्कुराहट ला दे हम। चलिए अपने मन से मुस्कुराएं, औरों को मुस्कुराने के बहाने दे जाएं। सभी को मिलते हैं गम इस ज़माने में, पर इन गमों को लेकर हम आगे कैसे बढ़ें। चलिए इन गमों को खुशी में ढालने के प्रयत्न करें हम। हरिहरन की आवाज़ आपके नाम।

जिंदगी की राहें होती है खूबसूरत, बस उसकी खूबसूरती आप ढूंढ लीजिएगा। कहीं दूर से नजर आए आपको कोई भी तकलीफ की बातें, तकलीफ के पल, तो तकलीफ के पलों को भुलाने की कोशिश कीजिएगा, उन्हें बहुत ही हंसी पलों में ढालने की कोशिश कीजिएगा।

चलिए बस ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं सारी बातें। जब भी खुशी देनी होती है ऊपर वाला दे ही देता है, जब भी गम देना होता है देकर हमारी परीक्षा ज़रूर लेता है। तो चलिए हम हर बात को स्वीकार करें ऊपर वाले की देन मानकर।

बेशक ना कल का पता ना अब का पता कब क्या हो जाए किसी के हाथों में होता नहीं है। चलिए जरा हम हाथों की लकीरों के बारे में सोचते हैं। इन लकीरों में जो लिखा होता है वही होता है, फिर हमें इनसे जूझने की हिम्मत क्यों ना बटोरनी है। ज़रूर बटोर के रखिएगा वो हिम्मत जिसके ज़रिए आप अपने जीवन को सुनहरा बना सकते हैं।

मुकद्दर का बादशाह मूवी का ये गाना है और इस गाने को हम माफ़ कीजिए मुकद्दर का फैसला मूवी का ये गाना है और इस गाने को हम सुनते सुनते यहाँ पर नई सोच कार्यक्रम का वक्त पूरा करेंगे। इनफैक्ट 7 बजने वाले हैं, 7 बजने में 6 मिनट बाकी हैं, ठीक 7 बजे हमारा नई सोच कार्यक्रम समाप्त होगा और लेकर आएंगे आपके लिए दिलों की आवाज़।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस,
1: डोंट मिस इट। आइए जानते हैं MBC प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले MBC प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा TV सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
2: You're listening to RM3 Radio Mana.

आपकी शांत हो, दिल आपका बहुत ही खुश हो, ये दुआ करते हैं। और इसी दुआ के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए दिलों की आवाज़, और आपके दिलों की आवाज़ हम सुनेंगे 5250-6200 पर आपके मैसेजेस के ज़रिए, और 4028070 पर आपके कॉल्स के ज़रिए। आप जहाँ भी होंगे या तो मैसेज भेजिएगा हमको या फिर कॉल कीजिएगा। हमें सुरेखा साथ आपका दे रहे हैं, आपका हुक्म सर आँखों पे, आप जो गाना मांग रहे हैं वो गाना हम आप तक पहुँचाएँगे ज़रूर। चलिए आप लोगों के कॉल्स और आप लोगों के मैसेजेस आने तो शुरू हो ही चुके हैं। प्रियोले के सूरज शर्मा सजादा जी हमारा साथ दे रहे हैं, उनका कहना है कि वे हमारे शो को बहुत ही प्यार से सुन रहे हैं, सो बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी। और इधर सचिन जी हमारा साथ दे रहे हैं, सचिन जी पॉपले मुझ से हमारा साथ दे रहे हैं, और उन्होंने सुनना चाहा है राम जाने मूवी का ये गाना।

चलिए जरा हम भी चलते हैं इस सफर में, हम सफर बन जाते हैं, बन के हम सफर, इस सफर में हम थोड़े गाने सुन जाते हैं, गाने वो जो आप मांगेंगे, गाने वे जो आपके दिल को लुभा जाएंगे। तो चलिए जरा हम पेश करते हैं फूल मूवी का ये गाना, और फूल मूवी का ये गीत हमसे मांग रही है, सुनना चाह रही है अनीता जी, जो रहती है अफ्रीका ऑफ लक। अनीता जी ने इस गाने की फरमाइश अपने पूरे परिवार के लिए, अपने सभी फ्रेंड्स के लिए की है, और हमारे सभी सुनने वालों के लिए उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें सुनिएगा।

सलामी देने वालों को सलाम हम भी कहेंगे क्योंकि सलाम कह के ही तो हम आप लोगों के साथ बैठेंगे इस महफिल में शामिल रहेंगे। वैसे जहां भी होंगे आप हमारी इस महफिल में आप भी एक हाय हेलो ज़रूर भेज दीजिएगा 5250620 पर मैसेजेस के ज़रिए और 4028070 पर कॉल के ज़रिए। तो चलिए ज़रा हम पेश करते हैं आप लोगों के लिए दिल ने फिर याद किया मूवी का एक गाना और ये गाना आप सुनिएगा सोनू निगम की आवाज़ में और सोनू निगम के साथ साथ इस गाने को आप अलका याग्निक की आवाज़ में सुन पाएंगे। चलिए ज़रा कल्याणी जी की पसंद का ये गाना हम पेश करते हैं उनके पूरे परिवार के लिए और हमारे सभी सुनने वालों के लिए।

तो बस चलते चलिए, इस राह में ये वो राह है जिसमें हमें फरमाइशों का सिलसिला मिल रहा है, और इस सिलसिले में हम जो पेश करेंगे वो होगा किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों का गाना, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं फिल्म जवानी दीवानी से लिया गया। जवानी दीवानी मूवी का ये गाना हम पेश करेंगे विशाल सूरज की तरह से। सूरज जी आपका नाम हम भूले भूले से जा रहे हैं, इनफैक्ट आप अपने मैसेजेस जब भेजेंगे तो कम से कम अपना नाम इसमें डाल दीजिएगा, हमें पता होता है आप ही का मैसेज है, पर नाम देखा हमने कंफ्यूज कर लिया इससे। चलिए ज़रा सूरज जी की तरफ से ये गाना हम पेश कर रहे हैं हमारी सखियों के लिए, हंसिनी नितिशा पूनम के लिए, और सूरज जी अपने बेटे विशाल और पूरे मिसे सर परिवार के नाम कर रहे हैं जो तखियले के रहने वाले हैं। तो चलिए जवानी दीवानी मूवी का ये गाना हम ढूंढते ढूंढते लेकर आए हैं आपके।

तो चलिए हम आशा भोसले की आवाज़ सुनते हैं किशोर कुमार के साथ मैं सुंदर हूँ मूवी का ये गाना है और ये वो गाना है जो आशा भोसले की आवाज़ में है हमारे डाई हार्ड फैन के लिए हमारे

नहीं आशा जी के डायोड फैन के लिए, ये है नवीन जी मोताई ब्लॉश की, जब भी फरमाइश करते हैं आशा भोसले की आवाज़ के गाने की फरमाइश करते हैं, तो चलिए ये गाना आपके नाम करते हैं नवीन जी, इंजॉय कीजिएगा इसे।

7:40 हुए हैं, हमारा आपका साथ है रिदम मनोरंजन पर। मनोरंजन आपका भली प्रकार से तो हो ही रहा होगा क्योंकि हमारे श्रोता चुन-चुन के ला रहे हैं हमारे लिए गाने। बस चलिए, हमारे श्रोताओं की पसंद के गानों में शामिल श्वेनल जी की पसंद भी है। श्वेनल जी ने मांगा है फिल्म सैनिक का गाना। उन्होंने भैया श्रवण, भाभी कृति, अभिनव, कियान, नाव्या और पूरे तिलक फैमिली के लिए मांगा है ये गाना। और आंतिश रामशरण जी के लिए मांगा है जो स्विट्जरलैंड से हमारा साथ दे रहे हैं। वेलकम टू द शो आंतिश जी।

0: RM3 Radio.
1: RM3 है ये रेडियो मनोरंजन का ये सिलसिला है, सिलसिला आप तक पहुंचा रहे हैं और फ्राइडे इवनिंग आप लोगों के लिए प्यारे ऐसे गाने जो आपके फ्राइडे इवनिंग को बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब बना डालेंगे। चलिए ज़रा सुदेवी जी की पसंद का गाना पेश करते हैं। वाकवा से सुदेवी जी ने दीदी ललिता के नाम किया है ये अगला गाना। ललिता जी और उनके परिवार, कुशल परिवार जो थ्रियोले के रहने वाले हैं, आत्माराम भैया के लिए दीदी सुनीता, शोभा, देविना और मालेंगा के राम रतन परिवार के लिए। चलिए सुनते हैं ये गाना, ये है सैनिक मूवी का गीत।

जो भी करना हो अपने दिल से पूछ के कीजिए, दिल तो दिल है भाई, इन दिल की बातों को आप जरूर अपने दिमाग से बांध लीजिएगा। लता मंगेशकर की आवाज़, चलिए सुनते हैं इस बार मुकद्दर का सिकंदर मूवी का ये गाना है, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं शीला जी की पसंद का। शीला जी ने बुन मै से इस गाने की फरमाइश की है अपनी बेटी लूसी के लिए और बुन मै के पूरे माकुना परिवार के लिए।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चलिए जरा उस तमन्ना की बातें सुनते हैं, उन तमन्नाओं के बारे में सुनते हैं जो सलामी मूवी में कुमार सानू अलका याग्निक अपनी आवाज़ों में सुना रहे हैं। और ये गाना हम सुनवा रहे हैं उनको जो अक्सर सुनाया करते हैं गाना हम सबको, जी हाँ, गिरीश हरलोल। गिरीश हरलोल जी ने इस गाने की फरमाइश की है और बड़े ही अदब के साथ, बड़ी ही पोलाइटनेस के साथ उन्होंने ये गाना मांगा है। सो ये गाना आपके नाम गिरीश जी, बहुत ही खुशी हो रही है आपको गाना सुनवा कर।

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: कभी सोचा है
0: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस,
0: डोंट मिस इट।
2: तो बस आप जरूर इस माइक के सामने आने का प्रबंध कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा, आप देखिएगा।

8:10 हुए हैं हमारा आपका साथ 9 बजे तक है दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में और इसके बाद हम आपके साथ मिलेंगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में। फिलहाल तो जो गाना हम आपको सुनवाएंगे आई मिलन की बेला मूवी का ये गाना है। ये गाना हम पेश कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में और ये वो गाना है जिसे हम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी सुनेंगे और ललिता जी ने इस गाने की फरमाइश की है त्रियोले से। उन्होंने अपनी बहनों के नाम किया है ये गाना, सुदेवी जी, ज्ञानी जी, देवीना जी और छोटी जी प्रभावती जी के नाम। हरीश जी के नाम उन्होंने ये गीत किया है, आत्माराम जी के नाम, शुक्लाल मौसी, माला राम जावन और खुशनुआ की उमा गुरपिन जी के नाम।

चलिए दिलों की आवाज में हम पेश करते हैं गुलशन जी की आवाज़, और गुलशन जी ने मांगा है गाना हम आपके दिल में रहते हैं, मूवी से लिया गया ये वो गाना है जो वे अपनी मामा प्रभा के नाम, बहन दीक्षिता के नाम और आयशा के नाम तथा पूरे भोला परिवार के नाम कर रहे हैं और हमारी सखी हंसिनी के नाम कर रहे हैं। चलिए ज़रा हम सुनते हैं ये गाना, ज़रा उनकी आँखों में डूब के सुनते हैं ये गाना, ज़रा अपने दिल पर उतारते हैं ये गाना।

तो चलिए जरा हम आनमिलो सजना का ये गाना पेश करते हैं और खुश कर देते हैं हम बामू अनतवाजी को जो कथोबोध के रहने वाले हैं। उन्होंने आनमिलो सजना मूवी का ये गाना सुनना चाहा है जो है किशोर कुमार की आवाज़ में। चलिए यही गाना हम पेश करते हैं पालमा के महेंद्र जी के लिए, जिन्होंने हमें मैसेज भेजा है और चैलेंज भी भेजा है कि उनका मैसेज पढ़ के क्या हम जान पाएंगे वे महेंद्र जी हैं।

अब चलिए ये गाना हम पेश करते हैं, भेजते हैं सीधा तायक की और तायक के रफीक मोहित जी ने इस गाने की फरमाइश की है। चलिए जरा रफीक जी की पसंद भी सुनते हैं। ये है शागिर्द मूवी का गाना, लता मंगेशकर

रेडियो मनोरंजन पर मनोरंजन आपका आपकी फरमाइश के साथ कर रहे हैं, आपकी पसंद के गानों के साथ कर रहे हैं। और संगम फिल्म का ये गाना मुकेश की आवाज़ में हम पेश करने जा रहे हैं नंदा जी के लिए। पाई की नंदा जी ने हमसे मांगा है ये गाना, और ये गाना नंदा जी सुनवाना चाह रही हैं अपनी बहू दिव्या को, अपनी बेटी आश्विना को, बेटे अभिषेक और अविनाश तथा आशील को, अपने पति दीपक को और अपनी नातिन अरवी और नाती गुल्लू को, पूरे पुनीता परिवार को, पूरे गणेश परिवार को। तो चलिए हम भी साथ मिलके नंदा जी के और उनके परिवार के सुनते हैं ये गाना।

दिल के पास जो है उनको दिल से बहुत प्यार दीजिएगा, क्योंकि दिल के पास जो आता है वो अपने दिल से ही आता है, और ऐसे में आपको इतना टूट के प्यार करता है कि आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे, और आप हमेशा ज़िंदगी में खुश रहेंगे।

ये ऐसी दुआ हमारे मन में है। हम है सुरेखा साथ आपका दे रहे हैं, बस यही उम्मीद रखते हैं कि हर पल हर घड़ी आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां नजर आए और आप लोगों को खुश करने के लिए आप लोगों की पसंद के गाने आप तक पहुंचा रहे हैं हम। और अकेली मत जाइयो मूवी का ये गाना हम पेश कर रहे हैं, इस बार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गाना हम पेश कर रहे हैं फिनिक्स की रेहाना जी के नाम। तो चलिए इस हवा का मज़ा लीजिए, इस मस्ताने मौसम का मज़ा लीजिएगा और ऐसे में जो म्यूज़िक बजेगा वो म्यूज़िक आपके इस मस्ताने मौसम को और भी मस्ताना बना डालेगा।

मौसम रहे हमेशा आपके लिए खुशगवार मौसम लेकर आए आप लोगों के दिल में बहुत सारा प्यार और ऐसे में हम लेकर आए हैं उन बहारों की बातें जिन बहारों से फूल बरसाने की इल्तिजा की जा रही है। ये इल्तिजा ऐसी गहराई से की जा रही है कि आप सुनकर कह उठेंगे वाह क्या बात है। चलिए ज़रा हम सूरज मूवी का ये गाना सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी की गहरी सी आवाज़, और इस गाने को आप सुनिएगा अब्बू जी की पसंद पर। अब्बू जी रहते हैं वाकवा, उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है आफेज के लिए, असलम, आयाज, जायान, ज़ाहिरा, रईस, कालाचोटी के लिए, अपने दोस्त अपे जी के लिए अब्बू जी ने इस गाने की फरमाइश की है, और उनकी पत्नी के लिए, और उन्होंने विशेष तौर पर ख़ास तौर पर रकीबा जी के नाम किया है ये गाना, और उनको संदेशा भेजा है कि रकीबा जी आपके मामू अब्बू आपके लिए बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं ताकि आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाए।

और इस बार बारी है हरे कांच की चूड़ियां मूवी के गाने की, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं पोर्ट्रीज के इब्राहिम जी की पसंद पर। चलिए जरा हम सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

बस लेकर आए हैं इस बार हम तेरे मेरे सपने मूवी का गाना। सपने हर किसी के अपने होते हैं, हर किसी के दिल में कुछ अरमां होते हैं, हर किसी का अरमां पूरा हो जाए, हर किसी का सपना पूरा हो जाए। जो हसीन ख्वाब देखे हैं उन्होंने हकीकत की दुनिया में हकीकत बन के नज़र आए। आपके लिए ढेर सारी दुआएं, आप तरक्की करते जाएं, आप हमेशा आगे बढ़ते जाएं। लीजिए तेरे मेरे सपने।

जी का ये गाना हम पेश करते हैं पालमा के महेंद्र जी की पसंद पर, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों का ये गाना है। चलिए सुने हम जरा मिलके इसे इंजॉय करें।

0: continuous music.
1: रेडियो मनोरंजन पर हम पेश कर रहे हैं आपके लिए दिलों की आवाज़, और दिलों की आवाज़ कार्यक्रम का वक्त पूरा होने ही वाला है। वैसे तो 9 बज चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और खींच रहे हैं इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए। एक प्यारा सा गाना, ये है दीवाना मूवी का गाना। हमारी आपकी मुलाकात दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में यहीं पर रुकती है। अब लगभग 9:04 पर हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए भोजपुरी का प्रोग्राम, भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: नमस्ते हमने के सब श्रोता लोग के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तो हर स्वागत करत है जहाँ हम है सुरेखा तो और साथ देवत है भोजपुरी तड़का में भोजपुरी के गीत वन चला मिलजुल के सुनी जा और हमने के भोजपुरी के संगीत के खूब लाजवाब समय बिताएला जा। अभी हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम शुरू कर ली जा और अकेले के चलब जा 11 बजे अभी 9:08 हो बा और संगे संगे रहिए जा 11 बजे लेक हमने के और टेलीफोने तक करिए जा हमने के 4082 8085 पर मिसाज भी भेजे खुज पता भेजिए जा 5251 7005 पर तो चले हमने ई दोनों नंबर पर तोहर संगे मिलजुल के बातचीत करब जा और अभी चला सुनी जा हमने गीत गवाई हो लगाना चला आज सुखे रात बाद चला गीत गवाई में चले के बाद चला जा श्रोता लोग और ई गाना हमने बजाओ थे जा साधना जी खातिर पिछित भैया के साधना जी गाना मंगले हवन बेशक बिजमावती संपत जी की आवाज़ सुन बजा अभी

चलो भोजपुरी के धमार करते चली जाओ। और भोजपुरी में एक गाना वजन सुनीता ननकू जी गईले वन साजन के साड़ी, बाप रे बाप ये गाना था हमने के श्रोता लोग बड़ी पसंद करे लंजा। चलो ये गाना हमने सुनीता ननकू जी के गावल ललिता जी के फरमाइश पर बजवाएला जा। तो ये से ललिता जी गाना मंगले हवन बहिन सुदेवी ज्ञानी देवयानी खातिर, छोटी जी प्रभावती जी हरी जी आत्मा राम जी खातिर, सुखलाल मौसी माला राम जवन और खुशनुआ के उमा गुरबीन जी खातिर।

और चला जन्मदिन के बधाई दे इलाजा हमने सुनीता जी बगल से गांव गोप के सुनीता जी अपन भौजी के जन्मदिन के बधाई देवत हवन उनकर भौजी गीता के जन्मदिन रहल कल उनकर जन्मदिन के शुभकामना उनकर पति अजय बगल से उनकर बेटा आनिश उनकर ननद सुनीता और अमृता बगल से और यही गाना सुनीता जी अपन बहन विमाला के नाम करत हवन कुंगुमा के संजय गोविंद जी की आवाज़ के गाना सुनी जा

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का तोहर नाम से गाना चलाओ अब जा, तोहर पसिन के गाना चलाओ अब जा। चला अभी उमा जी के पसिन के गाना चलाई जा। उमा जी मंगले हवन संतोष महादेव जी के गावल पियर पियर उठिया के हरियर नगिनवा।

0: कैसन मजा लगे हो
1: चैनल जिसेल कलर यार जिसेल पीमा के बारे में सुनी जा हमने बहल गौरी से सुनीता जी गाना मंगले हवन पे चित्र से ये गाना अपन सब संगत यालो के नाम करत हवन।

चल अब आगे बढ़िए जा हमने विश्वानी दुमन जी के नाम करी जा वाकवा के विश्वानी दुमन जी बगल से गाना नाम करत हैं जा हमने उनकर बहन इंदिरा और शारदा के उनकर सहेली नीला और प्रतिभा के और शोभा जी खातिर गीता गजाधर जी खातिर चला यह गाना आदेश ठाकुर प्रसाद जी के गावल

चले लाफ्रांस लगाना सुनब जा हमनी और इगाना भोजपुरी बॉयज के कलाकार के आवाज में सुनब जा और ई गीत हमनी बजवाई ला जा अनीता जी खातिर फ्री कॉम्प्लेक्स अनीता जी बगल से उनका पूरा परिवार और उनका सब दोस्त लोगन खातिर

अब चला तनी डल पिठा खाई के बंदोबस्त करी ला जा अभी गाना हमने सुनब जा भोजपुरी पचा बाजे बॉयस के कलाकार लोग के ही आवाज़ में ये गाना हमने बजावत है जा साजिद जी खातिर रोज दिल से साजिद जी गाना मंगले हवन कनाडा के अपन सहपाठी सरोवर जी खातिर और यही गीत हमने बजवाए ला जा बहन भाई खातिर महेन जी गाना मंगले हवन पालमा से और बेल बेल दे मौसी दलपीठा पकाई नानी गाना गाते गाते चले हमने दलपीठा के स्वाद के मजा ले ला जा।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का। और चला चमेली चमेली गाना सुनी जाए। हमने सुनीता नन को जी के गावल चमेली चमेली, चला सुनी जाए गाना। हमने अमृता जी के पास इन पर पीतों से अमृता जी मंगले हवनी गाना पूरा गणेश परिवार खातिर, अपन नातिन सोनिया और परी खातिर, बेटी पूनम, बेटा विशान और बहू मीनाक्षी।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
2: चले अभी कुछ खिविया जगहों पर पहुँचाएला जहाँ के गाना खिविया जगहों पर से वैशाली जी मंगले हुए अपन मामा बिंदिया और अपन पापा रविन के नाम ई गाना संजय हरिचरण जी के गावल

अब चली जा मेरी पसंद राज जोलीम जी के गावल गाना सुनी जा। आज के भोजपुरी तड़का में कल्याणी जी महिबग से माईबू से गाना मंगले हवन अपन भगिनी गायत्री जी खातिर जो नोवेल फ्रांस रहेलन और उनकर बेटा अजय खातिर चला सुनी जाए गाना हमने पसंद राज जोलीम जी के गावल।

आलू के कावल गाना और ये आज के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में ये गाना मंगले हो वन साबित जी थ्रियोले से गाना मंगले हो वन अपन पति धर्मेंद्र जी खातिर तो चला सुनी जाए गाना अभी 10:01 होल बा।

यह अमित गिरजानन जी के गावल गाना और गाना हमने बजावत है जन नंदीता जी का तीर प्लेन मायो के नंदीता जी गाना मंगले हवन अपन बहिन सुविधा के नाम

आगे बढ़ी जा और ये अनिरुद्ध भोजनाथ जी के गावल कामियोलो तो सुनी जा और कामियोलो तो में हमने सुनी जा कितना तरह से हमने के चहला सावधानी पर थे कि हमने के रास्ता पर हमने के सड़क के सुरक्षा पर कितना ध्यान चाहिए रखे कि चला सुनीता जी के नाम करी जाए गाना सुनीता जी हमने से कौफ़ को से गाना मंगले हुआ अपन पूरा परिवार खातिर

और चला गायत्री जी के पास इनके गाना, गायत्री जी ने फौसे मंगले हवन कैसे बनी, ये मली बिना चटनिया कैसे बनी, अवेदारत भी जन जी के गावाली गाना, और ये गायत्री जी मंगले हवन गाना बन बेटा अजय खातिर, फिर मायबू के मामी कल्याणी मोहन खातिर, और लॉन्ग माउंटेन से अपन भाभी शकुंतला जी खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: चलकुनाल बाबूलाल के आवाज में तड़का लगाएला जा अभी कुछ। और ये गाना हमने नया सीरे गाना नाम करे थे जा सरिता जी के का था, बोन से सरिता जी गाना मंगले हवन। चला सुना सरिता जी तो हर पसंद के गाना।

चले जन्मदिन के को गाना सुनब जा लीलो माथुर सुकन जी के गावल और ये गाना हमने बजाओ थे जा माला जी खातिर। माला जी के जन्मदिन बा और उनकर पति राजन लक्ष्मण जी उनका जन्मदिन के ढेर मंगल कामना भेज ले हवन। उनकर बेटी प्रार्थना प्रगति उनकर ढेर प्यार दिले हवन, ढेर मंगल कामना दिले हवन। मानती जी भगिनी उर्मिला तुलसी जी और पूरा लक्ष्मण परिवार मिल के माला जी के जन्मदिन के शुभकामना देवत हवन। जन्मदिन अभिनंदन।

विवेक जी के पास इनके ये गाना हरम हराम तो हर जी के गावल जुबेदा जिन हर एक जश्न में बन बजेला तो चला ये गाना हमने विवेक जी बगल से उनकर बहन सुनीता के जन्मदिन के अवसर पर बजावा थे जा

छोड़ के मोरी स्वाद चलो हमने आतिश भगीरथी जी से सुनी जाए गाना मानव जी प्लैंडी पापा से गाना मंगले हुआ अपन दादा दादी के नाम और अपन चाचा के नाम उनका चाचा रहे लन उंगले ते हमें तो उनका नाम करते हुआ गाना

यादव जी मंगले हवनी गाना ऐसे तो उनका पिति पिति छोकरी गाना सुने के रहल बकिर ई गाना में पिति पिति छोकरी भी और शहर की छोकरी भी के संगम बा चला सुने जाते सुदेश बोईजू जी के गावली गाना यादव जी के फरमाइश पर यादव जी गाना मंगले हवन पर पिताजी खातिर अपन माता जी खातिर और नानी माँ खातिर।

अविनाश लचन जी की गावरी गाना सुनब जा, पानी बरसे ला पनिया बरसे ला और बरसते बरसते जा रहा। चला ही गाना के संगे संगे समाप्त हो जाए आज का हमने की भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। उम्मीद करे थे जा कि भोजपुरी तड़का के गाना तो लोग पसंद पड़ल हो आवत हला। फिर मेरा जा अभी थोड़ा घड़ी में सुनिए जा आज के हमने के सुनहरे पल कार्यक्रम। और सुनहरे पल कार्यक्रम पुराना गीत के कार्यक्रम है। ये गाना सुनिए जा और ये कार्यक्रम सुनिए जा गिनीशा के प्रस्तुति में। उम्मीद करते हैं कि इतने लोग के रात्रि बहुत शांति से गुजरी आवत रहा। फिर शुभ रात्रि, नमस्ते।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। फिर से एक बार अग्निशा आ गई है आप लोगों का साथ देने के लिए सुनहरे पल में। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार और हमारा प्यार भरा प्रणाम आप स्वीकार कर लीजिए। वैसे देखा जाए तो वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन कुछ गीत कभी नहीं बदलते। उनकी जो मिठास है ना, आज भी उतनी ही गहरी है। तो आइए उन अमर गीतों का लुफ्त उठाते हैं सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

हर गीत के पीछे छुपी होती है किसी ना किसी की मुस्कान, किसी की मोहब्बत और किसी की कहानी, और आज उन सब कहानियों को फिर से जीते हैं पुराने बॉलीवुड गीतों के साथ। पुराने गीत बिल्कुल सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, उन्हें महसूस किए जाते हैं। हर सुर दिल को छू जाता है और हर लफ्ज एक नई याद दे जाता है। स्वागत तो हमने आप सभी लोगों का कर लिया, और बस उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आप

आज की रात होगी यादों के नाम, उन गीतों के नाम जो हर जेनरेशन को एक साथ जोड़ के रख देते हैं। तो चाय की एक प्याली ले लीजिए और शुरू कीजिए यादों का सफर सुनहरे पल के साथ, रेडियो मॉरिशस पर गिनिशा के साथ।

मोहम्मद रफी की आवाज, लता मंगेशकर की मिठास, किशोर दा की शरारत और मुकेश दा का दर्द, सब कुछ मिलेगा आज सुनहरे पल में। बिल्कुल जी, यादों के इस पितारे को खोलने का वक्त आ गया है। हर गाना आपको ले जाएगा बचपन, जवानी और जिंदगी की हसीन लम्हों तक। तो बस यूं ही हमारा साथ देते रहिए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: पुरानी फिल्में, पुराने गीत और वो सुकून जो आज भी दिल को छू लेता है, इसी खूबसूरत सफर में हम सफर बनिए सुनहरे पल के साथ। वैसे कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते हैं, वो हमारी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाते हैं और आज उन्हीं यादों को फिर से जिंदा करेंगे इन खूबसूरत गीतों के साथ।

हर सुर में है मोहब्बत हर लफ्ज में है जज्बात और हर गीत में है सुनहरी कहानी बस इसीलिए तो है सुनहरे पल रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग आपका साथ देने आ जाते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस

0: जाना।
1: क्यों?
0: इसलिए कि शर्मा न जाना।
2: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

टाइम इतने जल्दी जल्दी बीत जाता है कि हमें अंदाजा भी नहीं हुआ कि फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर निशा टू से गुड बाय टू यू. बिल्कुल जी, जाने का वक्त जो हो गया है. तो बस अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और हमें इजाजत दीजिए. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां, ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ, ये कायनात कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं।
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम